0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजते हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी

0: 40% से अधिक हैं। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित एलआईसी निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की शिकायत के आधार पर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टनम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमडीएल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं ये देशगान।

अभी आप सुन रहे थे शांता सक्सेना, हरीश भारद्वाज और साथियों के स्वर में ये देश गान। वंदना में आइए अब आपको सुनवाते हैं बिजन घोष, दस्तीदार और साथियों के स्वर में ये भक्ति गीत।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री गुलाब सिंह का आलेख। वाचक हैं सुनील केशव देवधर।
1: कबीर ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। बात बड़ी छोटी सी और उपदेशात्मक लगती है, लेकिन ये न तो छोटी है और न ही आदर्शात्मक, बल्कि ये जीवन की असलियत से इतनी जुड़ी है जितनी बहुत कम चीजें जुड़ी हैं। जीवन और जगत में सुख शांति की चाह रखने वाले संसार को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए ये बात अंतर्राष्ट्रीय आण्विक संधि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। कवि ने जो मीठी बानी बोलने की बात कही है, इसके लिए सबसे जरूरी तत्व है मन का आपा खोना। ये मन का आपा क्या वस्तु है? क्या मन में दीनता, हीनता और लघुता का बोध उपजाना, अथवा अपने अस्तित्व का विलयन या विघटन करना, या अपनी अस्मिता की पहचान को समाप्त कर देना? संभवतः ऐसा नहीं है। आपा हमारे अहम या गर्व भावना का परिचायक है, जो दूसरों के सामने अपने को बड़ा, विशिष्ट या महत्वपूर्ण सिद्ध करने की चेतना से संबद्ध है। उल्लेखनीय यह है कि संसार में जितना अकांड तांडव हुआ है, उसके पीछे व्यक्ति का ये अहम ही प्रमुख कारण रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में शांति पर बल देते हुए कहा गया है कि लड़ाई मनुष्य के मस्तिष्क से उपजती है। इसमें शक नहीं कि लड़ाई किसी भूमि या हथियार से शुरू होने के पहले मस्तिष्क से शुरू होती है। यही वो केंद्र बिंदु है जहां से लड़ाई का बीज भाव उत्पन्न होता है। इसलिए सच्चाई ये है कि जब तक हम अपनी सत्ता, संपत्ति, वैभव, बल, बुद्धि, विद्वत्ता, बड़प्पन आदि की अहम भावना का परिहार करके मन को संतुलित नहीं कर लेते, वाणी से मीठी बानी निकल ही नहीं सकती। सहज बानी बोलने के लिए हमारा सहज जीवन बोध बहुत जरूरी है। जो फरेबों में जीता है, वो सहज कैसे हो सकता है? और बिना जीवन की सहजता के वाणी का सहज होना कठिन है। कविवर प्रसाद ने कहा है कि प्रकृति के हर काम में एक गति है, एक लय है।

0: देखते हैं कि झरने के झरने से लेकर पक्षी के कलरव तक एक सम है, एक लय है, लेकिन मनुष्य है कि उसने अपने राग को बेसुरा बना लिया है। परिणाम ये होता है कि मानव समाज में आपसी मनमुटाव, कलह से लेकर युद्धों तक की स्थिति है। भाई भाई लड़ रहे हैं, एक ही धर्म के मानने वाले एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं, और मजा ये कि इसका प्रचार करते हुए अपने को गर्वोन्नत समझ रहे हैं। कारण क्या है? संभवतः आपा न खोने की बात। जब हम आपा नहीं खोते तो हमारी जबान कतरनी की तरह चलती है। जबान ऐसा घाव करती है जो कभी भरता नहीं। इतिहास या पुराकथाओं की दुनिया में जाएं तो पता चलेगा कि महाभारत की लड़ाई का एक कारण यह भी था कि द्रौपदी ने दुर्योधन पर यह कटाक्ष किया था कि अंधों के अंधे ही होते हैं। इस कथन ने विनाश की लीला को आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, पांडवों को जहां वनवास की त्रासद पीड़ा भोगनी पड़ी, वहीं महाभारत के भयानक विनाश तांडव को भी सहना पड़ा। खुद द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ। इसलिए यदि हम अपने अहम को संबंधों के बीच में बाधक न बनने दें और उचित समय पर सार्थक बात सही शब्दों में कहें तो निश्चित रूप से एक बेहतर सामाजिक उपकार कर सकते हैं। संभवतः इसी को लक्ष्य करके संस्कृत के नीतिकार ने कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो। तात्पर्य ये कि सत्य बोलना श्रेयस्कर है, लेकिन उससे भी श्रेयस्कर है प्रिय बोलना। प्रिय बोलने का अर्थ चाटुकारी या खुशामत करना नहीं है, बल्कि शब्दों के एक विशेष अनुक्रम से है जिसमें ध्वनि और बलाघात का सही उपयोग किया गया हो, क्योंकि विभिन्न ध्वनियों और बलाघात के परिवर्तन से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसी को कहते हैं कि बिना पद के कोई पदार्थ नहीं होता। पद से ही व्यक्ति की मानसिकता जुड़ी होती है। इसमें अहम का विसर्जन या घोल प्रस्तुत करके ही ऐसी वाणी बोली जा सकती है जो दूसरों को सुख देती है और अपने को मानसिक शांति।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे गुलाब सिंह का आलेख। वाचक थे सुनील केशव देवधर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुल देवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। पशुओं को दस्त से कैसे बचाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, बरसात के मौसम में पशुओं का अधिकतर पेट खराब हो जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में पेट चलना या दस्त लगना कहते हैं। पशु को दस्त होने पर पशु थोड़े थोड़े समय पर मल को त्यागते हैं, जो सामान्य गोबर की तुलना में काफ़ी पतला होता है। दस्त ज़्यादातर पाचन प्रणाली में कुछ न कुछ खराबी होने के कारण, चाहे वह जीवाणु विषाणु परजीवी रोगों के कारण हो या फिर अनुचित आहार के कारण। इस समय पशु को अधिकतर हरी घास अधिक मात्रा में खाने के लिए उपलब्ध होती है, जिसके कारण पशु को दस्त हो जाते हैं, जिसे हरेली लगना कहते हैं। यह रोग पशु को यकायक पशु आहार में परिवर्तन होने के कारण होता है, क्योंकि पशुओं को चारागाह में पर्याप्त मात्रा में हरी घास के रूप में चारा उपलब्ध रहता है। संतुलित आहार सूखा चारा भूसा आदि उपलब्ध नहीं हो पाता है। पशु को आहार सुपाच्य न मिलने के कारण गोबर करने में दर्द का अनुभव करते हैं और बेचैन हो जाते हैं। यदि पेट और अतड़ियों में सूजन हो जाती है तो पशु की भूख समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे पशु को बुखार रहने लगता है, जिससे पशु सुस्त हो जाते हैं। पशु को 3-4 दिन लगातार दस्त होने पर गोबर में आंव और रक्त भी आने लगता है। दस्तों में यदि रक्त अधिक समय तक आता रहता है, जिससे पशु कमजोर हो जाते हैं। पशु को अनिश्चित समय पर भूख लगती है, पशु को बार बार प्यास लगती है, पशु में रक्त की कमी हो जाती है। पशुओं को दस्त होने पर साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए तथा पशु को चारागाह में चरने से रोकना चाहिए, बांध कर चारा खिलाना चाहिए। पशुओं को सुबह सुबह चारागाह में चरने के लिए बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि चारागाह में घास के ऊपर झाग के रूप में जो बूंदें पाई जाती हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में रोगजनक जीवाणु पाए जाते हैं, जो पशुओं में रोग फैलाते हैं। रोग से बचाव के लिए पशुओं को चारागाह में कम से कम जाने दें, रोग का टीका लगवाएं। रोग की अधिकता में दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा कम हो जाती है। जो पशु कार्य करने वाले होते हैं, उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। बरसात के मौसम में पशुशाला की स्वच्छता पर अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि अधिकतर रोग अस्वच्छता के कारण ही फैलते हैं। इसलिए गोबर और मूत्र को हमेशा शीघ्र ही हटाना चाहिए। मक्खी मच्छरों से बचाव के लिए समय समय पर गौशाला में कीटनाशक चूर्णों का छिड़काव करते रहना चाहिए। स्वच्छता पर बरसात के मौसम में विशेष ध्यान दें। बरसात के मौसम में पशुओं में कृमि प्रकोप बढ़ जाता है। आंतरिक परजीवियों से बचाव के लिए कृमिनाशक दवाएं समय समय पर देते रहना चाहिए। चारे में भूसा पुआल संतुलित मात्रा में देना चाहिए। जो पशु को चारा दाना खिला रहे हैं, उसमें हल्का नमक और दस्त निरोधक चूर्ण अवश्य मिला दें, जिससे पशु की पाचन क्रिया सही रहे। पशु को हल्का और सुपाच्य आहार खिलाना चाहिए। बड़े पशु के लिए 2 गोली टेरामाइसिन और नेवलान दस्त अवरोधक चूर्ण 50 ग्राम मिलाकर देने से पशु को आराम मिलता है। अगर पशु छोटे हैं तो मात्रा आधी देनी चाहिए, जिससे पशु को आराम मिले। पशु यदि कार्य करने वाले हैं तो अधिक समय तक कार्य न लें। पशु को आराम देना चाहिए, जिससे पशु स्वस्थ भी रहेंगे और पशु में कोई भी दुर्घटना घटने की संभावना नहीं रहेगी।
0: कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी सोहन सिंह जानकारी दे रहे थे पशुओं को दस्त से कैसे बचाएं, इस विषय पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

0: मन की बात है, जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात।
1: दर्पण कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 हुए हैं। संस्कृत में समाचार
2: श्रूयंताम। प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य 20तमस्य रोजगार इति आजीविका मेलकस्य अंतर्गतं विविधेषु प्रशासकीयेषु विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः 150,000 नियुक्तिपत्राणि दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन वितरिष्यति। प्रधानमंत्री अस्मिन् अवसरे उपस्थितं जनसमूहमपि संबोधयिष्यति। इदं आजीविका मेलकं देशस्य 45 स्थानेषु आयोजयिष्यते। नवनियुक्ताः अभ्यर्थिनः भारत प्रशासनस्य विभिन्नेषु मन्त्रालयेषु विभागेषु च कार्यभारं स्वीकरिष्यन्ति। एतेषु राजस्व विभागं, रेलमन्त्रालयं, गृहमन्त्रालयं, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयं, वित्तीय सेवा विभागं, रक्षा मन्त्रालयं च समेत्य अन्ये विभागाः सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः नवदिल्ल्यां पर्यावरणस्य वातावरण गतिशीलतायाश्च भविष्यः इत्यस्मिन् विषये आयोजितस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। द्विदिवसीयस्य अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं राष्ट्रिय हरिताधिकरणेन क्रियते। सम्मेलने पर्यावरण विशेषज्ञाः, सर्वोच्च न्यायालयस्य, उच्च न्यायालयानां, जनपद न्यायालयानाञ्च न्यायाधीशाः भागं ग्रहीष्यन्ति। विभिन्न मन्त्रालयानां सचिवाः, वरिष्ठाः प्रशासकीयाधिकारिणश्चापि कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। सम्मेलने 17 प्रतिष्ठिताः न्यायाधीशाः, न्यायिक प्रतिनिधयश्च सहभागं करिष्यन्ति। भारतं संयुक्तारबामीरातश्च प्रादेशिका शान्तेः, सुरक्षायाः, स्थैर्यस्य च संवर्धनाय कृतेषु प्रयत्नेषु निरंतर सहकारं समन्वयं च प्रति स्वकीयां प्रतिबद्धतां पुनः प्रकटितवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना सह ह्यः संयुक्तारबामीरातस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यनेन दूरभाषेण सम्पर्कः कृतः। उभौ नेतारौ पश्चिमैशियायां प्रवर्तमानानां घटनाक्रमाणां विषये परस्परं विचारान् प्रकटितवन्तौ। उभाभ्यां देशाभ्यां व्यापक सामरिक सहमतिम् अधिकं सुदृढीकर्तुम् ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश, स्वास्थ्याञ्च समेत्य नूतनेषु उपायेषु चर्चा कृता। संयुक्तारबामीरातस्य राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः जन्मदिवसस्य अवसरे हार्दिक्यः शुभकामनाः प्रेषिताः तथा भारतस्य सफल ब्रिक्स अध्यक्षतायै तस्य अभिनन्दनमपि कृतम्। प्रधानमन्त्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलने शेख खालिदस्य सहभागितायै तथा भारतस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं महत्वपूर्ण

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
1: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धु के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर

आयोजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में कल एक मस्जिद के पास विस्फोट में 15 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। एक चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कम से कम 73 पुलिसकर्मी और 30 नागरिक घायल हुए हैं। शुक्रवार की नमाज के दौरान यह हमला हुआ। पुलिस ने बताया कि अब तक 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आइची नागोया में हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 पर प्रकाश दीक्षित की वार्ता सुनिए, जागरण के कवि माखनलाल चतुर्वेदी। 7:30 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। साढ़े 8:00 आज पॉडकास्ट में सुनिए, नारकोटिक्स ब्यूरो ग्वालियर के आयुक्त डॉक्टर दिनेश कुमार बिसेन से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत, जिसका विषय है नशा मुक्ति, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की भूमिका, प्रयास और चुनौतियां। ये कार्यक्रम सुबह 8:30 सुना जा सकेगा। 9:00 सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे सावनी शेंडे का गाया राग नट भैरव में खयाल।

आज सुबह 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में आकाशवाणी दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे आप 10:30 बजे से सुन सकेंगे। प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। इस सीधे प्रसारण के बाद कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से जारी रहेंगे। हमारी सायंकालीन सभा भी आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी, जिसमें 5 बजे युवाणी कार्यक्रम होगा, जो आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगा।

शाम 7:20 पर हमारे केंद्र से कुछ लोकगीत सुने जा सकेंगे और 7:30 प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए किसान वाणी, इसे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। शेष कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होंगे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में 7400 से ज्यादा मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी करेंगे वितरित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में किए कार्यों और प्रयासों की सराहना की। और भोपाल, इंदौर, विदिशा, रायसेन समेत कई जिलों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। प्रतिभागी प्रमुख पर्यावरणीय और जलवायु चुनौतियों पर चर्चा करेंगे, जिनमें नीति निर्माण, कार्यान्वयन और प्रवर्तन में कमियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7400 से अधिक विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण करेंगे। ये स्कूटी मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की राह आसान होगी, साथ ही कॉलेज आने जाने वाले में भी सहूलियत रहेगी। राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुबह 9 बजे से होगा। गौरतलब है कि मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से अब तक प्रदेश के 23,000 से अधिक पात्र विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। योजना के संचालन पर अब तक लगभग 240 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 में मध्यप्रदेश पवेलियन का भ्रमण कर सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और सेमी कंडक्टर क्षेत्र के विस्तार की संभावनाओं पर उद्योग प्रतिनिधियों से चर्चा की। डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। सेमीकंडक्टर, चिप डिजाइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: मुझे इस बात की प्रसन्नता के मध्यप्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के हम काफी गंभीरता पूर्वक देश के अंदर भी, देश के बाहर भी और अपने राज्य के अंदर भी लगातार जो प्रयास कर रहे हैं सेमीकंडक्टर को लेकर के, हमारे राज्य में भी इन्वेस्टमेंट का जबरदस्त स्कोप भी है और इस पर हमने काम भी किया है। इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसके आधार पर ये हम इससे जुड़े हुए सभी प्रकार के निवेशकों को मध्यप्रदेश की पॉलिसी के बलबूते पर इन्वेस्टमेंट के लिए मौका भी देंगे और हमारे राज्य का प्रमोशन भी करेंगे।
0: प्रदेश में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 शावकों के जन्म के साथ देश में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। ये शावक भारत में जन्मी मादा चीता केजीपी 12 के हैं। ये परियोजना के 4 साल पूरे होने के ठीक एक दिन बाद हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे भारत में चीता संरक्षण के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कुनो और प्रोजेक्ट चीता की टीम को बधाई दी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य ढांचे, चिकित्सा शिक्षा, विशेषज्ञ सेवाओं और प्रमुख जन स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा भी हुई। श्री नड्डा ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के इस्तेमाल की भी प्रशंसा की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश प्रभारी रवि दांगी ने बताया कि राहुल गांधी दोपहर 2 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम करीब 7 बजे उनका रीजनल पार्क स्थित सभा स्थल पहुंचने का कार्यक्रम है। इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय विकसित भारत एक्सपो 2026 का कल समापन हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा एक्सपो में विकसित भारत का अमृतकाल और सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण के 12 साल विषय पर विशेष चित्र और मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थियों, युवाओं और आम नागरिकों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और पहलों की जानकारी देने के साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ने का प्रयास किया गया। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजनों को देने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले में आज से संचालित होने वाले नमो सेवा अभियान के तहत 20 स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन होगा। अभियान के तहत 22 सितंबर तक संस्कृति विभाग के माध्यम से श्लोक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान उज्जैन द्वारा जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रदेश में अब तक औसत 33.2 इंच बारिश हो चुकी है, जो कुल कोटे की 89.3% है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक मानसूनी सीजन को 11 दिन बाकी शेष बचे हैं। आखिरी सप्ताह में कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। ऐसे में प्रदेश की बारिश का कोटा पूरा हो सकता है। हालांकि इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के ज्यादातर जिलों में सामान्य बारिश का आंकड़ा कम ही रह सकता है। मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, धार, अलीराजपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत गुना के बरखेड़ा कीर्त में विभिन्न शासकीय संस्थानों का निरीक्षण किया और जन विश्वास शिविर में शामिल होकर आमजन की समस्याएं सुनी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत खंडवा में नगर निगम के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। सेवा संकल्प अभियान के तहत मंदसौर के भानपुरा ITI में उद्यम संवाद आयोजित हुआ। झाबुआ में

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुरा का औचक निरीक्षण किया। लगातार 36 वर्षों की न्यायिक सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह को जबलपुर हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली हॉल में विदाई दी गई। इस दौरान उन्होंने जीपीएफ में जमा करीब 1 करोड़ 1 लाख रुपए प्रधानमंत्री केयर्स एंड फंड में दान करने की घोषणा की। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. संजय गोयल ने कल नर्मदापुरम जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सेवा से संकल्प अभियान के तहत कल डिंडौरी के भिंदवानी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत बैतूल जिले में शुरू की गई पीएम मासिक सिकल सेल ओपीडी के माध्यम से सिकल सेल मरीजों की निरंतर स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं वार्ता जागरण के कवि माखनलाल चतुर्वेदी। वार्ताकार हैं प्रकाश दीक्षित।
1: किसी भी रचनाकार के रचना वैशिष्ट्य के आधार पर उसे एक विशेषण देने की परंपरा रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वसंत के अग्रदूत कहे जाते हैं, वहीं अपने काव्य में उदात्त तत्व के कारण उन्हें महाप्राण निराला भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा अपनी बौद्धिक गुरुता और मानवीय संवेदना को अभिव्यक्त करने के कारण महीयसी कही जाती हैं। इसी संदर्भ में दद्दा मैथिली शरण गुप्त, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ठीक इसी तरह रचनात्मक वैशिष्ट्य के आधार पर एक भारतीय आत्मा के स्तर पर माखनलाल चतुर्वेदी को सादर स्मरण किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की अनवरत काव्यात्रा का प्रमुख हेतु राष्ट्र आराधन और जागरण के ओजस्वी स्वर तक आधारित रहा है। अपनी मातृभूमि के प्रति असीम आस्था का भाव व्यक्त करते हुए वह जन को जागृत करते हुए कहते हैं, वह राष्ट्र राष्ट्र नहीं है जिसकी रीढ़ की हड्डी नैतिकता से ना बनी हो। जहां ऊंचा सिर नहीं हो सकता, वहां कोई सिर उतार कर क्यों ना रखेगा। सिर देने की बात तो उसी राष्ट्र के मस्तक में आएगी जिसका ललाट बहुत उठा हुआ हो। किसी राष्ट्र का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पास ईमान और आदर्शों का बल न हो। शहर, गांव, कस्बे किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। राष्ट्र तो तब बनता है जब उसकी कोई राष्ट्रीयता हो। परंपरागत रूढ़ियों के प्रति वह जागरण का संदेश देते हुए तथा जनमानस को प्रेरित करते हुए कहते हैं, हम नहीं हैं रूढ़ी की पुस्तक के पथरीले भार, नित नवीनता के हम हैं जग के मौलिक उपहार। एक भारतीय आत्मा के मत में राष्ट्र तो एक बाग है, विभिन्न पौधे उसमें हैं, किंतु उनका मालिक एक है, उसका जल एक है, उसकी कोयल एक है, विविध पौधे उसमें हैं। रीति रिवाजों की विभिन्नता किसी राष्ट्र के राष्ट्र होने के मार्ग में बाधा नहीं हो सकती है। बिगुल बज गया चलो सब सैन्य, धरा भी होने लगी अधीर, खाइयां खोदी रिपु ने हाय, पार हो कैसे सैनिक वीर। चूर दे जिनको मेरे शूर, शरीरों से दे दिए शरीर, देश ने पाया आहा त्राण, शेष वीरों ने छेड़ी तान, अहा बलिदान धन्य बलिदान। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संकलनों में हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी विशेष रूप से इसलिए उल्लेखनीय हैं कि इनमें मानवीय आस्था, मानवीय करुणा तथा चेतना के स्फुरण का संदेश है। युवा वर्ग के लिए भी कवि के मन में असीम आस्था और विश्वास का भाव है। उनकी जवानी कविता अनवरत जागरण का संदेश देती है, साथ ही युवा शक्ति के प्रति, उसकी सामर्थ्य के प्रति आस्था और विश्वास का भाव जागृत करती है। आग अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई, खो आज पानी। द्वार बलि का खोल चल भुडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को, उसके भौगोलिक परिवेश को, उसकी संघर्ष क्षमता को कवि ने आगत पीढ़ी के समक्ष बहुत प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया है। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मणियां समेट खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। माखनलाल चतुर्वेदी के ऊपर गांधी का पर्याप्त प्रभाव रहा है। गांधी के सत्य अहिंसा तथा भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उनके अवदान पर असीम आस्था निरंतर रही है। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा के रूप में भारतीय मनीषा को, भारतीय चेतना को, भारतीय युवा को जो जागरण का संदेश दिया है वह एक अमृतत्व के रूप में स्थापित है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। यह संपूर्ण कविता एक ऐसे भाव को जागृत करती है जो किसी भी राष्ट्र के गौरव के लिए, किसी भी राष्ट्र के सम्मान के लिए, किसी भी राष्ट्र के उत्सर्ग करने की भावना के लिए एक अनिवार्य रूप में एक मानक है। इस दृष्टि से एक भारतीय आत्मा के रूप में एक पुष्प की अभिलाषा भारतवर्ष के गौरव का, भारत की संस्कृति के मान का पर्याय के रूप में स्थापित है। किसी भी रचनाकार की रचना प्रक्रिया को पहचानने के अनेक तरीके और रास्ते हो सकते हैं। उनमें एक रास्ता उस कवि की भावभूमि को लेकर जाता है, दूसरा रास्ता भाषा और शिल्प के भीड़ों से होकर गुजरता है, और तीसरा जो सबसे प्रामाणिक और सबसे विश्वसनीय रास्ता है वो यह है कि उस रचनाकार के मन में कितनी मानवीय संवेदना है, कितनी करुणा की भावना है, और कितना युवा पीढ़ी को और मनुष्य को जागरण का संदेश है। इस दृष्टि से माखनलाल चतुर्वेदी एक ऐसे अप्रतिम रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं अनादिकाल तक युवाओं को, मानव को प्रेरणा देती रहेंगी, उनके पथ का निर्माण करती रहेंगी, उनके पथ को प्रशस्त करती रहेंगी।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जागरण के कवि माखनलाल चतुर्वेदी। जैसा कि हमने आपको वार्ता के पहले बताया था कि इस वार्ता के वार्ताकार हैं प्रकाश दीक्षित, हम क्षमा चाहते हैं, इस वार्ता के वार्ताकार थे प्रोफेसर जी के सक्सेना। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुनिए फिल्म

मुकेश और आशा भोसले को अभी आपने सुना, फिल्म थी जंगली। हसरत जयपुरी के गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। फिल्म का अगला गीत फिल्म धूल का फूल से साहिर लुधियानवी का गीत है, संगीत एन दत्ता का। आशा भोसले के साथ इसे गाया है महेंद्र कपूर ने।

0: वो भी ऐप से। वाह, फंसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सो योर प्लेस और माइन।
4: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
3: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: दिल ही तो है इस फिल्म में, आइए सुनते हैं मुकेश को। गीत साहिल उद्यानवी का है, संगीत रोशन का।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है, फिल्म है दिल तेरा दीवाना। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीत शैलेंद्र का और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वर में आइए फिल्म छलिया का ये गीत सुनते हैं। गीत कमर जलालाबादी का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में आइए सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी की ये गीत रचना। फिल्म काली टोपी लाल रुमाल के लिए इसे संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने।

और आइए अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत। गीतकार एस एच बिहारी, संगीतकार ओपी नैयर और आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंटर सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
3: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए। नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी। एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जन सेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
5: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो एसएआर सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
6: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आरएनडी और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
5: गैलेक्सी आई के सीईओ सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आरएनडी और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
7: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर 221 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
6: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में 14 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 18 अरब डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
8: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
9: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला 2 उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। 2 न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान 2 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth at 20th Rozgar Mela this afternoon. Prime Minister Modi to inaugurate International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. India and Canada reaffirm their commitment to expedite comprehensive economic partnership agreement negotiations to further deepen economic ties. India ranks first in business climate among 41 global markets, reports Swedish Chamber of Commerce. India's software services exports surge 8.2% year-on-year to over $221 billion in 2025-26, says RBI. And 20th edition of Asian Games 2026 set to begin in Japan today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. The Prime Minister will also address the newly selected candidates on the occasion. More details from our correspondent.
1: The 20th Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly recruited candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Ministries of Finance, Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare and Defence, among others. With the 20th Rozgar Mela, a total of about 12,75,000 youth will have received appointment letters. The Rozgar Mela reflects the government's continued focus on creating employment opportunities for the youth and ensuring their greater participation in the country's development journey. With Anupam Mishra, Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
10: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in the event. Representatives from state judicial academies, state legal services authorities, state expert appraisal committees, state environment impact assessment authorities, and state wetland authorities will attend the conference. The conference will provide a platform to discuss key environmental and climate challenges. These include gaps in policy formulation, implementation, and enforcement. The conference will also explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Statistics and Program Implementation Ministry has released labour market snapshot of selected districts. The district-level key labour market indicators were released by National Statistical Office for the first time. Around 57.8% of districts recorded female labour force participation rate, LFPR, of 40% or above. Worker population ratio, WPR, of the top 50% populous districts ranges between 37.3% to 76.7%. Among the 100 most populous districts, Surat in Gujarat recorded the highest levels of LFPR and WPR, while Darbhanga in Bihar recorded the lowest levels of LFPR and WPR. The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 was held in New Delhi yesterday. Chaired by Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal, the committee was briefed by representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Talking to media, committee chairman Sanjay Jaiswal said the meeting was held in a cordial atmosphere and members raised several questions.
11: The entire meeting was held in a very good and cordial manner. All the MPs asked their respective questions. And our goal, the mandate we have received, is that we have to submit our reports before the winter session. We will definitely be successful in doing so.
10: The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva, and a relentless commitment that continues today. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in this special series, Seva Sankalp Abhiyan, we bring you the story of the evolution of India's sector. India's space sector reforms initiated in 2020 and anchored by the Indian Space Policy 2023 have transformed the nation's space program from a government monopoly into a vibrant, competitive, public-private ecosystem. More details on this from our correspondent.
5: The space sector reforms have brought considerable changes in the space technology sector in the country. The space startup GalaxEye, founded by a team of engineers at IIT Madras that developed Mission Drishti, the world's first opto-SAR satellite, stands testimony to this. The CEO and co-founder of GalaxEye, Suyash Singh, has spoken exclusively to Akashvani on the benefits of space sector reforms.
12: The government is supporting the sector through technology transfers, R&D, more funding initiatives, including the 1,000 crore Space Sector Venture Capital Fund and the Space Technology Development Fund. For a young company like ours, this creates the confidence to take on harder problems and contribute meaningfully to the next chapter of the India Space Program.
5: The reforms in the space sector is encouraging the public-private partnership and helping scale up operations and create a wider ecosystem in the space sector. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
10: Congress candidate for the Nandigram Assembly bipoll, Milan Pradhan, has been arrested in connection with an old murder case related to the 2007 anti-land acquisition movement in Nandigram. Police sources said an arrest warrant had been issued against Pradhan in the case. He is reportedly named in several cases linked to the 2007 Nandigram movement. The Congress has questioned the timing of the arrest and alleged political vendetta by the BJP. The BJP has rejected the allegation, saying the police action was carried out according to law. This is Akashvani giving you the news.
13: For news at your fingertips, follow us on X at AIR News Alerts and join our WhatsApp channel, Akashvani News.
10: Welcome back. You're listening to the Morning News. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a meeting with Canada's Minister of International Trade, Maninder Sindhu, to discuss advancing negotiations on the India-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA. During the meeting in New Delhi yesterday, both sides reaffirmed their commitment to expediting the negotiations and concluding the agreement at the earliest. The CEPA is expected to create new opportunities in trade, in goods and services, investment and other areas of economic cooperation. In a social media post, Mr. Goyal expressed confidence that an early conclusion of the CEPA would help realize the shared vision of significantly increasing bilateral trade and further deepen the India-Canada economic partnership for mutual benefit. India has been ranked first in business climate among 40-plus global markets in the latest Business Climate Survey 2026 by the Swedish Chamber of Commerce in India. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal shared this information in a social media post. He said, India's business climate is setting the gold standard for stability, growth and ease of doing business amid global turbulence. The Global Business Climate Survey 2026 edition presents insights from 41 markets, offering a broad view of Swedish companies' perspectives of doing business abroad. The survey aims to provide a framework for comparing economic performance, outlook, and operating conditions over time in key Swedish export markets. India's software services exports increased 8.2% year-on-year to $221.4 billion in 2025-26. More details in this report.
14: Reserve Bank of India's annual survey on computer software and IT-enabled services exports released yesterday said 7,569 software export companies were contacted for the survey, of which 2,363, including most large companies, responded. These companies accounted for around 89% of total estimated software services exports, over two-thirds of India's total software services exports during the year. BPO services remained the dominant component of IT-enabled services exports. The US remained the largest destination for India's software exports, accounting for 54.1%, followed by Europe at 31.8%, with Pratna's report, Payal Sharma, Akashvani News, Delhi.
10: In Pakistan, 21 people, including 15 policemen, were killed and over 100 others injured near a blast near a mosque in Kohat district of Khyber Pakhtunkhwa province yesterday. Kohat Hospital Medical Superintendent Dr. Tahir Shah said at least 73 policemen and 30 civilians were injured. The police said the explosion took place during Friday prayers and caused a crater near the mosque. According to police, the unidentified assailants targeted the checkpost before escaping from the spot. Militant group Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan have claimed responsibility for the attack. US President Donald Trump said that the United States has reached a deal with Denmark to strengthen the American military presence in Greenland, ending months of tension over his repeated calls to acquire the Arctic island. The agreement leaves Greenland under Denmark's sovereignty while giving the US what Trump described as a larger security role. A low-pressure area is likely to form over the North Andaman Sea and adjoining areas around this evening. According to India Meteorological Department, the system is expected to intensify gradually and move west-northwestwards towards the South Orissa, North Andhra Pradesh coast during the following 3 to 4 days. Its movement is likely to enhance rainfall activity over Orissa from around September 22nd, particularly over southern parts of the state. The grand opening ceremony of the 20th edition of the Asian Games 2026 will start at the Paloma Mizuho Stadium in Aichi, Nagoya, Japan today at 2:30 p.m. Indian time. We have a report.
15: The Asian Games will run from today to October 4th, with more than 500 Indian athletes set to compete across 37 sports. Double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Tur will be India's flag bearers at the opening ceremony. The Indian contingent will feature 5 individual Olympic medalists, despite withdrawal of defending javelin throw champion Neeraj Chopra due to an ankle injury. PV Sindhu will spearhead the badminton campaign, while Meerabai Chanu leads the weightlifting contingent. Shooting will feature Manu Bhakar, Lovlina Borgohain will compete in boxing, and Aman Sehrawat will represent India in wrestling. With Bimal's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
10: And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
16: Thank you, Sarabjit. On the Tata Group row, the Hindustan Times leads with Tata Sons Chandrasekharan move short of shareholder math. In the backdrop of the tussle between the two factions of Trinamool Congress, the pioneer writes, symbol stripped, Mamta faces her darkest hour. The statesman takes note, UAE president calls up PM Modi, reaffirms commitment to West Asia peace and stability. The Hindu notes, India-Nepal discuss post-flood recovery reset in bilateral ties. In view of alleged regulatory violations, the Financial Express takes note, FSSAI move against Nestle infant products. 80 chefs, 450 menu items inside Asian Games kitchen. It's a culinary Olympics, says the Indian Express. Marathi film Gondhal is India's pick for Oscars 2027, informs the Hindu. And finally, the Asian Age on its middle page captures a picture of mother cheetah along with her cubs. India-born cheetah gives birth to 4 at Kuno. And with that, it's back to you, Sarabjit.
10: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute more

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का पॉडकास्ट, जिसका विषय है नशा मुक्ति, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की भूमिका, प्रयास और चुनौतियां। इस विषय पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ग्वालियर के आयुक्त डॉक्टर दिनेश कुमार बिसेन से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी ग्वालियर के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते लेके आते हैं कुछ व्यक्तित्व आपके रूबरू। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ग्वालियर के आयुक्त डॉक्टर दिनेश बिसेन जी। आज हम उनसे नशा मुक्ति, नशीले पदार्थों की रोकथाम, CBN की भूमिका और युवाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेंगे। तो आइए अब देर नहीं करते और उनका स्वागत करते हैं। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी से आपका जुड़ाव कब हुआ और उससे जुड़ी कोई पुरानी स्मृति अगर है तो उसे हमारे श्रोताओं के साथ साझा करिए।
2: हम लोग गांव के पले और बड़े लोग हैं और गांव में जब बात कही जाए, हमारा जब समझ आती है तो समझ आने का एक ईयर कहा जाए 85 के आसपास होगा, 1985। जब सुबह उठते थे तो सबसे पहले दूरदर्शन तो उस समय हुआ नहीं करता था, लेकिन आकाशवाणी हुआ करता था। तो टिपिकल वंदे मातरम के पहले एक म्यूज़िक होती है, फिर वंदे मातरम होता है,
1: सिग्नेचर ट्यून
2: उसको कह लीजिए। तो वो आवाज़ सुन के हमारे कानों में हम लोग पले बड़े हैं। तो आकाशवाणी का कहना चाहिए बचपन से, जब से समझ आती है तब से रेडियो आता है। हमारे पिताजी जो थे वो बड़े फॉन्ड थे कि समाचार सुने, तो शाम का समाचार 6:55 वाला या 7 बजे वाला था, प्रादेशिक समाचार। उस समय हम सबको शांत रहना पड़ता था क्योंकि पूरा समाचार सुनते थे। तो इस तरह से दिन भर की घटनाएं तो हैं ही, बट सुबह और शाम दोनों हमारे दिमाग में अभी भी इम्पैक्ट हैं इसका।
1: करंट अफेयर्स को लेकर समझ वो बहुत कम उम्र से ही बनने लगी होगी। प्रारंभिक जीवन के विषय में थोड़ा और बताइए, शिक्षा और अब तक की करियर की जो जर्नी है उसके विषय में बताइए।
2: हमारा जन्म बालाघाट जिले में एक गाँव में होता है, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो शिक्षा का बालाघाट जिले में एक ट्रैवल स्कूल है, वहाँ से हमारी पढ़ाई हुई, प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद हाई स्कूलिंग पूरा बालाघाट में ही हुआ हायर सेकेंडरी तक। उसके बाद हम प्री मेडिकल टेस्ट होता है, उसके थ्रू वेटनरी कॉलेज जबलपुर में हमारा एडमिशन हुआ। वेटनरी की डिग्री करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन NDRI करनाल से हमने किया, और उसी दौरान UPSC की तैयारी जो होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, यहाँ किसी प्रशासनिक सेवा में जाना है तो उस तरह से तैयारी करके, और फिर भारतीय राजस्व सेवा जिसको इंडियन रेवेन्यू सर्विस कहते हैं, उसमें 2008 बैच में हमने ज्वाइन किया सर्विस को।
1: तो कुछ बताइए कितने अटेम्प्ट्स लगे सर आपको?
2: तो तैयारी की बात करें तो हाँ, इसमें भी आकाशवाणी का रोल ऐसा आता है कि जो समाचार है 8 से 8:15 वाला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पर करता है। तो आकाशवाणी हो या दूरदर्शन, इनकी न्यूज़ बड़ी ऑथेंटिक होती है और यही चीज़ इंटरव्यू बोर्ड में पूछी जाती है। और जब आप अपने प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं UPSC में, मैं 3rd अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ, तो जो गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस हैं, स्पेशली योजना है, कुरुक्षेत्र है या इंडिया एयरबुक है, और मैंने जैसा कि कहा आकाशवाणी या दूरदर्शन, इनका इम्पैक्ट तैयारी में और नॉलेज को इस्टेब्लिश करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है मेरी जर्नी में इन चीज़ों का।
1: अब बात करते हैं केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की, CBN की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि जनरली बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। नशीले पदार्थों की रोकथाम और कंट्रोल में CBN की भूमिका क्या है?
2: जैसे आकाशवाणी बहुत पुराना एक विभाग है या डिपार्टमेंट है, उसी तरह से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी रही है। कहा जाए कि अंग्रेजों के समय एक OPM एजेंसी वर्ड हुआ करता था इंडिया में, तो बिहार OPM एजेंसी या बंगाल OPM एजेंसी या वाराणसी OPM एजेंसी है। फिर धीरे धीरे जब OPM एक्ट बने 1857 पुराने एक्ट बने, फिर ड्रग डेंजर्स एक्ट 1930 में आया, तो OPM के ट्रेड को लेके, अफीम जिसको बोलते हैं हम गाँव में, तो अफीम का उगाना और उससे जो एल्कलॉइड बनते हैं, ये नेचुरल सोर्सेस हैं जिनको फाइटोकेमिकल्स कहते हैं, और इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बड़ा अहम रोल है। अफीम से मॉर्फिन बनती है, कोडीन बनते हैं, तो ये कह लीजिए दर्द निवारक यानी पेन किलर के रूप में यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल्स में। दूसरा, जितने भी स्टेरॉयडल पेन किलर्स हैं उनके कंपेरिजन से OPM से बने

0: जो एल्कलॉइड्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसमें सीबीएन की भूमिका कहें तो सीबीएन वर्ड जरिए कहा जाए तो आज़ादी के बाद जो ओपीएम एजेंसीज थी उनका मर्ज करके नाम कर दिया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। तो 6 नवंबर 1950 को सीबीएन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन जाना जाता है और हिस्टोरिकली सबसे पुराना डिपार्टमेंट है और सीबीएन लिंक होता है कि अफीम जो उगती है गांवों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये तीन है जहाँ पे ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आइडेंटिफाइड करती है कि इन ट्रैक्ट में अफीम उगाई जाएगी और इसके उगाने से लेके रेगुलेशन से लेके फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम जो होता है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स होता है। तो सबसे अहम इंपॉर्टेंट काम कहा जाए तो एक ये होता है। दूसरा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स एक कॉम्पिटेंट नेशनल अथॉरिटीज़ के रूप में जाना जाता है, इसको CNA बोलते हैं। और CNA का इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि एज ए CNA ऑफ इंडिया जो नार्कोटिक्स कमिश्नर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये दूसरे कंट्रीज़ के CNA से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में ये जो नार्कोटिक्स की दवाएं हैं, जो साइकोट्रॉपिक्स की दवाएं हैं या जो कंट्रोल सब्सटेंस है, केमिकल है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनका ड्यूअल यूज़ होता है, दो यूज़ होते हैं। मान लेते हैं कि अगर एसिटिक एनहाइड्राइड है या एसिटिक एसिड है तो वो पैरासीटामोल के पेन किलर बनाने में भी यूज़ होगा और वही एसिटिक कुछ उसमें केमिकल रिएक्शन और ओपीएम मिलाई जाए तो वो हेरोइन जैसे ड्रग बनाने में यूज़ होता है, इनको ड्यूअल यूज़ कहते हैं। तो ड्यूअल यूज़ को जो गवर्नमेंट रेगुलेशन, इंटरनेशनल रेगुलेशन, इसको कंट्रोल करते हैं। तो इस कंट्रोल करने के कारण इनका ट्रेड बड़ा रेगुलेटेड होता है। तो दूसरा अहम काम जो CBN का होता है कि इन नशीली दवाओं का व्यापार को वैध रूप से चलाना, मेडिकल में यूज़ करना और साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ करना, ताकि ये इलिसिट चैनल जो कि दूसरे अवैध चैनल्स हैं इनमें न जाए, एक इम्पॉर्टेंट भूमिका CBN की ये भी होती है। तीसरी भूमिका जो CBN की कहा जाए, नशा मुक्ति या ड्रग कंट्रोल या रेगुलेशन या नार्कोटिक्स कंट्रोल वर्ड यूज़ किया जाए, तो इसमें सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक साथ भूमिका निभाते हैं, जिसमें CBN भी वैसे ही इन्फोर्समेंट एक्शन या रेगुलेशन एक्शन में निभाता है, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसको DRI बोलते हैं, कस्टम्स है, GST डिपार्टमेंट है, NCB नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है और सारे स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको या तो स्पेशली नार्कोटिक्स विंग कहा जाता है, आज की डेट में उनका नया नाम ANTF है। तो ऐसे सारे मल्टी एजेंसी कोऑपरेशन जो इन्फोर्समेंट में भूमिका निभाते हैं। एक छोटी सी भूमिका जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो ट्रेड फैसिलिटेट करने की होती है, ट्रेड को रेगुलेट करने के अलावा भी हम ट्रेड को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में प्रमोट करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आता है, जिसमें हम वॉलंटरी कंप्लायंस करवाते हैं ट्रेड से, जिसकी एक चौथी भूमिका हमारी ये भी होती है एक पिलर के रूप में कि वॉलंटरी कंप्लायंस कराया जाए, ट्रेड को अवेयरनेस किया जाए। और जिस भूमिका के लिए बैठे हैं आज की डेट में, सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका है कि हम अपने श्रोताओं को, अपने सिटीजन्स को कैसे नशे से नुकसान क्या है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं या मेन इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जनता में इसके दुष्प्रभाव क्या है, ये बताना भी हमारा एक अवेयरनेस क्रिएशन का इम्पॉर्टेंट फिलर है आज की डेट में, ताकि देश हमारा ड्रग को यूज़ करना सीखे, एब्यूज़ करना नहीं सीखे। तो नशा मुक्त भारत का अभियान की जो संरचना बनाई गई है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो उसको एग्जीक्यूट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ये अभी सभी डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: जमीनी स्तर पर इसे किस तरह से किया जाता है, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है?
0: नशा मुक्त अभियान की हम बात करें तो इसमें मल्टी एजेंसी कोऑपरेशन, मल्टी डिपार्टमेंट एस्पेक्ट हैं। कॉम्प्रिहेंड करके देखें तो जितने स्कूल्स, यदि यूथ के लेवल पे चले हम, तो आज हमारा इंडिया का यूथ सबसे पावरफुल यूथ माना जाता है। जो हमारा यूथ जो रिसोर्स है, नशा उस रिसोर्स को कम करता है, तो अल्टीमेटली हमारा आउटरीच यानी पहुंचने की जो क्षमता है वो उस यूथ तक होनी चाहिए, यानी उस स्कूल आउटरीच प्रोग्राम तक होनी चाहिए या कॉलेज आउटरीच प्रोग्राम तक होनी चाहिए। तो पहला जमीनी स्तर में ये कहूँगा कि सारे विभाग, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ साथ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग CBN जिसको हम कहते हैं, कि इन स्कूल और कॉलेज में आउटरीच प्रोग्राम चलाने के रूप में निभाते हैं। दूसरी हम बात करें कि अदर देन जो टीचर या स्टूडेंट्स कॉलेज या स्कूल के हैं, उसके अलावा भी जो एज ए सिटीजन या नागरिक या पेरेंट्स हैं, जैसे श्रोता हमारे जो सुन रहे हैं, तो इनको ये बताया जाए कि इस नशे के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, कौन कौन से नशे कॉमनली चल रहे हैं और वो कैसे किन लोगों के द्वारा पहुंच रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। होता क्या है कि थोड़े से फ़ायदे के लिए कुछ, जिनको हम ड्रग पैडलर या ड्रग स्मगलर कहते हैं, वो अपने कमर्शियल फ़ायदे के लिए इनको वहाँ तक पहुँचाते हैं। शुरुआत में उनका तरीका होता है ज़मीनी स्तर पे कि वो उनको फ्री सप्लाई करें, फ्री ऑफ कॉस्ट दें, उनको एडिक्ट बनाए, क्योंकि नशा का मतलब है कि एडिक्शन। और जब उनको लगता है कि इनका एडिक्शन लेवल आ गया है तो वो फिर वो खुद उनके डिमांडिंग सोर्स बन जाते हैं। और जब नशे की लत

0: जाती हैं, तो फिर उनको अरेंज करना, चाहे वो पैसा कहीं से भी ला के अरेंज करें या चोरी करके अरेंज करें, तब वो पेडलर्स इंडिपेंडेंट हो जाता है कि हाँ मैंने एक अपना क्लाइंट क्रिएट कर दिया। पहले उन तक पहुंचाना, उनको लत बढ़ाना, तो इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ज़मीनी स्तर पर भूमिका ये होती है कि वो जो सप्लाई वहाँ तक पहुँचनी है वो सप्लाई को ही कट करना। तो इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम ये होता है कि ये नशे के जो विभिन्न प्रकार हैं, नशे नेचुरल तरह से कहा जाए तो गांजा है या अफीम है, वहाँ तक पहुँचती है, उसको कट करना उस सप्लाई को। दूसरा सेमी सिंथेटिक टाइप के नशे होते हैं जैसे कोकेन है, हेरोइन है,
1: तो
0: लैब में तैयार होती है, तो सेमी सिंथेटिक तरीके से पहुँचती है, बनते हैं वाले ड्रग्स हैं। तीसरी कैटेगरी कहा जाए कि प्योरली केमिकल्स हैं, जो अनऑर्गनाइज सिंडिकेट जैसे आजकल वर्ड जो चलते हैं, MD पाउडर है, MDMA है, एफेड्रिन है, स्यूडोएफेड्रिन है, एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलेंट्स हैं, तो ऐसे सिंथेटिक ओपियॉइड्स की कैटेगरी कहलाती है। तो इन चीज़ों की सप्लाई को कट करना, तो बड़े स्तर पर जितने इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है उसको चेक करने का काम इन्फोर्समेंट एजेंसी का होता है, पकड़ने का काम इन्फोर्समेंट एजेंसी का होता है, और उसमें फिर प्रक्रिया चलती है। तो ज़मीनी स्तर पे उनकी सप्लाई कट करना। दूसरा, जैसे हम अभी जो जिस चर्चा के तहत बैठे हैं, एक प्रकार से डिमांड रिडक्शन का प्रोग्राम है। यदि हम उनके दुष्प्रभावों को, अल्टीमेटली ये यूथ की एनर्जी को कम करता है, जब यूथ उस नशे में एडिक्ट हो गया तो उसका ध्यान ना ही पढ़ाई में लगेगा, ना वो इफिशियंट रिसोर्सेज के रूप में कहीं एम्प्लॉयमेंट कर रहा हो तो उस काम में लगेगा। उस नशे के लेने के बाद में यही नहीं है कि उसको यूफोरिया या अच्छा फील होगा, जब नशे का इफेक्ट कम होता है तो उसके बॉडी के ऑर्गन्स ख़राब होते हैं। यदि उसकी इफिशियंसी दौड़ने की होगी कोई तो वो कम होती है, दिमाग से सोचने की कैपेसिटी कम होती है, वो ड्राइविंग कर रहा होगा तो उसकी ड्राइविंग स्किल कमज़ोर होती है, उसकी डाइजेशन पावर ख़त्म होती है, किडनी खराब होती है, लीवर खराब होते हैं, तो अल्टीमेटली स्लो डेथ, स्लो पॉइजन। तो ये वो चीज़ है, बहुत सारे नशे के तरीके हैं या बहुत सारे नशे के टाइप्स हैं, बट ये एक स्लो किलिंग है। नशे के कई प्रकार हो सकते हैं, बट हम जिस नशे की बात कर रहे हैं वो नशे की कैटेगरी है, NDPS एक्ट में आने वाले हैं, यानी नार्कोटिक्स कहना चाहिए या साइकोट्रॉपिक कहना चाहिए, प्रिकर्सर कंट्रोल कहना चाहिए। इसके अलावा भी शराब और अल्कोहल के भी नशे भी होते हैं, बीड़ी के नशे होते हैं, तंबाकू के होते हैं, सेवन के नशे होते हैं। तो हम जिस विभाग में काम कर रहे हैं CBN में, वो NDPS के तहत आने वाले इलिसिट कंट्राबैंड की बात कहता है। तो ज़मीनी स्तर पर हम कहें इसको तीन कैटेगराइज में कर सकते हैं कि सप्लाई को हमें कट करना, डिमांड को रिड्यूस करना, और जो नशे में लत जिनकी पड़ चुकी है तो उनके लिए डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, मेडिकल साइंस वाले डिपार्टमेंट है जो रिहेबिलिटेट करता है उनको, क्योंकि वो विक्टिम को समाज में ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, उसको रिहेबिलिटेट भी करना है और मुख्य धारा में लाना है।
1: जैसा कि आपने बताया 2008 से आप हैं सेवा में, तो लंबा अनुभव हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि नशे की समस्या जो है इसका सबसे गंभीर पहलू क्या है? नशे की उपलब्धता, इसकी डिमांड, या जो आप कह रहे थे कि युवाओं का इसके प्रति एक फैसिनेशन हो जाता है, वो चाहे पीयर प्रेशर से हो या दूसरी रीजंस हो?
0: गंभीर समस्या में कहा जाए तो ये होलिस्टिक वर्ड है, इसमें हम किसी को कम और ज़्यादा नहीं आ सकते। मैं फ्रेम करूँ कि इसकी गंभीर समस्या है कौन सी, मैं कहूँगा गंभीर समस्या अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स जो है अभी सबसे बड़ी। तो दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, सिंथेटिक यानी बनाए हुए ऐसे केमिकल्स जो बड़े सस्ते मात्रा में पहुंच जा रहे हैं, और ऐसी लैब से बन रहे हैं जिनके बनाने वाले ना ही एजुकेटेड हैं, ना ही उनको ये मतलब है कि इस केमिकल का बॉडी में क्या इम्पेक्ट होगा। कुछ नशे ऐसे होते हैं कि वो साइड इफेक्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन नशे की लत आएगी। लेकिन जो आज के डेट में इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स की हो रही है, सिंथेटिक लैब्स में हो रही है, सिंथेटिक ओपियॉइड्स बन रहे हैं, ये सबसे खतरनाक है। इस सेंस में खतरनाक है कि ये बनने के बाद में एज सच केमिकल नशे के रूप में डाइल्यूट होके मिक्स होके मार्केट में चले जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। दूसरी गंभीर समस्या इसी नशे की लत में कहा जाए कि एक वर्ड यूज़ किया जाता है, NPS बोलते हैं, न्यू साइको एक्टिव सबस्टेंस, वो डे बाय डे केमिकल स्ट्रक्चर फार्मूले को चेंज करके बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये डेंजरस इफेक्ट, ये दो तो मैं कहूँगा, उसके अलावा भी दवाइयों का यूज़ जो लेजिटिमेट यूज़ है वो दर्द को कम करने में, लेकिन एक तरह से सर्दी खांसी की दवाओं के रूप में है, लेकिन उसका अधिक मात्रा में सेवन जो है वो फिर नशा कहलाता है। तो इसको हम साइकोएक्टिव मेडिसिन या साइकोट्रॉपिक ड्रग्स कहते हैं, तो मेडिसिन का ज़्यादा यूज़ भी ड्रग एब्यूज़ कहलाता है। तो ये यूथ या सिटीजन की एफिशिएंसी को कम करता है, ये उसके भयावह इफेक्ट हैं जो अल्टीमेटली हेल्थ प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है। फिर जिस मेडिसिन को हम शरीर को ठीक करने के लिए यूज़ कर रहे थे, उसका जब मिसयूज़ करते हैं, फिर मेडिसिन से उस हेल्थ को ठीक करते हैं, एक साइकिल बना हुआ, अनएंडिंग साइकिल बना हुआ,
1: कॉम्प्रिहेंसिव एक बुराई है, डेंजर। डॉक्टर बिसेन, अक्सर नशे की जो शुरुआत है वो या तो ये पीयर प्रेशर या ऐसे क्यूरोसिटी में कभी कर लिया, कई बार टेंशंस लगता है लोगों को कि उससे हम बच जाते हैं, तो आपके अनुसार कौन सा वो डिसाइसिव मोड होता है जहाँ एक व्यक्ति को नशे से बचाने के लिए फैमिली, सोसाइटी या सिस्टम हस्तक्षेप कर सकती है?
0: बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके, बट अभी वर्तमान में जो कहना चाहिए ज्वलंत एस्पेक्ट की बात है, ज्वलंत मुद्दों की बात कही जाए, तो डिसिसिव रोल प्ले करने के लिए अगर हम आज के 25 साल या 30 साल पीछे जाएं, तो जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अभी न्यूक्लियर फैमिली आ गई है, फिर जो अवेलेबिलिटी वाली टेक्नोलॉजी जो पहले थी वो कम थी, बढ़ने से एक डिसएडवांटेज ये हुआ कि इनका मिसयूज़ ये डिसिमिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। मोबाइल टेक्नोलॉजी अगर बेनिफिट है तो उसका नुकसान भी है कि ये मार्केट की अवेलेबिलिटी इजीली प्रोवाइड कर देता है। अभी ये देखा जाए कि हम जितने सोशली कनेक्टेड होंगे, फिजिकली बात करेंगे आपस में, फैमिली के रूप में पेरेंट्स बच्चों पे उतना ही ध्यान देंगे, उतना ही कनेक्टेड रहेंगे, उतना डिस्कशन करेंगे। अभी आप अगर कहीं चले हैं अगर रोड पे भी, तो देखेंगे कि एक आदमी या एक इंसान सिर्फ मोबाइल से बात कर रहा है, तो पर्सनल कनेक्शन सब कटते चला जा रहा है। खाना भी खाएगा तो मोबाइल के साथ खाएगा, तो थॉट प्रोसेस ही डिफरेंट हो गई है कि हम थॉट्स ज़्यादा खा रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, थॉट्स ज़्यादा ले रहे हैं, बात कम कर रहे हैं। हमें सोशल टच देने वाला एस्पेक्ट मैं समझता हूँ कि फैमिली सिस्टम इन्वायरमेंट ये है। एजुकेशनल अवेयरनेस तो है ही है, जिसमें अभी करिकुलम में भी बहुत सारे जो आप बात कर रही हैं कि वन ऑफ द पार्ट है, जिसमें हम ये समझते हैं कि कहाँ गैप हो रहे हैं उनको फिल करने की बात है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उसमें, वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ये हैं।
1: कई जगह ऐसा है कि अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को लोग AI के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाती है उनकी और उनके AI आपका। नशा मुक्ति की बात करते समय अक्सर एनफोर्समेंट, डिमांड रिडक्शन, जैसे कि आप बात कर रहे थे, काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन और सोशल सपोर्ट, तो दोनों में से कौन सी आपको लगता है कि ज़्यादा कारगर है?
0: इसमें मेरा कहना ऐसा उचित नहीं होगा कि एक कारगर होगा दूसरा नहीं होगा, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच्ड हैं, हमें सिस्टम को पैरेलल साथ में लेके चलना होगा। सप्लाई कट भी एक उतना ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जितना डिमांड रिडक्शन है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यदि हम कहें एज ए इन्फोर्समेंट हमने सारी सप्लाई कट करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट में डिमांड है, तो डिमांड है तो आप सप्लाई उतनी कट नहीं कर सकते, तो डिमांड रिडक्शन पैरेलल चलेगा, लोगों का अवेयरनेस वैसे ही चलेगा, विक्टिम का रिहेबिलिटेशन वैसे ही चलेगा, सोशल सपोर्ट वैसे ही चलेगा। तो दो एस्पेक्ट को जोड़ा जाए तो एक हमें मार्केट में डिमांड कम करनी होगी, तब सप्लाई की जरूरत नहीं है, तो हम सिटीजन को ऐसा बनाएं कि उसकी डिमांड ही न रहे, तो इसमें एजुकेशन, सोसाइटल, पेरेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। जो लैकिंग नहीं रहे तो ऑटोमेटिकली डिमांड, तो मैं कहूँगा कि डिमांड कट यदि हम करते हैं, बट चूंकि अकेला डिमांड रिडक्शन पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो सकता, तो पैरेलली सब चीज़ें चलेंगी, ये
1: एक साथ
0: चलेंगी।
1: नशीले पदार्थों की स्मगलिंग और इसके नेटवर्क लगातार आप देख रहे हैं कि अपने तौर तरीके बदल रहे हैं, डिजिटल युग में किस तरह काम कर रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के आधार पर बताएं कि इस चुनौती से निपटने में सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए क्या होती है, और CBN किस तरह अपनी स्ट्रैटेजी और कार्य प्रणाली को अपने अनुरूप विकसित करता है।
0: जैसे कि ये समस्या नेशनल ना होके अब इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, और डिमांड एंड सप्लाई नेशनल ना होके इंटरनेशनल है, तो CBN का यदि रोल इसमें कहा जाए तो हम इसको ट्रांसनेशनल क्राइम को चेक करने के लिए जो एफर्ट्स करते हैं, जैसे मैंने कहा हमारा इंपॉर्टेंट रोल एक इन्फोर्समेंट होता है, तो ये तो है कि जहाँ लिसिटली OPM कल्टिवेट होती है उन एरियाज में इलिसिट डाइवर्जन ना हो। इसके अलावा जो मेजर ट्रैफिकिंग रूट्स है उसमें हम लोग वॉच रखते हैं कि क्या क्या सप्लाई के रूट्स हो सकते हैं जहाँ से ट्रेड होता है। इंटरनेशनली बात करें तो यदि कोई मेडिसिन या ड्रग्स या प्रिकर्सर इंडिया में आ रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है, तो हम उस पर वॉच रखते हैं कि कौन से चैनल को हमें ज़्यादातर फोकस करना है, या कौन से केमिकल को फोकस करना है, या किस केमिकल की डिमांड सप्लाई बढ़ रही है या घट रही है, तो इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके चलते हैं। साथ साथ इसमें जो कहना चाहिए इन्वेस्टिगेशन एस्पेक्ट है CBN का, इन्फोर्समेंट तो ठीक है हमने उसको पकड़ लिया, उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है इन्वेस्टिगेटर के लिए, और उन लोगों को सजा दिलाना जिसमें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और जुडिशियरी का इंपॉर्टेंट रोल है। तो जुडिशियल सिस्टम, इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम, इन्फोर्समेंट सिस्टम, ये तीनों की कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को लेके CBN काम करता है।
1: पर CBN कमिश्नर के तौर पर हमारे जो शहर है ग्वालियर, या दूसरे श्रोता जो आपको सुन रहे हैं, उनको और उनके पेरेंट्स को भी नशा मुक्ति को लेकर अगर संदेश दें तो क्या संदेश होगा?
0: क्योंकि ग्वालियर बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन

0: ऑर्गेनाइजेशन पे है। इनफैक्ट हम जब पहले पोस्टेड रहे एमपी में, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे उसे डीआरआई कहते हैं। ग्वालियर से सिटीजन की बात करें, उसके पहले मैं बात करूंगा कि ये इम्पॉर्टेंट रूट है जो नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करता है वाया ट्रेन एंड वाया रोड ऑल्सो। तो जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स जो बने हुए हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट रूट ग्वालियर है। तो बहुत सारे जो स्मगलिंग के चैनल्स हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, आल्दो इस जगह कंज्यूम नहीं होते, ये अच्छी बात है। तो इस रूट में हमारा एक एक मॉनिटरिंग होती है। दूसरी बात हम कहें कि यहाँ के ग्वालियर की पब्लिक को एक मैसेज देने की, तो मैं कहूँगा ये मैसेज सारे सिटीजन के लिए है, इक्वली ग्वालियर के लिए भी है, क्योंकि ग्वालियर में हम चूँकि काम जो करते हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे करते हैं, बट लोकली जो मैसेज मेरा यही रहेगा कि एज ए सिटीजन, एज ए पेरेंट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो यूथ नर्चर हो रहा है, स्कूल में नर्चर हो रहा है, कॉलेज में नर्चर हो रहा है, और स्पेशली जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, अर्न करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है,
1: वल्नरेबल भी होता है,
0: वल्नरेबल भी सबसे ज़्यादा वही होता है, और पैडलर और स्मगलर इन्हीं को ही यूज़ करते हैं,
1: टारगेट
0: करते हैं। तो ये हम एज ए पेरेंट्स, एज ए सिटीजन, एज ए ऑफिसर, एज ए अवेयरनेस क्रिएटर, और इनमें हमें सब लोगों को साथ में लेके चलना होगा। जितने अगर हम ग्वालियर शहर की बात करें तो कॉलेजेस का इम्पॉर्टेंट रोल है, स्कूल्स का इम्पॉर्टेंट रोल है, उनके प्रिंसिपल्स या उनके डीन या डायरेक्टर्स ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करें, जनरेट करें, जिसमें इफेक्टिवली, अभी तो हम कम समय में उतनी डिटेलिंग बात नहीं कर सकते कि डायरेक्टली पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन हो, जिनको दिखाएं कि इसके इम्पैक्ट क्या है, और फर्स्ट टाइम कैसे ये पैडलर्स उस वल्नरेबल टारगेट यानी कि लेने वाले, कंज्यूम करने वाले को कनेक्ट करते हैं। तो स्कूल, कॉलेज ये जो है यहाँ से प्रोग्राम चलाते रहें मंथली या वीकली। साथ में ये जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम भी CBNF कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जनरली कहीं ना कहीं एक बात ये देखी जाए कि कॉन्शियसनेस या मन में जो विचार हैं उनमें भी एक बदलाव आ रहा है। बदलाव अच्छे से, इसमें टेक्नोलॉजिकली हम रिवॉल्यूशन में जा रहे हैं, बट कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं कोई चीज़ डिप्लीट हो रही है, थॉट्स के वैराइटीज बढ़ रहे हैं। तो जो थॉट्स को रेगुलेट कर, कंट्रोल में वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन एक होता है कि एलिवेटेड थॉट्स को नंबर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी थॉट्स में वेस्ट और नेगेटिव के नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो एलिवेटेड थॉट्स के नंबर बढ़ाना है तो हमें एक स्पिरिचुअली कनेक्ट देना है इन यूथ को, यंग को, और साथ साथ पेरेंट्स को भी, तब एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चल सकती है समाज में। और हम कह सकते हैं कि ड्रग का सेफ यूज़ करने की बात करें और नशा मुक्त भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार करने की बात करें, तो हम एक सब लोग कॉम्प्रिहेंसिव रोल प्ले कर सकते हैं
1: जी, क्योंकि जो पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थॉट्स हैं वो इम्पोज नहीं कर सकते, अंदर से ही जनरेट होंगे जी। डॉक्टर बिसेन, अब वो समय है कि मैं आपसे पूछूं, आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत बताइए।
0: मैं उन दिनों में जाऊँगा जहाँ कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, तो एक परदेश का है गीत, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। नशे की यदि मुक्ति की तरफ जाना है तो ये जो दिल का मतलब, ये दिल बॉय गर्ल वाला दिल ना होके मैं कहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी में हम कनेक्ट हों, तो गॉड का एक दिल और एक इंसान का दिल, दोनों का मिलन होना जरूरी है। इस गीत को मैं वहाँ स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट करने की बात करूंगा, तो दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके।
1: दो दिलों का रोमांटिकली भी मिलना बहुत अच्छा है अगर आपको नशे से बचा रहे हैं तो दोनों ही ऑप्शन हैं आपके पास, अल्टीमेट ऑप्शन तो सर ने बताया, शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं। सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: डॉक्टर बिसेन जी, नशा मुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपने अनुभव और विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें विशेषकर हमारे युवाओं और उनके परिवारों को नशे के प्रति जागरूक होने, इससे दूर रहने की प्रेरणा देंगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप ये पॉडकास्ट सुन रहे थे जिसमें केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ग्वालियर के आयुक्त डॉक्टर दिनेश कुमार बिसेन से नशा मुक्ति, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की भूमिका, प्रयास और चुनौतियां विषय पर बात कर रही थीं डॉक्टर विभूति सिंह। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

के दिया, और यही वो अभी हाल की जो ब्रिक्स समिट हुई, ब्रिक्स की समिट में न केवल रशिया यूक्रेन का इश्यू था, एक और इश्यू था बहुत बड़ा, ईरान था, यूएई था, सऊदी अरेबिया था, ये तो युद्ध में दो तरफ थे, आपस में लड़ रहे थे। भारत में बैठ के ईरान के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति ने मिलकर मीटिंग की, तो ये दिखाता है कि भारत जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में इसने बड़ी डायनेमिक रोल प्ले किया है लीडर। और ये लीडरशिप प्रधानमंत्री जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करो या ये करो, उन्होंने कहा इसको आप एग्रेसिव कीजिए, इसको आप एम्बिशियस बनाइए, और फिर उसके बाद वो सारी फ्रीडम आपको दे देते हैं, वो विश्वास पे बहुत बिलीव करते हैं। अगर विश्वास करते हैं पर फिर उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, आज मैं अखबार में एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें भोजन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। मैंने सोचा आज आपसे सबसे पहले भोजन के बारे में ही बातें की जाएं। आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में भोजन का क्या महत्व है? हम में से ज़्यादातर लोग सुबह उठते से किचन में जाते हैं, कुछ ना कुछ अपने खाने पीने के लिए तैयार करते हैं, और कुछ नहीं तो सुबह चाय बनाने के लिए ही किचन में जाते हैं, और उसी समय से आपका दिमाग जो है वो भोजन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। बाज़ार ने हमारे दिमाग को ऐसा ट्रेन कर दिया है कि हमारा दिमाग अपनी लाइफस्टाइल में यदि कुछ ढूंढता है तो वो बढ़िया खाना ढूंढता है, और धीरे धीरे हम उस दिशा में चलते जा रहे हैं जब वो बढ़िया खाना हमें अपनी रसोई से नहीं मिलता बल्कि हमें बाज़ार में मिलता है। ऐसा है ना? बाज़ार में इतने फूड जॉइंट्स खुलते जा रहे हैं जो ये बताते हैं कि हम भोजन के लिए अपने घर में नहीं बल्कि बाहर ठिकाने तलाश कर रहे हैं और अपने स्वाद को एक किक देना चाहते हैं। क्या ये किक आपके स्वाद को चाहिए? दरअसल भोजन क्या है ये हम भूलते जा रहे हैं। भोजन का जो विचार है ये हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में एक बहुत बड़ा विचार है। रोटी कपड़ा मकान में भी रोटी सबसे पहले है। एक गाना याद होगा आपको, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, याद है ना? ये जो सादा जीवन पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई थी ये उसी विचार को पुष्ट करता है। लेकिन आज हम सादा भोजन की तरफ नहीं आकर्षित होते। कहीं कोई दाल रोटी खिलाएगा और कहीं कोई मोमोज खिलाएगा तो आप मोमोज की तरफ जाएंगे, दाल रोटी की तरफ नहीं जाएंगे। दाल रोटी की याद आपको तब याद आएगी जब आपका पेट अपसेट होगा या फिर आप तमाम सारे ईटिंग जॉइंट्स चख लेने के बाद, वहाँ का एक्सपीरियंस कर लेने के बाद, कुछ भी न रुचने के बाद घर की रोटी और दाल की याद आएगी। होता है ना ऐसा ही? जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो सुबह, दोपहर, शाम बाहर का खाना खाते खाते आपको घर की दाल चावल की याद आती है, घर की दाल रोटी की याद आती है। ये जो भोजन की नई संस्कृति हमारे आसपास रच दी गई है, इसमें हमें थोड़ा सा ठहर

कर सोचने की आवश्यकता है कि हम कब बाजार की तरफ जाएं और कब घर का रुख करें। दरअसल भोजन में स्वाद भी है जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। स्वाद एक एक्सपीरियंस हमको देता है जो हमें तमाम सारे दुख दर्द तकलीफ़ें भूल कर भोजन को इंजॉय करने की एक फील देता है, महसूस कराता है कि हमारे जीवन में कुछ स्वाद भी है, कुछ अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं। जब कभी हमें सब तरफ से मुश्किलें और परेशानियां महसूस होने लगती हैं तो हम राहत ढूंढते हैं भोजन में। वो समय, वो एक्सपीरियंस हमें सेटिस्फाई करता है, लेकिन कभी-कभी ये भी डिसबैलेंस हो जाता है। सेटिस्फैक्शन ढूंढते ढूंढते हम फूडी हो जाते हैं और इतना खाने लगते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तो स्वाद कब और कितना चाहिए, ये बैलेंस जीवन में बेहद ज़रूरी है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है हमारी संस्कृति में, यानी अन्न सिर्फ भोजन नहीं है बल्कि जीवन को धारण करने वाली वो एक डिवाइन पावर है, वो दिव्य व्यवस्था है जिसके बिना शरीर, मन और हमारी व्यवस्थाओं में कहीं भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ ब्रह्म यानी अन्न ही एग्जिस्ट करता है। दरअसल स्वाद लेना बुरा नहीं है, बुरा क्या है, हमारा असंयमित हो करके भोजन करना। भोजन करते समय यदि हम जागरूक हैं और जो भी हमें परोसा गया है, हमारी थाली में आया है, चाहे वो दाल रोटी हो और चाहे बाजार का तमाम छप्पन भोग, इसके प्रति यदि हमारी कृतज्ञता बनी रहती है कि हमें आज का भोजन प्राप्त हो गया और किसी की कृपा से प्राप्त हुआ। भोजन आप अपना कमाते ज़रूर हैं, लेकिन यदि इस दुनिया में अन्न ही ना हो तो आपके पास कितने भी पैसे हों आप अपना पेट नहीं भर सकते। तो कृतज्ञता बेहद ज़रूरी है और इस कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए अपने भोजन को यदि धीरे धीरे खाया जाए, हर निवाले को महसूस करते हुए खाया जाए, तो आपका पेट 10 निवालों में ही भर जाएगा। यदि आप ये महसूस करते हुए नहीं खाएंगे तो आप 20 निवाले भी खा लेंगे तो भी आपको वो संतुष्टि का अनुभव नहीं होगा जो उस भोजन को खाने के बाद प्राप्त होना चाहिए था। इसलिए हमेशा भोजन की मर्यादा को ध्यान रखें। हमने क्या खाया ये महत्वपूर्ण नहीं है। कभी-कभी हम ये आज हमने पिज़्ज़ा खाया फ्लॉन्ट करते हैं, अपने सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, आज हमने फलाने रेस्टोरेंट में भोजन किया। ये महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि हमने किस भाव से खाया। हमेशा याद रखिए कि हमारे लिए अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है, हमको उस धन को उपयोग करने के लिए जो हमारे मन में भाव आ रहा है वो भी महत्वपूर्ण है, हमारे मन की अवस्था महत्वपूर्ण है। यदि हम बहुत महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, बहुत बेहतरीन खाना खा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल खाना भी यदि आप खा रहे हैं या कोई भी क्यूजीन खा रहे हैं, यदि आपने वो दुखी मन से खाया है तो आप उसका स्वाद नहीं ले सकेंगे। एकदम सादा भोजन यदि आप प्रसन्न मन से खाएंगे तो उसकी जो तृप्ति होगी वो आपको कहीं भी महसूस नहीं हो सकती। इसलिए खाने के समय हमेशा अपने आप को जागरूक रखें, क्योंकि भोजन के समय यदि हम जागरूक रहते हैं तो हम ज़्यादा स्वाद का अनुभव कर पाएंगे और हमारी सेहत भी उसी स्वाद और जागरूकता की वजह से बेहतर होगी। ये चेतना बेहद ज़रूरी है। हमें स्वाद आकर्षित बहुत करते हैं, कहीं से गुजरेंगे कोई खाने की खुशबू आ जाए तो हम चाहते हैं कि हम उस तरफ गुजर जाएं। उधर जैसे मान लीजिए किसी बाज़ार से निकल रहे हैं, समोसे तलने की खुशबू आ रही है तो आपको वो खुशबू आकर्षित करती है और आपका मन करने लगता है कि आप वो समोसे खरीदें और खा लें। लेकिन मन पर भी आपका कितना नियंत्रण है ये ज़रूरी है। आप ज़रूर खाइए समोसे क्योंकि वो भी कुदरत की एक नियामत है,
लेकिन बिना सोच

वे समझे नहीं। पेट भरा है फिर भी आपने एक दो समोसे खा लिए और फिर आगे के 4 घंटे आपके बर्बाद हो गए, या फिर आप डाइट पर हैं और समोसे की खुशबू आई और आप अपनी डाइट भूल गए और समोसे खा लिए। ये भी थोड़ा सा मुश्किल बात है। इसलिए भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आकर्षण के प्रति, आकर्षण के विरुद्ध। हमारी संस्कृति में स्वाद के साथ साधना की बात कही गई है, यानी स्वाद के बीच जागरूक रहें और संयमित रहें। भूख हो तो भोजन करें, भूख समाप्त हो जाए तो भोजन करना रोक दें, यानी रुकना बेहद ज़रूरी है। ये जो संयम है ना, जीवन में तो संयमित रहना सिखाया जाता है, लेकिन जब हम हमारे पास असीमित मात्रा में भोजन होता है, हम जो चाहें खरीद कर खा सकते हैं, तो ये संयम बेहद ज़रूरी है। तो संयमित रहिए और भोजन देखकर पहले तो मुस्कुराकर उसका स्वागत कीजिए, और फिर उसके बाद यदि आप मुस्कुराकर भोजन का स्वागत करेंगे और अपनी पांचों इंद्रियों से भोजन ग्रहण करेंगे। अब आप कहेंगे पांचों इंद्रियों से कैसे भोजन ग्रहण कर सकते हैं, भोजन तो स्वाद ग्रंथि उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। नहीं, मैंने अभी आपको बताया था ना कि समोसे की खुशबू आती है, तो भोजन की खुशबू होती है उसको आप अपनी घ्राण शक्ति से महसूस करते हैं, आँखों से देखते हैं कि वो कैसा दिख रहा है, उसके टेक्सचर को कानों से सुनते हैं। जब कोई चीज़ आप तोड़ते हैं उसका क्रंच आपको सुनाई देता है तो आपको लगता है कि हाँ, अरे ये तो बड़ा करारा है, ऐसा लगता है ना। या किसी मतलब रोटी के फूल कर या पूड़ियों के तलने की जो छनछनाहट होती है, कुरकुरे पकौड़ों के तलने की जो आवाज़ होती है, छन्न से छोंक देने की आवाज़ आती है, ये सुनकर आपको बड़ा सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, कानों से सुनकर, ज़बान से स्वाद के साथ। और जब आप हाथों से उसको छूते हैं तो वो नरम है, गर्म है, कैसी है, ये आपको स्पर्श से महसूस होता है। ये जो पांचों इंद्रियां जब भोजन में आप शामिल करेंगे, ये तभी शामिल हो पाएंगी जब आप तसल्ली से बैठकर खाना खाएंगे। ये नहीं कि आपने सामने टीवी चला लिया और टीवी देखते देखते और खाना खा रहे हैं और आप खाना खा लेंगे और आपको खाना खाने का एहसास नहीं होगा। तो पूरे एहसास के साथ भोजन कीजिए और सबसे पहली जो चीज़ है वो मुस्कुरा कर अपने भोजन का स्वागत कीजिए।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

श्रोता साथियों, इस गाने से पहले हमने बात की भोजन के बारे में। चूंकि सितंबर माह भोजन से स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन प्राप्त करने का महीना घोषित किया गया है, सितंबर महीने में ही हम अपनी भाषा पर भी खूब चर्चा करते हैं। भाषा मतलब क्या? भाषा मतलब ये कि हम अपने मनोभाव, अपने विचार जिस भी बोली में एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो हमारी भाषा होती है। जो भी हमारी भाषा है, भले एक ना हो,

हम कोई और भाषा बोल रहे हैं, आपके मित्र के घर में बोली जाने वाली भाषा बोली कुछ और हो सकती है। भारत में तो इतनी सारी भाषाएं और बोलियां हैं जिनका हिसाब रखना मुश्किल है। क्या सिर्फ एक ही जैसी बोली और भाषा हम बोलने लगेंगे तो हम अपने देश की विविधता को बरकरार रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। हमारे देश की सुंदरता इसके विविधता में ही है। हाँ, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हमारे संवाद की भाषा एक होनी चाहिए। जब उत्तर भारतीय कोई व्यक्ति दक्षिण भारत में जाए तो उसको अपनी बात समझने समझाने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो कोई एक ऐसी भाषा ज़रूर होनी चाहिए जिसमें हम आप संवाद कर सकें पूरे भारतवर्ष में कहीं भी। हालांकि हिंदी ने वो स्थान प्राप्त कर लिया है और इसमें बहुत बड़ा योगदान है हिंदी फिल्मों का। जी हाँ, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हिंदी फिल्में देखी और समझी जाती हैं, और मुझे नहीं लगता कि हिंदी फिल्में देखने में किसी को सबटाइटल्स की ज़रूरत पड़ती होगी। दरअसल भाषा जो भी हम बोलते हैं या बोली जो भी हम बोलते हैं, जब भी हम उसके प्रति दुराग्रही हो जाएंगे तो हम उसे मार देंगे। आग्रही बनिए। जी हाँ, आपकी अपनी जो भाषा है, जैसे यदि मैं अपनी बात करूँ तो हम जिस अंचल में रहते हैं वहाँ बुंदेली बोली जाती है, तो यदि हम बुंदेली सीखना समझना बोलना शुरू कर देंगे, उसके साहित्य को ढूंढ कर निकालेंगे, उसके लोकगीतों को ढूंढ कर निकालेंगे और उसका आनंद लेना शुरू करेंगे, तो बुंदेली जी उठेगी, एक नई पहचान उसको मिल जाएगी। और जब नई पहचान मिलेगी ना, सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया पहचानने लगेगी। उदाहरण एकदम ताज़ा है, एक फिल्म आई है जिसका एक गाना बहुत मशहूर हो रहा है, ब्लॉकबस्टर है, हम आप सब सुन रहे हैं और हर जगह उस गाने की चर्चा है। कौन सा गाना बताऊं? चलिए सुना देती हूँ।

मिलता है आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर? ये भक्ति करनी है ना तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: ये गाना आज हम सब की जुबान पर है, क्यों ना हो। इसमें एक जो अपनापन है, एक अलग सी किक है, वो हम सब को जोड़ देती है। ये जो माटी की सुगंध है, ये हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। श्रोता साथियों, हम फिल्मों की बात कर रहे थे, भारतीय हिंदी फिल्मों की बात कर रहे थे। ये गीत भी एक हिंदी फिल्म का है, लेकिन फिल्में हमारे देश में किसी भी भाषा में बने, वो हमारी संस्कृति की नुमाइंदगी करती हैं। फिल्म निर्माण एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, लेकिन इस व्यापार में भी कुछ फिल्में इतनी क्लासिक होती हैं, एक संदेश समाज को देकर के जाती हैं, जिनकी वजह से उन फिल्मों की पहचान बहुत लंबी चलती है, वर्षों वर्ष बीत जाते हैं और फिल्में याद रहती हैं। ऐसी फिल्मों को बहुत पुरस्कार भी मिलते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते। हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में फिल्मों के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार की। जी हाँ, ऑस्कर की बात कर रही हूँ मैं। ऑस्कर 2027 की आधिकारिक एंट्रीज शुरू हो चुकी हैं और हम बात कर रहे हैं कि ऑस्कर में भारत को जो नुमाइंदगी का मौका मिला है, वो किस फिल्म से मिला है। वो है मराठी फिल्म गोंधल। 2027 के ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है उसे। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी घोषणा की है। ये फिल्म है संतोष दावखर की लिखी और निर्देशित की हुई, और एक नवविवाहित जोड़े से जुड़े एक अनुष्ठान की कहानी है। ये सिर्फ एक रात की कहानी है। इसे अकादमी अवार्ड्स की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणी के लिए चुना गया है। गोवा में अभी 2025 में जो IFFI का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था, वहाँ इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर जो हैं संतोष दावखर, उनको बेस्ट डायरेक्टर का सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया था, और यही फिल्म अब ऑस्कर की भारत की तरफ से नॉमिनी होगी।

और इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर समाप्त करने की अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सावनी शेंडे का शास्त्रीय गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं नफीस अहमद और सारंगी पर हैं सरवर हुसैन। सुनते हैं सावनी शेंडे का गाया राग नट भैरव में ये ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सावनी शेंडे का गाया राग नट भैरव में ये ख्याल। तबला संगत नफीस अहमद की और सारंगी पर थे सरवर हुसैन। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बजते हैं। जिले की चिट्ठी अब भोपाल से होगी।

सीहोर जिले में जाते जाते मानसून की अच्छी बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। खरीफ की सीजन की मुख्य फसल सोयाबीन खेतों में हरियाली की चादर ओढ़े लहलहाती अपनी कहानी खुद कहती नजर आती है। सीहोर जिले में खरीफ की सीजन में लगभग 4,08,000 हेक्टेयर रकबे में बोनी की गई है। जिले में इस बार 3,30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन की फसल बोई गई है। जिले में इस बार बारिश के सीजन में बारिश गत वर्ष की तुलना में कम हुई है। जिले में अब तक औसतन 840.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान पिछली बार 943 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई थी। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सीहोर जिला सेवा सद्भाव उत्साह और जन भागीदारी की रोशनी से जगमगा उठा। शाम होते ही जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर और आंगन आंगन आशीर्वाद का दिया जल उठा। आशीर्वाद का दिया अभियान ने पूरे जिले में जन भागीदारी की एक मनोहारी तस्वीर प्रस्तुत की। बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीहोर के बढ़ियाखेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी सीजी क्रॉम्पटन और ग्रीव्स पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की नई पावर ट्रांसफार्मर बनाने वाले इकाई के पहले ट्रांसफार्मर का रोल आउट किया। ये इकाई करीब 50 एकड़ में फैली है। उन्होंने बताया कि महज 13 से 14 महीने के रिकॉर्ड समय में इस संयंत्र का निर्माण पूरा कर उत्पादन शुरू किया गया है, जो राज्य की तीव्र औद्योगिक प्रगति का प्रमाण है। सीहोर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में जिले में सेवा संकल्प अभियान को लेकर आयोजित जिला स्तरीय पत्रकार वार्ता को प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाकर कहा कि बीजेपी सरकार ने जनहितैषी कार्य में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। बीते दिनों सीहोर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत ग्राम ब्रजेश नगर में जिला स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णा गौड़ सहित राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और जिला अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 के अंतर्गत सीहोर जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय महुआखेड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यालयों की सूची में स्थान प्राप्त किया है। सीहोर जिले में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है। अब तक कुल 2560 घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। सीहोर जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर बाला गुरु के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरे जिले में एक साथ छापेमारी कार्रवाई कर लगभग 200 नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा। सीहोर जिला मुख्यालय में गेल गैस प्रोजेक्ट के तहत अब तक 4,500 घरों में गैस पाइपलाइन की फिटिंग की गई है। फिलहाल प्रथम चरण में 12,000 परिवारों को अपने घरों में गैस पाइपलाइन से मिलने लगी है। सीहोर के जिला खनिज विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के कुल 389 प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में 2,43,80,597 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। सीहोर में भी गणेश चतुर्थी की धूम है। देश के चौथे स्वयंभू पीठ कहलाने वाले विक्रमादित्य कालीन प्राचीन सिद्धि विनायक चिंतामन गणेश मंदिर में भगवान गणेश जी के जन्म की महाआरती हुई। देश भर और विदेश से लाखों भक्तगण गणेश चतुर्थी पर्व के अवसर पर यहां आए। सीहोर की नन्ही बालिका तान्या सचदेवा ने 13 फल 15 जनवरी 20 अंगों की पहचान और 7 जनवरों की आवाज की हुबहू नकल निकालकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया। सीहोर में श्रावण माह में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से वार्षिक शिव पालकी यात्रा आस्था और श्रद्धा के साथ निकाली गई। पालकी में सवार भगवान भोले ने नगर भ्रमण किया। बीते दिनों सीहोर के आवासीय खेलकूद मैदान और चर्च मैदान पर मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की स्मृति में राज्य स्तरीय अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें प्रदेश की 16 टीमें भाग ले रही है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख था प्रदीप सिंह चौहान का और वाचन स्वर थे दीपक सिंह के। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: कुछ तेरे दिल में फिफ्टी, कुछ मेरे दिल में फिफ्टी, जमाना है पूरा।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त को। फिल्म थी सीआईडी। मजरू सुल्तानपुरी के गीत को संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने। ओपी नैयर के ही संगीत निर्देशन में आशा भोसले को सुनते हैं। फिल्म है हावड़ा ब्रिज। गीत कमर जलाल अबादी का है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं SH बिहारी की गीत रचना। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है फिल्म सावन की घटा के लिए OP नैयर के संगीत निर्देशन में।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को आइए अब आपको सुनवाते हैं। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने और फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा।

0: अरे जा
1: जा जा जा जा
0: अरे सुन सुन सुन सुन
1: जा
2: ये थे गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी फिल्म आर पार में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत ओपी नैयर का था। मजरू सुल्तानपुरी और ओपी नैयर के इस कॉम्बो को फिर से सुनते हैं। फिल्म है मेरे सनम, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

0: मानो बुरा मानो। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का ये गीत। गीत लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।
1: देखिए एक दिन प्यार हो।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। श्रोताओ, आइए अब आपको सुनवाते हैं नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न होगा। आइए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

चलते हैं, जहां से आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं कमल किशोर बड़ाई और कौशिक।

0: रॉय। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज राष्ट्रीय हरित

0: उद्योग और मुख्य हितधारकों को एक साथ लाती है। और अब प्रधानमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर एनजीटी मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे।
1: Prime Minister has launched the NGT mobile application and now a short film on NGT.
2: NGT mobile application एक ऐसा स्मार्ट प्लेटफॉर्म जो न्यायिक सेवाओं को आपके मोबाइल तक लेकर आता है। अब अपने केस की जानकारी प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक आसान है। बस केस नंबर, ईयर और जोनल बेंच दर्ज करें और कुछ ही सेकंड में केस स्टेटस आपके सामने होगा। अगली सुनवाई की तारीख जाननी हो या कॉज लिस्ट देखनी हो, सभी आवश्यक जानकारी अब आपकी उंगलियों पर उपलब्ध है। जजमेंट एंड ऑर्डर सेक्शन के माध्यम से आप अपने केस से संबंधित आदेश और निर्णय कभी भी देख सकते हैं। वहीं डिस्प्ले बोर्ड फीचर आपको एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की उस समय की चल रही कार्यवाही से जुड़े रखता है। ई फाइलिंग, लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, करियर एंड रिक्रूटमेंट तथा अन्य महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस भी अब एक ही ऐप पर उपलब्ध हैं, जिससे समय की बचत होगी और जानकारी तक आपकी पहुंच और भी आसान बनेगी। आप अपनी आवश्यक जानकारी को फेवरेट्स में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर केवल एक क्लिक में उसे फिर से देख सकते हैं। एनजीटी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य केवल डिजिटल सुविधा प्रदान करना नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। आइए तकनीक को अपनाएं, पर्यावरण संरक्षण के इस मिशन में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और न्यायिक सेवाओं को एक नई डिजिटल पहचान दें। एनवायरमेंटल जस्टिस, एनी टाइम, एनी वेयर।
3: तो अब एनवायरमेंटल जस्टिस,
1: दैट वॉज अ शॉर्ट फिल्म ऑन द फीचर्स ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल मोबाइल एप्लीकेशन एंड द प्लेनरी सेशन इज packed with the delegates and domain experts and legal numeraries and the honorable judges of the honorable high courts of various states of India and also the Supreme Court of India, and everyone is eagerly looking forward to the inaugural address of the Future of Environment and Climate Dynamics Conference by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
0: जी कौशिक जी, दो दिवसीय सम्मेलन में विश्व भर से न्यायाधीश, पर्यावरण विशेषज्ञ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रतिनिधि, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य यहां पर मौजूद हैं।
1: एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी।
4: कार्यक्रम में उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी भूपेंद्र यादव जी, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, यह हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, देवी और सज्जनों, प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है। मुझे खुशी है एनजीटी की ये कॉन्फ्रेंस उसी मिशन को आगे बढ़ा रही है। इस आयोजन के लिए मैं एनजीटी के सभी पदाधिकारियों को, इससे संबंधित सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं अक्सर कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है। यहां बहुत सारे ग्लोबल साउथ के मेरे साथी बैठे हैं, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है, 6 गुना ज्यादा। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है, और मैं हर भारतवासी से कहूंगा, आप भी दम दिखाइए। हमने अपनी परंपराओं और उनकी ताकत को भी दुनिया के सामने रखा है। इन्हीं विषयों को लेकर पेरिस में COP21 के दौरान हमने कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज उस बुक को भी लॉन्च किया था। हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है। साथियों, आज का भारत पर्यावरण सुरक्षा के अपने प्राचीन विचारों को आधुनिक विजन में पिरोते हुए आगे बढ़ रहा है। बीते 12 वर्षों में पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में भारत ने असाधारण प्रगति की है। हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है, और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है, मैं G20 के बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके सामने बता रहा हूं जी, इकलौता भारत ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे, उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। ये हिंदुस्तान की ताकत की मैं बात कर रहा हूं। नॉन फॉसिल फ्यूल सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है। आप आंकड़ों को देखिए, 12 साल पहले भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट थी। 12 साल पहले 2 गीगावाट। अगर यहां वकील बैठे हैं तो जरा ध्यान रखें, आंकड़े कभी काम आएंगे। आज यह 160 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। 2 गीगावाट से 160 गीगावाट 12 साल में। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं। ये दुनिया के कई देशों के टोटल घरों से ज्यादा है। इसके लिए सरकार ने हर घर को करीब 80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी है। कुसुम योजना के तहत सरकार ने 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप्स लगाने का काम किया है। हमने वन नेशन वन ग्रिड का एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, घरों में एलईडी बल्ब, जो बिजली की बचत करने में सफल पुरवार हुआ है, करोड़ों की तादाद में एलईडी बल्ब घरों में पहुंचाए हैं। और इन प्रयासों के परिणाम आज हमारे सामने हैं। अकेले सोलर एनर्जी से ही भारत में करीब, ये आंकड़ा भी वकीलों के लिए है, भारत में करीब 20 करोड़ टन कार्बन एमिशन रोकने में सफलता मिली है। साथियों, सोलर एनर्जी के साथ साथ क्लीन एनर्जी के दूसरे सेक्टर में भी भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। बीते 12 साल में देश की विंड एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है। हाइड्रो एनर्जी कैपेसिटी में काफी बढ़ोतरी हुई है। और अब देश न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन पर तेजी से काम कर रहा है। और जो लोग एनवायरनमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए। इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है। इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है। भारत कोयले के और अधिक स्वच्छ उपयोग के लिए कोल गैसिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहा है। साथियों, भारत आज क्लीन मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है और ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। ये क्लीन मोबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, 12 वर्षों में हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या में करीब 950 गुना का इजाफा हुआ है। 950 गुना। 2014 से पहले के साल में भारत में 3,000 से भी कम ईवी की बिक्री थी। 3,000। वही पिछले साल करीब 25 लाख ईवी भारत में बिकी हैं, यानी ईवी रिवॉल्यूशन के इस अवसर को भारत पूरी ताकत से अपना रहा है और इससे पर्यावरण की भी मदद हो रही है। हमारे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर फास्ट टैग की आधुनिक व्यवस्था से भी टोल बूथ पर वेटिंग कम हुआ है। इससे टोल बूथ पर जो फ्यूल वेस्ट होता है वो बंद हुआ है। साथियों, 2014 तक हमारे देश के 5 शहर में करीब 250 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था, ये भी मेरे वकील मित्र याद रखे। 2014 के पहले सिर्फ 5 शहरों में 250 किलोमीटर से कम। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है और भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 1000 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो नेटवर्क है। साथियों, रेलवेज का लगभग 100% शत प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन होने से भी करोड़ों करोड़ लीटर डीजल जलने से बचा है, पर्यावरण की रक्षा हुई है। इसी महीने कुछ दिन पहले करीब 3000 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है। इस पर चलने वाली हर ट्रेन एक बार में सैकड़ों ट्रक्स का लोड लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन अपने आप में ऐतिहासिक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितने बड़े लेवल पर पर्यावरण की भी मदद होती है। साथियों, देश में आज करीब 5000 किलोमीटर लंबे वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन होने लगा है, जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी है। इन पर चलने वाला एक स्टैंडर्ड इनलैंड वेसल एक यात्रा में दर्जनों ट्रक्स के बराबर लोड ले जाता है। इससे भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ी सहायता मिल रही है। साथियों, अकेले मोबिलिटी सेक्टर में ये सारे बदलाव इस बात के गवाह हैं कि हमारा डेवलपमेंट स्पीडी भी है और सस्टेनेबल भी है। साथियों, आज करोड़ों लोगों की भागीदारी से भारत में जल संरक्षण पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। मुझे खुशी है कि देश में 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। कैच द रेन अभियान के तहत देश में करीब 1.5 करोड़ वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं जिसमें बारिश का पानी संरक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए आज 2 करोड़ से ज्यादा किसान सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं से जुड़े हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे इनिशिएटिव से भी पानी की बचत हो रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स, ये भी एक बहुत बड़ा सफल उदाहरण है। भारत मिलेट श्री अन्न की पैदावार को बढ़ावा दे रहा है, जो पानी की खपत कम करते हैं। बीते वर्षों में देश में मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा है और निर्यात भी बढ़कर करीब 1.5 लाख टन हो गया है। इससे किसानों के लिए नए मौके तो बन ही रहे हैं, पानी की भी बचत हो रही है और इसी मॉडल के कारण दुनिया भी हमारे साथ जुड़ रही है। भारत के प्रयासों के कारण 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। साथियों, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत आज देश में करीब 12.5 लाख हेक्टर में नेचुरल फार्मिंग के 24,000 क्लस्टर्स बन चुके हैं। यही नहीं, देश में क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की भी करीब 3,000 वैरायटीज विकसित हो चुकी हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देकर भी हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर रहे हैं। साथियों, हमारे ये प्रयास कितने व्यापक है इसका एक उदाहरण भारत का फॉरेस्ट कवरेज भी है। ये भी मैं वकील मित्रों के लिए बताता हूं, बीते 12 वर्षों में हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर 22% से ज्यादा बढ़ा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत भी देश में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं और यह अभियान निरंतर जारी है। साथियों, पर्यावरण के सामने एक बड़ी चुनौती प्लास्टिक वेस्ट की भी रही है और इसलिए भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है। हमने रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल के मंत्र के साथ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। आज भारत में हर रोज हजारों टन वेस्ट को रिसाइकल किया जा रहा है। गोवर्धन योजना के माध्यम से गांवों में गोबर और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट को भी उपयोगी संसाधन में बदला जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि वेस्ट को समस्या न मानकर उसे वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर एक रिसोर्स में बदला गया है। साथियों, ये सारे के सारे आंकड़े केवल भारत के विकास के आंकड़े नहीं है, ये मानवता के भविष्य के लिए भारत के योगदान के आंकड़े हैं। साथियों, हमारा सांस्कृतिक विचार है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीव्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है और हम इसकी संतान है। इसी सोच के साथ भारत भी एक रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले डिस्कशंस उससे जो नए विचार, नए समाधान सामने आएंगे, वो हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संबल बनकर के निकलेंगे। एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
5: That, ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister delivered the inaugural address at the Future of Environment and Climate Dynamics Conference organized by the National Green Tribunal here at the plenary session of Vigyan Bhavan. And now the Honorable Prime Minister is departing from the plenary hall. He's shaking hands with the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupendra Yadav, and the chairperson of the NGT, Justice Prakash Srivastava, and the Chief Justice of India,
1: Justice Sri Suryakant and the Attorney General for India, Sri R. Venkatramani. And the dignitaries have now departed from the plenary hall of Vigyan Bhavan. And Kamal, the Prime Minister, in very unequivocal terms, mentioned about India's commitment, deep commitment to nature and environment since the dawn of civilization. The Prime Minister complimented the NTG for organizing this timely conference, and he said that carbon emission is wrongly blamed on developed countries, especially of the global south. The historical truth is that the Honorable Prime Minister mentioned that per person emission in India is below 50% of the global average. The developed countries have a per person emission that is more than six times that of India. The Prime Minister mentioned that our traditions and strengths are being shared with the world today. At the Conference of Parties 21 in Paris, the Prime Minister mentioned that India mentioned about convenient action and conformity for change. The Prime Minister mentioned the initiatives of India, such as the One Sun, One World, One Grid, the International Solar Alliance, the CDRI, the Global Biofuel Alliance, the Big Cat Alliance, and Mission Lifestyle for Environment. India's ancient knowledge and its deep commitment to environment is well known. Today, India is a key player in the world of renewable energy. In the last 12 years, solar energy increased from just 2 gigawatts to more than 160 gigawatts now. Through the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, more than 50 lakh houses have solar rooftop panels now, and 80,000 rupees per house has been given as financial help. Through the Kusum Yojana, 30 lakh solar pumps are now functional. The One Nation

0: are now open to private players. Non-fossil fuel capacity has increased by 4 times. India is now committed to coal gasification. India is committed to the welfare of mankind and will be a responsible and sustainable nation, ensuring the future of our civilization, said the Honorable Prime Minister of India.
1: कौशिक, वैसे जलवायु परिवर्तन की चुनौती तो बड़ी ज़रूर है, लेकिन वैज्ञानिक सोच, जिम्मेदार नीतियों, तकनीकी नवाचार और जन भागीदारी के माध्यम से हम इसके प्रभाव को कम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और भारत ने इस दिशा में काफ़ी आगे कदम बढ़ा भी दिए हैं। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करना ही सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य की सबसे बड़ी मजबूत नींव है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन के सत्र का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे। चलते चलते हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल 20 सितंबर 2026 को समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित होगा। और अब अपने तकनीकी सहयोगों कमल सिंह, सुमित कटियार, ओब इंचार्ज विवेक तोमर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार के साथ मैं यानी कि कमल किशोर बड़ाइक और अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ अन्य कार्यक्रमों के लिए वापस आपको आकाशवाणी के दिल्ली के स्टूडियो लिए चलते हैं। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।

0: अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज कोई भी बात बहुत जल्द वायरल हो जाती है। कोई गाना हो, किसी की भावना हो या फिर कोई जानकारी हो, हम बड़ी जल्दी खुद भी अपना लेते हैं और दूसरों तक भी पहुंचा देते हैं, और इसका सशक्त माध्यम है सोशल मीडिया। अपना काम हो, मन की बात हो, रुचि से संबंधित जानकारी लेना हो या अतिरिक्त समय गुजारना हो, हर बात के लिए सोशल मीडिया से हम जुड़ चुके हैं। और इसके साथ साथ हर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के माध्यम से हम जाने अनजाने लोगों से जुड़ रहे हैं और स्टेटस के जरिए उन तक पहुंच रहे हैं। इसी विषय पर जानेंगे आपके विचार कि सोशल मीडिया स्टेटस आपकी भावना, व्यक्तित्व या जानकारी, इसका क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। आप बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना नाम भी बताइए परिचय के रूप में।
1: जी, मैं आपका नई में सोता।
0: हाँ जी,
1: जो FM रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार बात कर रहा हूँ जी।
0: जी कमलेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, और आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
1: जी,
0: मैम जी, हम आज बात करेंगे सोशल मीडिया स्टेटस आपकी भावना, व्यक्तित्व या जानकारी। अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर हम कोई ना कोई पोस्ट डालते रहते हैं, तो वो आप किस इरादे से डालते हैं?
1: आपने बोला सोशल मीडिया, मतलब
0: सोशल मीडिया यानी? हाँ जी, व्हाट्सएप वगैरह पे जब हम स्टेटस डालते हैं तो वो किस इरादे से डालते हैं?
1: स्टेटस डालते हैं जो किस उद्देश्य को?
0: जी बिल्कुल, बताइए।
1: ये बोला आपने।
0: हाँ जी हाँ,
1: देखिए आपने वैसा बता दिया, आप मैं तो बोल सकता हूँ इस विषय पर।
0: जी बताइए।
1: देखिए मैम जी, सोशल मीडिया पर स्टेटस डाले जाते हैं, मेरे ख्याल से मैंने कभी लिखा था स्टेटस का मतलब होता है कि अस्तित्व, अपना का मतलब जो होता है ना, पौधा, पद, प्रतिष्ठा, इस उद्देश्य को लेकर शायद लोग डालते हैं स्टेटस। कह सकते हैं अपनी जो स्थिति होती है उसको लेकर डालते हैं अधिकतर लोग। तो मैं तो यही कहूंगा कि शायद सभी लोग ऐसे होंगे जिस प्रकार से उनके स्टेटस लगते हैं उसमें, व्हाट्सएप पर या अन्य स्थितियों में।
0: जी,
1: शायद उस प्रकार के लोग होते होंगे, उस प्रकार की सोच लोगों की चलती होगी।
0: आपकी
1: मेरा मानना यह है
0: जी, आपकी क्या सोच रहती है ये बताइए।
1: देखिए मेरी सोच तो यही चलती है कि मैं सुविचार ज्यादा कर लिखता हूँ और जो घटनाएं घटित होती है उस पर लिखता हूँ, उसको लेकर के, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धंधे पानी की हो। मैं भी चाय पान नाश्ते की दुकान करता हूँ मैम जी, कभी कभी मैं जलेबिया की फोटो डाल देता हूँ, कभी कभी समोसे की डाल देता हूँ।
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: ये पद और औहदा या प्रतिष्ठा को लेकर के बात हो रही है।
0: जी जी जी,
1: इस प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हैं कुछ लोग, इस प्रकार की स्थिति को दर्शा देते हैं स्टेटस के माध्यम से, मेरा ऐसा मानना है।
0: जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आपने अपनी विचार बड़ी अच्छी तरह से और बहुत स्पष्ट शब्दों में और स्पष्ट रूप से हमें और हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए।
1: धन्यवाद आपको और आपकी टीम को जी।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार मैम।
1: आज बात आपकी गीत हमारे में हमारे विषय है सोशल मीडिया पर आपका स्टेटस, किस उद्देश्य से आपका स्टेटस सोशल मीडिया पर आप अपलोड करते हैं। पहले अपना नाम और जगह का नाम बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं।
0: मैम मैं बोल रहा हूँ जितेंद्र झा चंदेरी अशोक नगर से बात कर रहा हूँ
1: जी।
0: से सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाते हैं।
1: हाँ जी।
0: तो वो अपनी दिल की बात के लिए महसूस कराने के लिए स्टेटस लगाते हैं। हाँ जैसे वैसे कोई किसी को नहीं बोल पाते हैं तो
1: यानी
0: अपनी मन की भावना को दर्शाते हैं लोगों
1: जी,
0: को।
1: आपका कहने से अर्थ है कि आप अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए स्टेटस आप लगाते हैं।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते
1: नमस्ते
0: जी, बताइए अपना नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैं खापरखेड़ा जिला रायसेन से तुलसीराम साहब।
0: जी तुलसीराम जी, स्वागत है और आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे। हमारा विषय है सोशल मीडिया, आपकी भावना, व्यक्तित्व या जानकारी।
1: जी
0: तो वो किस इरादे से डालते हैं?
1: अच्छे के लिए डालते हैं, कुछ उसमें गलत इरादा नहीं रहता, अच्छी बातें ले जाना।
0: अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाना आपका उद्देश्य है।
1: हाँ जी बिल्कुल, जो अपन अच्छी बात लोगों तक पहुंचाते और सुनने वाले भी उस बात को प्रशंसा करते और उसको समझते हैं हमको सृष्टि में मतलब कैसा करना चाहिए,

0: घर गृहस्थी में मतलब कौन सा परिवर्तन लाना चाहिए, तो सब अच्छा ही के लिए अपन सोशल मीडिया बातचीत भेजते हैं।
1: और जो स्टेटस में हम बात कर रहे हैं, स्टेटस पे जब लगाई जाती है कोई बात, तो वो किस उद्देश्य से होती है आपकी?
0: तो स्टेटस पे अच्छी अच्छी जानकारी अच्छी बात लगाना चाहिए ताकि सामने वालों को अच्छी लगे।
1: अच्छा,
0: जब गलत बात उसमें लिखकर भेजती तो गलत दिखाती,
1: गलत संदेश पहुंचाती है।
0: जी
1: जी जी, शुक्रिया।
0: अच्छी बात अच्छी होती है ताकि सामने वालों को गलत न लगे, न स्टेटस गलत डाला कैसा डाला, मतलब संवैधानिक बातें ज्यादा डालनी चाहिए।
1: संवैधानिक, जी जी जी जी
0: जी,
1: सुविचार तरह की और इस तरह से ना।
0: हाँ जी, विचार अच्छे अच्छे प्रकार के होना चाहिए, चाहे मेरे हो या आपको किसी हमारे मित्र को अच्छी बात डालूं अच्छा लगता।
1: जी जी, तो धन्यवाद तुलसीराम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
1: जी नमस्ते
0: जी, बताइए अपना नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम मछूरा तहसील नाका जिला उज्जैन से।
0: उज्जैन से सिसोदिया जी, अपना नाम एक बार फिर से बताइए। सिसोदिया सरनेम तो हम सुन चुके हैं, नाम नहीं आप तक हम तक पहुंचा।
1: हम बछौड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: जी प्रेम सिंह जी, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं और हमारे श्रोताओं से बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है, और जब विशेषकर बात आपकी गीत हमारे होता है तो हमें खास उत्सुकता रहती है हमारे श्रोताओं से बात करने की।
1: जी
0: जी, आज हमने विषय रखा है सोशल मीडिया स्टेटस, आपकी भावना, व्यक्तित्व या जानकारी, किस उद्देश्य से आप सोशल मीडिया पर अपने स्टेटस अपलोड करते हैं।
1: सोशल मीडिया पर जो आप लगाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये होता है कि एक दूसरे को जानकारी मिलती रहे। उसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि रोजाना स्टेटस लगाते हैं या फिर ऐसे जो घर से त्योहार जो आते हैं ना, उनके लिए स्पेशल स्टिकर बना के भी लगाते हैं। तो इससे मतलब काफी मतलब लोगों को जागरूकता मिल रही है और एक दूसरे से जुड़ाव भी हो रहा है।
0: प्रेम सिंह जी, आपका नेटवर्क कहीं थोड़ा कम हो गया है, आपकी आवाज बहुत कम आज आ रही है हम तक। ठीक है, लेकिन नेटवर्क थोड़ा कट के आ रहा है। बहरहाल हमने आपके विचार जान लिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारी या आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पावन पर्व राधाष्टमी की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रेम भक्ति त्याग और तप की वंदनीय देवी मां राधा की कृपा सभी पर सदैव बनी रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत आज प्रदेश के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7,400 से अधिक पात्र विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण किया। मोटराइज स्कूटी के लिए अधिकतम 90,000 रुपये और ई स्कूटी के लिए अधिकतम 1.20 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। योजना में अब तक प्रदेश के 23,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 शावकों के जन्म के साथ देश में चीतों की संख्या बढ़कर कुल 56 हो गई है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 53 चीते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल दिल्ली में आयोजित फेमिकॉन इंडिया 2026 में जापान, कोरिया, अमेरिका, स्वीडन की सेमी कंडक्टर कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। डॉ. यादव ने कहा कि सेमी कंडक्टर सेक्टर में निवेश के लिए मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। और 20वें एशियाई खेल आज से जापान में शुरू हो रहे हैं। 4 अक्टूबर तक चलने वाले खेलों में भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेलों में हिस्सा लेंगे। भारतीय दल में 5 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता शामिल हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है सोनू निगम के गाए इस गीत की। फिल्म का नाम है दिल तो बच्चा है जी। इस गीत को सुनना चाहा है कालका से शुभचंद्र बजाज, महेश बजाज, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, गोपाल नगर बुरहानपुर मध्य प्रदेश से संजय सोनबड़े, किशोर सोनबड़े, यमुना सोनबड़े, नथू सोनबड़े, नंदिनी और पूरा परिवार, धामड़ी मालोरा से तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे और किरण डेरे, आप सबकी साथी अनुत्त डेरे, आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

और अगली फरमाइश है सर फिल्म के इस गीत की आवाजें कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक की। इस गीत को पसंद किया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विदक, जितेंद्र विदक, मीका विदक, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने।

अगले गीत सपने साजन के फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें। इस गीत की फरमाइश भेजी है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शुएब खान, सायमा खान और मुस्तफ़ा खान, आफिया खान, राव भाई और शहीद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष, पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफी मंसूरी। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये नगमा।

अगली फरमाइश साजन फिल्म के इस गीत की, जिसे आवाज दी है अलका याग्निक ने। गीत के बोल समीर की और धुन नदीम श्रवण की। इस गीत की फरमाइश भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी साहू, श्रीमती मायावती साहू, शालूनगर याहूनगर यवतमाल से राहुल नगर, राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी, सिंगापुर बड़ा से, सिंगापुर बड़ा से रामेश राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, साथी कान्हाजी आर्य, इन सबकी पसंद पर सुनिए ये गीत।

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:25 हुए हैं, वक्त है अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: Cinema.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति के क्रम में पहला भाग आत्मसमर्पण।

0: बुढ़ापे में मंसूबों पर मंसूबे आने पर भी जिस तरह उन्हें जीवन पर उतारने की इच्छा नहीं होती, जवानी में उसी तरह पहला मंसूबा आया कि जीवन में उतारने के उतावलेपन में दूसरे इरादों के आने तक ठहरने की इच्छा नहीं होती।
1: बुढ़ापा शास्त्र और रूढ़ी के प्रति सजग भले रहे, वो अस्तित्व के प्रति नास्तिक होता जाता है। जवानी इसी नास्तिकता का विद्रोह बनकर आती है। वो अस्तित्व के उपयोग के प्रति इतनी आस्तिक कि उपयोग और अस्तित्व में वो दूसरे को पहले की बाजी पर चढ़ा दे।
0: इसे बूढ़े पागलपन कहते हैं, किंतु हर बूढ़ा अपनी उम्र के इस पागलपन को अपने सुनहरे इतिहास की तरह गर्व से दोहराता है। किंतु नया इरादा आया कि ना तो बूढ़ी सांस की मिजराब में वो मरोड़ रह जाती है और ना ही उतरते तारों की हड्डियों की वीणा में वो झंकार ही निकलती है। तरुण जिंदगी की वीणा तो बिना इच्छा की अंगुली से हुए सांसों की खूंटी पर, उमंग की हवा के झोंकों पर अपने आप ही बज उठती है।
1: तारीख 11 दिसंबर सन 1907 को

0: ए तांगे वाले भैया, कमल बाबू के घर चलना है।
1: काफी बदल गया है अन्नापुर, सब कुछ नया नया बदला हुआ।
0: अरे रोको भाई रोको, यही है कमल बाबू का घर।
2: ये कौन है? कहीं पुलिस का कोई सिपाही तो नहीं है? सर पर देखो कैसे पंजाबी दुपट्टा बांधे हुए है। मुझे तो डर लग रहा है, घर में छुपकर दरवाजा बंद कर लेती हूँ।
0: कमल बाबू, ओ कमल बाबू, अरे कमल बाबू हैं क्या घर पर?
2: कौन है?
0: हम हैं बब्बू भैया, कमल के दोस्त हैं। कहाँ हैं कमल बाबू?
2: ठहरो, हम भौजी से पूछ कर आते हैं।
0: अरे दरवाजा तो खोल। तू कमल की बहन है?
2: जी, हमारा नाम रम्मू है, हम अभी भौजी से पूछ कर आते हैं।
0: ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ।
2: भौजी, भैया के दोस्त आए हैं, भैया के बारे में पूछ रहे हैं।
3: जा कह दे, अभी कचहरी से नहीं आए हैं।
2: भौजी कह रही हैं, भैया अभी कचहरी से नहीं आए हैं, रोज ही देर से आते हैं, आप अंदर आ जाइए।
0: ठीक है रमो, मैं प्रतीक्षा करता हूँ।
2: लाइए ये पेटी मुझे दे दीजिए।
0: लो।
2: ये बैठक खाना है, आप आराम से बैठिए।
0: अच्छा।
2: मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।
0: नहीं, मुझे जब जरूरत होगी तो मांग लूंगा।
2: जी।
4: बब्बू ने अपनी जेब से एक टिबिया निकाली।
2: ये क्या है भैया?
0: ये पेपरमेंट है।
2: ये क्या होता है?
0: पेपरमेंट क्या होता है, ये शब्दों में बयान करना मुश्किल है। खा कर पता चलता है कि पेपरमेंट क्या होता है। ले तू खा।
2: हाँ। अरे इससे तो मुंह ठंडा हो गया।
0: तू क्या पढ़ती है रम्मू?
2: सभी विषय पढ़ती हूँ, साथ में इंग्लिश भी पढ़ती हूँ।
0: इंग्लिश पढ़ती है?
2: हाँ।
0: अंग्रेजों की भाषा? तू क्या पुरखों को नरक में ले जाएगी? मत पढ़ा कर ये फिरंगियों की भाषा।
5: रम्मू, दरवाजा खोल।
2: लगता है भैया आ गए। दरवाजा खुला हुआ है भैया, और बब्बू भैया भी आए हुए हैं।
5: कौन आया है?
6: बब्बू?
5: अरे बब्बू! अरे वाह बब्बू!
0: कमल!
5: अरे मित्र क्या हाल है?
0: ठीक है मित्र।
5: है? अरे आने से पहले कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं डाली तुमने?
0: आओ
5: करे तो मिलो। और हाँ इनसे मिलो, ये हैं रामाधार मिश्र, सदर थाने में कांस्टेबल हैं।
0: नमस्कार।
7: नमस्कार जी।
0: एकदम ही कार्यक्रम बना, खबर ही नहीं कर सका। पुलिस से दोस्ती रखते हो?
5: अरे कोर्ट कचहरी में हूँ, इसलिए पुलिस से दोस्ती रखनी पड़ती है।
7: बब्बू भैया आजकल हालात खराब हैं, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के मतवाले अंग्रेजों को चुन चुन कर मार रहे हैं, पूरी अंग्रेजी हुकूमत आंदोलनकारियों के विरुद्ध है।
0: रामाधार जी, अंग्रेज क्यों नहीं हमारा देश छोड़कर चले जाते? अरे वो भी सुखी रहेंगे और हम भी।
7: कहीं आप भी तो आजादी के मतवाले नहीं हैं?
0: यदि हूं
7: तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा।
5: अरे रामाधार जी ये और क्रांतिकारी। अरे रामाधार जी ये बब्बू भैया हैं, एमए पास हैं, और कामता प्रसाद जी इंजीनियर जैसे बड़े साहब के साहबजादे हैं।
7: अच्छा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था।
0: आप अंग्रेजी सरकार के मुलाजिम हैं, आप गंभीर बात में भी मजाक ढूंढ ही लेते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम आजादी के लिए शहीद भी हो सकते हैं।
7: देखो बब्बू साहब, मुट्ठी भर क्रांतिकारी बर्तानिया हुकूमत से टकरा नहीं सकते।
0: दिलों में जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, चींटी पहाड़ पर चढ़ सकती है, चूहा ऊंची इमारत को भी खोखला कर सकता है।
7: अरे गोली के आगे अच्छे अच्छे भाग जाते हैं।
0: रामाधार जी जो भाग जाते हैं वो बुजदिल होते हैं, उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में कूदना ही नहीं चाहिए। जिनके दिलों में भारत को आजाद रखने का जज्बा है वो बंदूक तो क्या तोप से भी नहीं डरते।
7: बब्बू साहब आपकी बातें बता रही हैं कि आप क्रांतिकारी हैं।
0: रामाधार जी, देश का हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा देश को आजाद देखना चाहता है, क्या ये जज्बा देशद्रोह है? नहीं रामाधार जी, आप भी देखेंगे एक दिन

0: आजाद भूमि पर तिरंगे को लहराता हुआ।
1: बब्बू जी, आप कब तक यहाँ ठहरे हैं?
2: रामाधार जी, इसके दोस्त का घर है, जब तक चाहे रह सकता है।
1: देखिए, मुझे थानेदार साहब को आपके बारे में सूचना देनी होगी।
0: आप अपना फर्ज निभाएं। अच्छा, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अच्छा रामाधार जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
3: रामाधार के जाते ही बब्बू ने भैया से फिर बातें करना प्रारंभ किया। दोनों खूब गले मिलते, दोनों आंखों में आंसू भर लाते। कमल नारायण यहाँ की तहसील कचहरी में मुहर्रिर थे और बब्बू उनके पुराने साथियों में थे।
2: अरे मित्र, क्या हाल है?
0: ठीक है मित्र।
2: है? अरे आने से पहले कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं डाली तुमने? आओ गले तो मिलो। क्यों अंग्रेजी पढ़कर एमए पास होकर भी मुझे ना भूला? ढूंढता हुआ मेरे पास आ ही गया तू।
4: आप बड़े वो हैं भैया, मुझसे कहते हैं अंग्रेजी क्यों पढ़ती है और खुद अंग्रेजी में एमए हैं।
0: रमो, मैंने अंग्रेजी इसलिए पढ़ी कि अंग्रेज क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं वो जान सकूं और अपने सिर में उनकी बातें भर सकूं।
2: बड़ा सिर वाला आया है।
0: सिर वालों की बातें तू बेसिर पैर का क्या समझे? तू तो कचहरी में बिका हुआ है, तू ना सिर उठाना जाने ना सिर चढ़ाना, समझे? तब सिर चढ़ा देने की कहानी तो दूर ही है।
3: इस कविता को कमल नारायण नहीं समझे, उन्होंने बात बदल कर कहा,
2: अच्छा बता किस काम से आया है और छोड़ अपनी अंग्रेजी इरादों का अनुवाद करके बोली हुई हिंदी।
5: बब्बू ने अपने बाईं ओर की दीवार पर लगे हुए दर्पण में अपने आप को जरा झांक कर देखा, मानो वो अपने चेहरे की पैमाइश कर रहा था कि ऐसे मनोभाव उसके मुंह पर हैं कि नहीं जिनका असर कमल पर पड़ा है। और कमल बिना घबराए उसके बाने उसके साथ सामान के साथ आने के खतरनाक संगीत को बर्दाश्त कर जाए।
3: जब बब्बू को संदेह हुआ तो उसने कहानी सी गढ़ी, बोला,
6: कमल।
5: हाँ बब्बू, बोल।
6: तेरे पास एक खजाना है, बहुत अटूट है वो, तेरे दिल का।
5: हाँ?
6: करीबी और किताबों के दिमागी पोस्ट से रहकर भी तू कितना दिल का धनी और कितना ऊंचा है। किंतु ये प्रश्न है, किस ऊंचाई को बांटने का साहस भी तुझ में है?
5: हा?
6: मेरे पिता राय बहादुर जुगल किशोर ने एक बार चंद्रग्रहण पर शर्माते शर्माते नर्मदा स्नान की यात्रा की। मोटर ही में वे बैतूल से होशंगाबाद आए। चुपचाप हम लोगों को लेकर नर्मदा घाट गए। पेशी कुल के पास एकांत में मौलशी के झाड़ के पास बैठे और चुपचाप स्नान किया। चुपचाप ही हम लोग मोटर में बैठकर रवाना हो गए। मेरे पिता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और साहब कहलाते थे, वे नहीं चाहते थे कि हम इस तरह खुले में नर्मदा नहाएं और उनके अफसर साथी उन्हें 16वीं सदी का गंवार कहें। खैर, तो पिताजी नहा कर लौटे तो दूसरे दिन ब्राह्मण भोज हुआ। केवल 11 ब्राह्मणों को नोता गया या उन्हें नियोतने की सजा दी गई। बाकायदा बजट बना, हलवाई के यहाँ से नाप तुलकर मिठाई आई और हमारे मोटर गैरेज के पास वाला कमरा जिसमें पहले घोड़े की टूटी हुई जीन, मोटर के फटे टूटे टायर आदि, नौकर चाकरों के कपड़े, फिनाइल के टीन, फर्राशों और सफाई वालों को दी जाने वाली नई झाड़ूएँ, कुदाली, गेती, फावड़े और सड़क पीट रखे हुए थे। उन्हें एक कोने से हटाकर एक कोना 11 ब्राह्मणों के बैठने के लिए साफ कर दिया गया।
3: बब्बू भैया बता रहे थे ये चेतावनी

0: थी कि मिठाई कोई ना खाए, क्योंकि उन दिनों जोर का हैजा फैला था। अतः चंद्र ग्रहण के शुभ पुण्य पर ब्राह्मणों के सिवा बाजार की मिठाई का प्रदान सबके लिए वर्ज्य था। आखिर समय आया और ब्राह्मण देवता घर पधारे। एक पंडित जी थे जो पुरोहिती भी करते थे और रुपयों का लेन देन भी। उनके बारे में शहर में अफवाह थी कि वे गुस्से में अपने पास के आदमी को काट खाते हैं। उनकी बीवी और उनके छोटे छोटे बच्चे उनसे परेशान थे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वे जिस घोड़ी पर खर्जी और लोटा, पानदान, धोती, रामनामी दुपट्टा, श्रीमद् भागवत से लगाकर नीचे ऊपर की पोथियों और दूसरी ओर दान में या ब्याज में मिले हुए रुपए, अठन्नियाँ, पैसे, उड़द, अधेले, पाइयाँ और गेहूं, चावल, दाल, उर्द आदि पंचमेल चीजें रख कर और ऊपर से खुद बैठकर आते थे।
1: सो ऐसे पंडित भूधर शास्त्री भी बब्बू भैया के घर भोजन को आए।
2: बब्बू भैया यानी इसका अर्थ ये है कि भोजन के लिए पंडित गण श्रृंगार में आए थे।
3: हाँ,
2: फिर
3: इतने में पंडितों के खाते खाते बीच में हमारे यहां मिठाई चुक गई।
2: हाँ, फिर
3: अब तो 11 आदमियों के लिए फी आदमी 3 पाव के हिसाब से 8.25 सिर और कमी बेशी के लिए आई थी। अचार दही का बोझ होता नहीं और नमकीन कम भक्त तो पेट में मीठा भावे लोन पे, जो मीठे पे लोन की तरह स्वाद बढ़ाता। और कमल भैया, इतने में ही हमारे रसोइये द्वारा संभल संभल कर एक एक पीड़ा परोसे जाने पर पंडित वैशाख शर्मा बीच में ही तुनक कर बोल उठे, अरे एक एक परोस कर क्यों खराब करते हो भैया, घर में जाकर खिचड़ी तो खाना ही है।
0: कमल इस समय भूल गया था कि बात कहां से चली थी, वो कहानी में मशगूल था। किंतु जिस तरह मिष्ठान भोजन करते हुए दुखते कान में ठनक पैदा हो पड़ने पर आदमी कराह उठता है, उसी तरह बब्बू ने कमल नारायण से कहा,
3: तू भी आज प्रेम की वर्षा करते समय मेरे पिताजी जैसा ब्राह्मण भोज ना कराने लगना, ऐसा ना हो तेरी दया बीच में ही चुक जाए।
1: मानव अपनी जरूरतों, मनोभावनाओं और परिस्थितियों ही से क्या प्रसंगों के अर्थ लगाया करता है?
2: शायद पप्पू ये समझता है, आज तो मैं इतना प्रेम प्रदर्शन कर रहा हूं, कुछ परसों बाद आंखें न बदल लूं। बब्बू देख भाई, मैं हूं मुहर्रर और तू है एमए। भूलने का डर तो तेरा है भैया, मेरा नहीं। मैं तुझे कैसे भूलूंगा भैया।
3: किंतु आज
2: आज कैसे,
3: आज जो मैं कहूंगा सो
2: क्या कहेगा, कहे ना। अरे मेरे साथ संकोच कैसा।
0: इतना कहकर कमल ने बब्बू के गाल पर एक मीठी सी चपत मार दी। बब्बू मजा हुआ खिलाड़ी था, वो भावुकता को बारूद की तरह जरूरत पर ही और पूर्ण संयम के साथ उपयोग करने का आदि था।
3: चपत मारने की कीमत चुकानी होती है, समझे?
2: महंगी पड़े या सस्ती, ये तो तू जानता ही है कि 40 रुपए मासिक वाला मुहर्रर हूं। और फिर मेरे घर में माँ है, बीवी है, बहन है, छोटा भाई है, मैं तो हूं ही। तो भी जो कुछ है हमारे यहां, चल भोजन करते हैं।
1: थालियां परसी गईं और बाहरी के फर्श पर बैठे बैठे दोनों स्कूली साथी खाना खाने बैठे। बब्बू अपने तीर को साधे हुए था।
0: इतने ही में बब्बू ने पूरी के एक कौर से भिंडी की तरकारी समेट कर कौर कमल की ओर बढ़ाया और कमल ने इस स्नेह से मुंह खोल दिया मानो चिड़िया का बच्चा चुग्गा ले रहा हो।
4: ले कमल।
2: ला। अरे तू भी ले ना। ये पप्पू यदि मुझसे 100 रुपया मांग बैठा तो कहां से दूंगा इतना रुपया।
3: ये भिंडी की भाजी मुझे नहीं भाती, किंतु आज न जाने क्यों।
0: कमल का मुंह खाने के लिए खुलकर बंद हो गया और आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। बब्बू अपने चौकन्नेपन के हाजिरी रजिस्टर में कमल के भावों का हर परिवर्तन दर्ज करता चला आ रहा था। अब बब्बू को कमल ने हलवे का कौर उठा कर दिया।
2: बब्बू क्या कर रहा है तू? तू क्या ऐसे बावला रहेगा क्या?
1: बब्बू और कमल दोनों एक दूसरे को भाव विभोर देख रहे थे।
0: रम्मो बेचारी पूरियां लिए खड़ी रही, दोनों खाना भूल गए।
4: भैया लो ना पूरी।
5: नहीं बस।
2: अरे ले दे दे रम्मो डाल पूरी।
4: हाँ लीजिए।
0: रम्मो पूरी डालकर चली गई। हांसू दोनों की आंखों में थे।
2: बब्बू आज आज तेरी आंखें बहुत मीठी हैं। तेरा ये उन्माद मेरे बचपन को लौटा लाया है। अच्छा तू जहां से आया है वहां वापस चला जाएगा? क्या करता है बब्बू, मुझे छोड़ के चला जाएगा?
3: कमल यही तीन सवाल हैं जिसका उत्तर छुपाए रखना मेरे जीवन का चिरपख्तर है।
2: क्या मुझसे भी?
3: हाँ तुमसे भी।
2: हैं?
3: हाँ।
2: सो कैसे?
3: इसलिए कि क्या तुम्हारे आंसुओं से ही जान लूं कि तुम मेरे हो?
2: बब्बू मित्र मैं इसे मुंह से कहता शर्माता था, लो अब कहता हूं कि मैं।
0: इतने में ही बब्बू ने थाली धीरे से अलग सरका दी और कमल बब्बू की गोद में सिसक सिसक कर एक हाथ बब्बू की कमर के आसपास बंधन की तरह डालकर दूसरे हाथ से आंसू पोंछने लगा। बब्बू चौकन्ना था किंतु आदर्श चौकन्ना होना ही उसका व्रत था। उसने दोनों हाथों से कमल का सिर अपनी गोद में संभाल कर रख दिया और अपने बेकाबू आंसू कमल के गालों पर टपकाते हुए कहा,
3: यार
2: हाँ बब्बू
3: तुम रहे मुहर्रे रही।
1: जब भी करुणा से निर्बल झांक उठता है सौ गुना बलशाली दीख पड़ता है।
2: बब्बू अपनी आंखें मैं पहुंचू और तुम्हारे आंसू लूं अपने गालों पर, ये दुगनी मजदूरी मुझसे ना होगी भैया।
3: क्यों?
0: कमल की मां सुखी थी कि कामता प्रसाद इंजीनियर जैसे बड़े आदमी का लड़का उसके बेटे को इतना प्रेम करता है। उस समय कमल नारायण ब्रह्मानंद से भी कदाचित अधिक मीठी प्रेम समाधि से बाहर कुछ नहीं सोच रहा था। जानने की इच्छा मानव की ऐसी कमजोरी है जिसे मानव से दूर करके उसे मानव नहीं रखा जा सकता। कमल का बब्बू की कमर से लिपटा हुआ हाथ बब्बू की कोट की जेब में कुछ टटोलने लगा। एक अंग्रेजी चुट्टे की शक्ल की चीज छूते हुए उसने पूछा,
2: बब्बू तेरी कोट की जेब में ये क्या है?
3: उत्तर देना मना जो है।
2: ये मनाई का हुक्म कब तक जारी रहेगा?
1: उत्तर के लिए ना ठहरते हुए दूसरी जेब में हाथ डालकर बब्बू का मनी बैग चट से निकाल लिया।
3: अरे अरे क्या कर रहे हो? ठीक है भाई।
2: हाँ ये क्या?
0: उस समय बटुए में 100-100 के दो, 10-10 के चार और 5 का एक नोट देखकर कमल की आंखों से जोर से आंसू उमड़ पड़े। वो उठकर बैठा और बोला,
2: बब्बू मुझे क्षमा करो।
3: अरे किस बात की क्षमा?
2: मुझे क्षमा करो।
3: अरे होश तो दोस्त है। अरे ये क्या कह रहा है?
2: बस कहा ना मुझे क्षमा करो, अपराधी हूँ मैं, अपराधी हूँ, क्षमा करो।
1: कमल थोड़ा पीछे हटकर किंतु आंखों में आंखें गड़ाकर और स्नेह से घुली और कोमल आंखों को आत्मवेदना से तीखी और पैनी करके बोला,
2: बब्बू।
3: हाँ कमल।
2: बब्बू तुम नहीं जानते मैं कितना नीच हूँ, कितना नीच हूँ मैं, तुम नहीं जानते।
3: नहीं और तुम हो भी नहीं सकते। तुम्हें इतना धीरज कहाँ जो तुम्हारे हृदय के सारे इरादे सारे सद्गुण तुम्हारे चेहरे पर दुकान लगा कर ना बैठ जाएं। नीच ऐसा नहीं हुआ करता, नीच तो वो होते हैं जिनके चेहरे पर दुर्गुणों की दुकानें लगी होती हैं।
2: मैं नीच हूँ बब्बू, मैं बहुत नीच हूँ।
3: नहीं
2: नीच तो
3: शांत हो जाओ दोस्त, शांत हो जाओ
2: बब्बू। तुम नहीं जानते मित्र, मैंने मैंने तुम्हें आवारा समझा मित्र, आवारा समझा।
3: ठीक तो समझा। मैं सचमुच आवारा हूँ।
2: नहीं नहीं,

0: आवारगी का वरदान।
1: ठहरो, नहीं, मेरे बीच में बोलकर मेरी भावना का स्वर भंग और मेरे आनंद की शांति भंग मत करो मित्र। हाँ, तो जब तुमने मुझसे कहा कि चपत मारने की कीमत चुकानी होती है, तब मैंने समझा मित्र कि तुम मुझसे रुपए मांगोगे और तुम्हारा मनी बैग मानो मेरी उस क्षुद्रता पर चपत मारने के लिए तुम्हारी जेब में रखा हुआ था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। मुझे क्षमा कर दो।
0: क्या खूब, मनी बैग की चपत तो तुमने अपने आप को मार ली। मैं ऐसा सौदा नहीं करूंगा, तुम्हारी चपत पर मेरी वसूली अभी उधार है।
2: कमल के पास अब इस स्नेह और अभिमान में डूबे हुए विनोद का जवाब देने को शब्द ना थे। उसने कहा,
1: मित्र उस चपत मारने के अपराध में अपना आत्मसमर्पण दंड स्वरूप हासिल करता हूं। मित्र
0: ना, क्या तुम ही सब कुछ देते चले जाओगे? लोगे कुछ नहीं? चपत तुमने दी, उसके बदले में मैं दूंगा और लोगे तुम।
1: क्या दोगे तुम? बोलो बोलो, क्या दोगे, क्या दोगे, बोलो।
0: जो मेरे मालिक की मर्जी होगी।
1: तुम्हारा मालिक कौन है? तुम्हारा मालिक, बोलो कौन है तुम्हारा मालिक?
0: फिर भूल गए? मेरे संप्रदाय में प्रश्नों का उत्तर देना मना जो है।
1: ओह बाबू कमल, मेरे अपराध के लिए तुम क्यों रोते हो मित्र? चुप हो जाओ बाबू, बाबू चुप हो जाओ मित्र।
2: इतना कहते हुए बब्बू की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसने कमल का बाया हाथ अपने दाहिने हाथ से अपनी ओर खींचकर कमल से पूछा,
0: कमल।
1: हाँ मित्र।
0: क्या तुम आगरा गए थे?
1: आगरा?
0: हाँ। क्यों?
1: क्यों? क्यों का कारण मत पूछो बब्बू, इसका जवाब मेरे पास नहीं है।
0: किंतु मेरे पास है।
1: क्या?
3: रात के 2 बज चुके थे। 2 युवक एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे को इस तरह देख रहे थे मानो उन्होंने इससे प्यारी चीज कभी ना देखी हो। घर में सन्नाटा था, माँ बीवी बहन सब सो चुके थे।
1: मैं आगरे गया था, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे पास है? क्या है बताओ, क्या है? बोलो बब्बू, बोलो क्या है?
2: बब्बू ने अंग्रेजी चुट्टे की शक्ल की वो चीज जिसे कमल ने उसके कोट में टटोला था निकालकर बता दी।
1: ये क्या, ये क्या बब्बू? पिस्तौल?
0: हाँ पिस्तौल।
1: बब्बू तुमने ये पिस्तौल मेरे सामने क्यों निकाली? दूर हटाओ ये पिस्तौल, दूर हटाओ पिस्तौल, दूर हटाओ मित्र।

0: दूसरे दिन दैनिक विश्वमित्र में छपा,
1: आज की ताजा खबर, एक षड्यंत्रकारी ने चांदा षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह कमल नारायण दुबे के घर में घुसकर 2 बजे रात उन्हें पिस्तौल से मार डाला। हत्यारे ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है।

संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति के क्रम में पहला भाग आत्मसमर्पण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पावन पर्व राधाष्टमी की प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रेम, भक्ति, त्याग एवं तप की वंदनीय देवी मां राधा की कृपा सभी पर सदैव बनी रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत आज प्रदेश के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7,400 से अधिक पात्र विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने छात्र छात्राओं से संवाद भी किया। योजना में अब तक प्रदेश के 23,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 शावकों के जन्म के साथ देश में चीतों की संख्या बढ़कर कुल 56 हो गई है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 53 चीते हैं, जबकि प्रदेश के गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में 3 चीते रखे गए हैं। गौरतलब है कि अब भारत में जन्मे चीतों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 में जापान, कोरिया, अमेरिका और स्वीडन की सेमीकंडक्टर कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। डॉक्टर यादव ने कहा कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश के लिए मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। और 20वें एशियाई खेल आज से जापान में शुरू हो रहे हैं। 4 अक्टूबर तक चलने वाले खेलों में भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेलों में हिस्सा लेंगे। भारतीय दल में 5 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता सम्मिलित हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

जहाँ प्रकृति का सम्मान होता है वहाँ स्वास्थ्य का विकास होता है। इसी सुंदर विचार के साथ आप सभी श्रोताओं को महिला सभा के इस विशेष कार्यक्रम में सादर नमस्कार और हार्दिक स्वागत। मैं हूँ कल्पना शुक्ला और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य, उनकी खुशहाली और स्वस्थ जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर। तो आइए प्रकृति और स्वास्थ्य के इस सुंदर संबंध को समझते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम महिला सभा की। बहनों, भारत को प्राचीन काल से ही ज्ञान और विज्ञान की भूमि माना जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत की अपनी समृद्ध परंपरा रही है। आयुर्वेद भारत की एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद शब्द आयु और वेद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जीवन का ज्ञान, और इसका उद्देश्य केवल बीमारी होने पर दवा लेने का नाम नहीं है, बल्कि स्वस्थ रहने और रोगों से बचाव करने की जीवन शैली के बारे में भी बताता है। हमारे पूर्वजों ने कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए केवल दवाइयां ही पर्याप्त नहीं है, हमारा खान पान कैसा हो, हमारी दिनचर्या, नींद, व्यायाम और हमारा मन, इन सभी बातों का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद में संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, योग और मानसिक शांति को महत्व दिया जाता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के ज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन ग्रंथों में स्वास्थ्य, रोग, औषधियों और उपचार से संबंधित अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। हमारी रसोई में भी आयुर्वेदिक परंपरा की झलक दिखाई देती है। हल्दी, अदरक, तुलसी, नीम, आंवला, जीरा और सौंफ जैसे अनेक प्राकृतिक पदार्थों का पारंपरिक रूप से उपयोग होता रहा है। बहनों, लेकिन प्राकृतिक चीज का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि वह हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित ही होगी। किसी भी औषधि या जड़ी बूटी का सेवन अपनी इच्छा से करने के बजाय उचित योग चिकित्सक की सलाह से करना चाहिए। बहनों, आयुर्वेद की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि यह हमें प्रकृति के करीब रहने की प्रेरणा देता है। आयुर्वेद एक सुंदर जीवन दृष्टि देता है। अपने शरीर को समझिए और प्रकृति का सम्मान कीजिए। बहनों, केवल शरीर का स्वस्थ होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हमारा मन तनावग्रस्त है तो व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस नहीं कर सकता। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति भी आवश्यक है। बहनों, स्वास्थ्य की सुरक्षा केवल बीमारी का इलाज करने से ही नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से भी हो सकती है। आयुर्वेद हमारी हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। यह हमारी संस्कृति विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो आइए आज से ही हम अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव लाने का प्रयास करें और समय समय पर भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, तनाव को कम करने का प्रयास करें और प्रकृति के करीब रहें। बहनों, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रकृति से जुड़िए, संतुलित जीवन अपनाइए और स्वस्थ रहिए। बहनों, जीवन स्वस्थ और संतुलित हो तो हर एक दिन खूबसूरत सफर बन जाता है। इसी सुंदर भाव को अपने शब्दों में पिरोता है एक सदाबहार गीत, जिंदगी एक सफर है सुहाना, जो फिल्म अंदाज से लिया गया है और जिसे किशोर कुमार ने गाया है।

0: अभी हमने सुना गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना, जो फिल्म अंदाज से लिया गया और किशोर कुमार द्वारा गाया गया।
1: तो बहनों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, जो एसोसिएट प्रोफेसर संहिता सिद्धांत शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में पदस्थ हैं। तो डॉक्टर विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: कल्पना जी नमस्कार, और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार।
1: विवेक जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहना चाहिए, आयुर्वेद क्या है?
2: आयुर्वेद भारत की एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसकी परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसमें चार प्रकार की आयु, सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु, एवं उसके लिए क्या पथ्य है, क्या पथ्य है और उसका मान कितना है, यह आयुर्वेद बोला गया है। इसमें शरीर, मन और जीवन शैली के बीच संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें उचित खान पान, नियमित दिनचर्या, योग, व्यायाम और प्राकृतिक उपचारों को महत्व दिया जाता है।
1: विवेक जी, जैसे कि आयुर्वेद की शुरुआत कब हुई?
2: इसकी परंपरा हजारों वर्षों पुरानी मानी जाती है और इसे भारत की प्राचीन चिकित्सा ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। यह अथर्ववेद का उपांग बताया गया है। समय के साथ आयुर्वेद के ज्ञान और उपचार पद्धतियों का विकास होता गया। आज भी आयुर्वेद भारत की पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और देश विदेश में लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना। यह केवल बीमारी होने के बाद उपचार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि रोगों से बचाव, संतुलित आहार, उचित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, योग।
1: लेकिन ये आयुर्वेद में किन चीजों का उपयोग किया जाता है?
2: जी, आयुर्वेद में विभिन्न औषधि पौधों, जड़ी बूटियों और प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही उचित आहार, दिनचर्या, योग और अन्य पारंपरिक उपचारों को भी महत्व दिया जाता है। उपचार व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर प्राकृतिक औषधि हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं हो सकती। हाँ। इसलिए किसी भी औषधि का सेवन योग चिकित्सक की सलाह से ही करना उचित रहता है।
1: सही बात है। अच्छा डॉक्टर विवेक जी, एक प्रश्न और महिलाओं से संबंधित पूछना चाहते हैं हम आपसे कि महिलाओं के लिए आयुर्वेद का क्या महत्व है?
2: जी, आयुर्वेद महिलाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ संतुलित आहार, उचित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। महिलाओं के जीवन में होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों के दौरान उचित देखभाल और चिकित्सीय सलाह महत्वपूर्ण होती है। इसलिए महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार योग चिकित्सक की सलाह लेकर ही आयुर्वेदिक उपचार अपनाना चाहिए।
1: क्या महिलाएं स्वयं से आयुर्वेदिक दवाई ले सकती?
2: नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाओं को अपनी इच्छा से आयुर्वेदिक दवाई नहीं लेना चाहिए। प्राकृतिक या आयुर्वेदिक औषधियाँ भी गलत मात्रा में, गलत समय या गलत तरीके से लेने पर नुकसान पहुंचा सकती हैं। विशेष रूप से गर्भावस्था, स्तनपान या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के दौरान बिना चिकित्सीय सलाह के दवा लेना उचित बिल्कुल नहीं है। इसलिए किसी भी औषधि का सेवन करने से पहले योग चिकित्सक से परामर्श लेना ही चाहिए।
1: अच्छा, महिलाओं के लिए आपका क्या स्वास्थ्य संदेश है?
2: मैं तो ये संदेश यही बोलूंगा कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को परिवार की जिम्मेदारियों से कम महत्वपूर्ण न समझें। उन्हें पौष्टिक और संतुलित आहार लेना चाहिए, पर्याप्त नींद और आराम करना चाहिए तथा नियमित शारीरिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। अपनी किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज नहीं करें और आवश्यकता पड़ने पर समय पर चिकित्सीय सलाह जरूर लेवें। स्वस्थ और जागरूक महिला अपने परिवार के साथ साथ स्वस्थ समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
1: अच्छा डॉक्टर जी, एक प्रश्न और पूछना है कि आज के समय में आयुर्वेद क्यों महत्वपूर्ण है?
2: देखिए, आज की व्यस्त जीवन शैली

0: अनियमित खान पान, तनाव, भागदौड़ के कारण लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। आयुर्वेद संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, योग, व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली पर विशेष ध्यान देता है। यह हमें अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा भी देता है। इसी कारण आधुनिक समय में भी आयुर्वेद का विशेष महत्व बना हुआ है और इसके प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है।
1: अच्छा, ये आयुर्वेद के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, संतुलित और पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच को महत्व देना चाहिए। आयुर्वेद भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हमें समझना और उचित रूप से अपनाना चाहिए। साथ ही किसी बीमारी या औषधि के मामले में स्वयं उपचार की बजाय योग चिकित्सक की सलाह लेना उचित होगा।
1: बहुत अच्छा, आपसे बातें कर बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ हमारी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। धन्यवाद।
2: बहनों, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रतिभाशाली लेखिका के बारे में जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के महत्वपूर्ण विषयों को आवाज दी और भारतीय साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध कर्नल लेखिका और कहानीकार बानो मुश्ताक की। उनकी रचनाओं में समाज, महिलाओं का जीवन, मानवीय भावनाएं और रोजमर्रा की समस्याओं को दिखाया गया है। बहनों, बानो मुश्ताक एक लेखिका होने के साथ साथ वकील और महिलाओं के अधिकार की समर्थक भी हैं। बहनों, 2025 बानो मुश्ताक के साहित्यिक जीवन का एक ऐतिहासिक वर्ष बन गया जब उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। बहनों, हार्ट लैम्प 12 लघु कथाओं का संग्रह है। इन कहानियों में दक्षिण भारत के समाज की महिलाओं और लड़कियों के जीवन तथा उनके सामने आने वाली परिस्थितियों को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक की एक और विशेष उपलब्धि है, हार्ट लैम्प इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाला पहला लघु कथा संग्रह बना और कन्नड़ से अनुदित होकर यह पुरस्कार पाने वाली पहली पुस्तक भी बनी। पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती ने किया है। बहनों, बानो मुश्ताक की लेखनी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में महिलाओं की आवाज, उनके अनुभव और उनकी भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से महिलाओं के जीवन को केवल एक विषय के रूप में नहीं बल्कि समाज के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी यह उपलब्धि हर उस महिला और युवा के लिए प्रेरणा है जिसके मन में कुछ कहने, लिखने और पहचान बनाने की इच्छा है। बानो मुश्ताक हमें सिखाती हैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने अनुभवों पर विश्वास रखना चाहिए। हमारी कहानी चाहे हमारे घर, गांव, शहर या समाज से शुरू हो, उसमें पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता हो सकती है। बहनों, आज जब हम बानो मुश्ताक की उपलब्धि की चर्चा कर रहे हैं तो यह केवल पुरस्कार विजेता लेखिका की चर्चा ही नहीं, यह भारतीय समाज, भारतीय साहित्य और महिलाओं की सशक्त आवाज का सम्मान भी है। बहनों, हम बानो मुश्ताक की इस ऐतिहासिकता को नमन करते हैं और उनकी लेखनी से प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि शब्द छोटे हो सकते हैं लेकिन उसमें बदलाव की शक्ति बहुत बड़ी होती है। इन्हीं जज्बातों को आवाज देता है फिल्म संजू का गीत कर हर मैदान फतेह, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल ने।

बहनों, अभी हमने सुना गीत कर हर मैदान फतेह, जो फिल्म संजू से लिया गया था और जिसे गाया था सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल ने। बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन को जो बनाने में आसान और खाने में बेहद लाजवाब है, मसालेदार बेसन रोल। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले बेसन में नमक, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा तेल डालकर मिलाएं और पानी की सहायता से उसे नरम आटा गूंथ लें। अब बारी है स्वादिष्ट स्टफिंग की। इसके लिए सूखा नारियल, मूंगफली, जीरा, सौंफ और साबुत धनिया को हल्का भूनकर इसमें हरी मिर्च और लहसुन मिलाएं और दरदरा पीस लें। अब बेसन की लोई को पतला बेलकर उस पर तैयार मसाला अच्छी तरह से फैलाएं और इसे रोल का आकार दें। अब इन रोल्स को स्टीमर या इडली मेकर में अच्छी तरह से भाप में पकाएं। और अब तैयार करते हैं इसकी चटपटी ग्रेवी। ग्रेवी के लिए कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट भूनें। फिर दही, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें। इसके बाद टमाटर की प्यूरी, गरम मसाला और थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाएं और अंत में स्टीम किए हुए बेसन रोल्स को ग्रेवी में डालकर धीमी आंच में 3-4 मिनट पकाएं और ऊपर से हरा धनिया डालें। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म मसालेदार और स्वाद से भरपूर बेसन रोल। तो आज ही बनाइए और अपने परिवार के साथ इस स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद उठाइए। बहनों, स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू और संगीत की मधुर धुन, जब दोनों साथ हो तो माहौल बन जाता है एक खूबसूरत दावत का। तो आइए इसी स्वाद और संगीत के संगम को महसूस करते हुए सुनते हैं फिल्म दावते इश्क का खूबसूरत टाइटल सॉन्ग, जिसे अपनी आवाज दी है जावेद अली और सुनिधि चौहान ने।

अभी हमने सुना गीत दावते इश्क, जो फिल्म दावते इश्क से लिया गया और जिसे गाया था जावेद अली और सुनिधि चौहान ने। बहनों, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे प्रणीता सिंह परिहार के गाए लोकगीत।

प्रणीता सिंह परिहार के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार यानी कल दिनांक 20 सितंबर 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस ग्राम सभा हेलो ग्राम सभा का विषय है उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वो दिनांक 20 सितंबर 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुनिए। 20 सितंबर 2026 को 7:30 बजे से 8 बजे तक फोन नंबर है 2660902 और 2660903। एसटीडी कोड 0755। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। सुगम संगीत में सुनिए राम स्वरूप साकेत और की गाई गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

ये गीत हमने लिया है तेरी मेहरबानियां फिल्म से, आवाजें शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की, एसएच बिहारी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और अब सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया हुआ रंग फिल्म का ये नगमा, समीर का गीत और नदीम श्रवण का संगीत।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
0: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7,400 से अधिक विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण किया। भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं की प्रतिभा को सम्मान देते हुए विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है।
2: तो बच्चों आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आज स्कूटी लिए आपके साथ समाज में विकास के काम करें और आने वाले समय में राज्य को भी समृद्ध करें और देश को भी आगे बढ़ाएं। ये भविष्य आप लोगों के हाथ में है। आज देश दुनिया के सामने चौथे नंबर की आर्थिक ताकत बना है, लेकिन आप पढ़ लिख के आगे बढ़ोगे तब तक आप सबके मदद से देश दुनिया का नंबर 1 का देश बनेगा। ये आप सबके हाथ में है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के लिए नए अवसर तभी बनते हैं जब देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, निवेश बढ़ता है, नए उद्योग लगते हैं और नए सेक्टर का विकास होता है। आज भारत तेजी से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रदेश में मानसून अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 22 सितंबर तक प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक पश्चिमी हिस्से में इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है। इसके प्रभाव से पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बनी हुई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य रोजगार के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जो प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर के बाहर बीती रात पुलिया से एक 4-पहिया वाहन के नीचे गिरने से हुए हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जबलपुर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत 2 दिवसीय रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। नर्मदापुरम जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत सिवनीमालवा तहसील के ग्राम लोखरतलाई में ब्लॉक स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। वहीं शिवपुरी जिले के मगरौनी में कल मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत जनसंवाद शिविर का आयोजन किया गया और झाबुआ जिले के रानापुर क्षेत्र के बगई स्थित एकीकृत शासकीय हाईस्कूल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रसारण तक प्रतीक्षा कीजिए।
4: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी। और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में 2 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
4: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
4: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
5: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
6: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस,
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी X@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
4: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उभरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
8: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
4: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
9: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
5: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
9: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश की पहली फरमाइश है। प्रिय दर्शनी आकाशवाणी श्रोता संघ से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दंड गवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना, बंडू दादा, रथ चौक बहादुरपुर जिला जलगांव से, और छावड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, और शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, आकाश कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा ने।

जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ, बस स्टैंड के पास जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनुरत रेखवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रेखवार बंडा, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमत डिंगिया और अपार डिंगिया, आप सबने सुनना चाहा है जन्म फिल्म का ये नगमा। आवाज अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की है, फैज अनवार का गीत और संगीत है अनु मलिक का।

गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, साथी कान्हा जी आर्य। साहिब रेडियो श्रोता संघ ननोरा महोबा उत्तर प्रदेश से बलराम दास अहिरवार, श्रीमती कस्तूरी, उपमा और नैतिक वर्मा। थाना रोड बक्सर से जीवित गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी। जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट। नेहरू बाड़े माता मंदिर माता चौक सनावद से दिलीप फुलवाले, जितेंद्र, योगेश यादव। मोहल्ला से दिलीप मालाकार, सुनीत मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, योगेश मालाकार। आप सबने सुनना चाहा है कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई का ये नगमा। जमीर काजमी का लिखा गीत और अनु मलिक का संगीत।

अगला गीत डर फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की, आनंद बख्शी का गीत और शिव हरी का संकी। इस गीत की फरमाइश भेजी है बिरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनु करमकर, असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबेर अंसारी, और पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर से मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना और सानवी, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए, खलनायक फिल्म से मनहर उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें। ये गीत पसंद किया है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी, डबवाली से जेके बोकोलिया, स्मिथ सुनीता बोकोलिया, संजय अनिल मीनू बोकोलिया और छत्तीसगढ़ से दंतरेंगी से भागवत वर्मा, लीवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने। सुनते हैं इनकी फरमाइश का अंतिम नगमा।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7,400 से अधिक विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं की प्रतिभा को सम्मान देते हुए विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। प्रदेश में मानसून अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 22 सितंबर तक प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान जताया है और 20वें एशियाई खेल आज से जापान में शुरू हो रहे हैं। 4 अक्टूबर तक चलने वाले खेलों में भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेलों में हिस्सा लेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:00, 7:15, रात 8:25 पर और 10:20 पर। प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे आज शाम 6:15 पर। 7:30 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम किसान वाणी। विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 8:00। एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी रात 10:00। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव 188.32 मीटर पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है लोक संगीत, ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे प्रणीता सिंह परिहार के गाए लोकगीत।

प्रणीता सिंह परिहार के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल, प्रस्तुत है सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है जिसमें आप सुनेंगे राम स्वरूप साकेत की गाई गजलें।

राम स्वरूप साकेत की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत दामिनी फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, समीर का गीत और नदीम श्रवण का संगीत।

बोल राधा बोल, लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा, साधना सरगम की आवाज और साथ में सुरेश वाडेकर, समीर का गीत और संगीत आनंद मिलिंद का।

ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो है बाजीगर फिल्म से, विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजें, गौहर कानपुरी का गीत और अनु मलिक का संगीत।

अगले गीत सुनवाने से पहले सुनिए एक सूचना। भोपाल शहर में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा मकान मालिकों, किरायेदारों एवं विभिन्न संस्थानों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। मकान मालिकों द्वारा मकान या उसके किसी भाग को किराए पर दिए जाने पर किरायेदार का विवरण निर्धारित प्रपत्र में एक सप्ताह के भीतर संबंधित थाने अथवा मध्य प्रदेश पुलिस सिटीजन पोर्टल पर देना अनिवार्य है। पूर्व से रह रहे किरायेदारों एवं घरेलू नौकरों का विवरण भी 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जाना है। घरेलू नौकर, होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसॉर्ट में ठहरने वाले व्यक्ति, छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं तथा निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, कारीगरों का विवरण भी निर्धारित प्रपत्र में संबंधित थाने को उपलब्ध कराया जाना है। सभी संबंधित नागरिकों एवं संस्थानों से पुलिस प्रशासन द्वारा निर्देशों का पालन करने की अपील की जाती है। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए सलामी फिल्म से। आवाज आशा भोसले और कुमार सानू की है, मदन पाल का गीत और नदीम श्रवण का संगीत।

0: इसके साथ ही चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:58 होने को हैं, वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 7,500 मेधावी छात्रों को ई स्कूटी वितरित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सतना जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अन्नदाताओं के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, नवाचारों एवं विकास कार्यों की जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 20 सितंबर तक प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पावन पर्व राधाअष्टमी की प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं और एशियाई खेलों में मौजूदा चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम कल जापान के निशन में सेमीफाइनल में बांग्लादेश के साथ खेलेगी। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम अनमोल धरा।

0: नमस्कार साथियों, अनमोल धरा के इस नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज नागर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा है बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सीधे तौर पर प्रभावित करता है। हमारा आज का विषय है पिघलते ग्लेशियर, खतरे में दुनिया। इस विषय पर गहराई से बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी इपको भोपाल के मुख्य वैज्ञानिक श्री लोकेन ठक्कर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: सर। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर ये हिमनद या ग्लेशियर क्या होते हैं?
1: देखिए, जैसे सतपुड़ा के पहाड़ हैं, विंध्याचल है, ये पहाड़ पत्थर के हैं। लगभग ऐसे ही बड़े बड़े पहाड़ बर्फ़ के हैं और ये वहाँ बनते हैं जहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है और बर्फ़ गिरती है। हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल से बर्फ़ गिर रही है और बर्फ़ पिछले साल की बर्फ़ पिघल नहीं पाती और फिर नई बर्फ़ आ जाती है। इस तरह से एक किस्म का पहाड़ बनता जाता है और ये पहाड़ ग्लेशियर्स कहलाते हैं। हमारे यहाँ हिमालय में हैं, यूरोप में हैं, देश के दुनिया के कई जगह पर ग्लेशियर्स हैं और ये ग्लेशियर्स हमारे पूरे जलवायु को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसी भूमिका आप समझिए कि तटीय क्षेत्रों की है, जैसी भूमिका मरुस्थल की है, वैसी भूमिका इन ग्लेशियर्स की है, जिसको हम हिंदी में हिमनद भी कहते हैं। हिम मतलब बर्फ, बर्फ की नदियां हैं, ये जमी हुई नदियां, ऐसी समझ लीजिए आपकी जमा हुआ बर्फ, हज़ारों करोड़ों साल का जमा हुआ बर्फ है और ये हमारे पूरे क्षेत्र को के तापमान को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है।
0: सर, पर्यावरण संतुलन में इनकी क्या भूमिका है?
1: देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जहाँ तक जैसा मैंने कहा कि जलवायु को नियंत्रित करते हैं, हमारी बहुत सारी जो मानसून की जब हवाएं चलती हैं तो ये हिमालय से टकरा करके बारिश ठंडी होती है और फिर बारिश होती है। तो आप समझिए कि अगर हमारे पर्यावरण का नियंत्रण करना है, अगर हमारे जलवायु को नियंत्रित करने का, इन सब में जो हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है।
0: तो नदियों के अस्तित्व के लिए ये कितने ज़रूरी हैं?
1: देखिए, भारत में जो नदियां हैं वो एक तो ऐसी हैं जो कि ग्लेशियर से पिघलने से आती हैं
0: जी।
1: जैसे हमारी सबसे देश की सबसे पूज्यनीय, सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा
0: जी।
1: ये ग्लेशियर फैड रिवर है। ग्लेशियर्स के, क्योंकि बर्फ़ है तो पिघलती तो है
0: जी।
1: जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि ग्लेशियर्स ऐसे बनते हैं कि साल भर में जब भी बर्फ़ गिरी तो वो जमती जाती है।
0: हाँ।
1: और कुछ समय से होता है जब बर्फ़ नहीं गिर रही है लेकिन फिर से बर्फ़ गिरना शुरू होती है, तो पिघलती कम है, जमती ज़्यादा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो ये ग्लेशियर्स बनते जाते हैं, लेकिन पिघलते हैं ग्लेशियर्स, क्योंकि जब कभी थोड़ी सी गर्मी होती है, थोड़ा तापमान बढ़ेगा तो ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं और इन ग्लेशियर्स के पिघलने से ही कई नदियों का जन्म होता है। कई नदियों में जो अविरलता है, उनमें जो प्रवाह है, वो ग्लेशियर से के पिघलने से आता है। तो ये बहुत सी नदियाँ ऐसी हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे बताया गंगा नदी, उसके दूसरी जो ऐसे हमारे प्रदेश की जो जीवन रेखा है नर्मदा नदी, वो ग्लेशियर फैड रिवर नहीं है
0: जी।
1: क्योंकि वो तो निकलती है अमरकंटक से, वहाँ कोई ऐसी बर्फ़ नहीं जमती है। तो नदियाँ ग्लेशियर फैड भी हैं और बगैर ग्लेशियर के भी पहाड़ों से, सतपुड़ा की, विंध्याचल से, कई नदियां हमारे प्रदेश में जो हैं, बेतवा है तो क्षिप्रा है तो चंबल है, महानदी है, सोन है, नर्मदा है, ये सारी नदियां ग्लेशियर फैड नहीं हैं। लेकिन बहुत सारी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र है जो हमारी पहाड़ों से निकलने वाली,
0: यमुना नदी है,
1: यमुना तो गंगा की सहायक नदी है, यमुनोत्री भी, लेकिन फिर भी इसके अलावा आप देखें तो जो पंजाब में प्रांत से ऊपर नदियां हैं, चाहे रेवा हो, सतलज हो, ब्यास हो, सिंधु हो, ये सारी नदियां ग्लेशियर फैड रिवर्स हैं
0: जी। इनमें साल भर पानी रहता है,
1: इनमें साल भर पानी रहता है, अविरलता रहती है क्योंकि बर्फ पिघलती रहती है, इसमें प्रवाह बना रहता है। इसलिए जीवन, नदियों के जीवन, देखिए नदियों की जो दो महत्वपूर्ण नदियों के गुण हैं, एक है अविरलता, दूसरी उसकी निर्मलता
0: जी।
1: मतलब पानी स्वच्छ हो, निर्मल हो और पानी इतना हो कि उसमें बहाव हो, उसमें अविरल रहा है, धार टूटे ना
0: जी।
1: तो अगर ये दो चीज़ें तो नदी जिंदा है, वरना फिर नदी में प्राण की कमी, कहीं उसमें जीवन की कमी हो जाती है।
0: सर, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं?
1: देखिए, ग्लेशियर्स दो प्रकार के होते हैं, जिनको एक हम कहते हैं वैली ग्लेशियर्स और दूसरा कहलाते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। जो वैली ग्लेशियर्स होते हैं वो पहाड़ों में की घाटियों में बहते हैं, और जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका में है या ग्रीनलैंड में है। अब आपने कहा कि कौन से कारण हैं जिनसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो आप समझिए बर्फ़ पिघलने का कारण क्या होता है। सिंपल है कि बर्फ़ के तापमान से ज़्यादा तापमान कहीं होगा तो बर्फ़ पिघलेगी। फ्रिज में तो बर्फ़ नहीं पिघलती, लेकिन बर्फ़ को हम जैसे ही फ्रिज से बाहर निकालते हैं वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि तापमान में कहीं ना कहीं अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे। और तापमान में, जो पृथ्वी के तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल कारण है जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही, जिसको हम कह सकते हैं कि तपती वसुंधरा, तो ये वसुंधरा क्यों तप रही है, ये कैसे तप रही है, इसका मूल कारण है कि जितने हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये या बहुत सारी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जिनको हम सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण में जा कर के पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं। और पृथ्वी के सतही तापमान में जब वृद्धि होगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे और बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। इसके साथ क्या हो रहा है कि समुद्र का जो पानी है उसका भी तापमान बढ़ रहा है। तो क्या होता है कि जैसे मैंने कहा, जो अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स हैं ये समुद्र में हैं, तो क्या होगा कि जब समुद्र का पानी बढ़ेगा तो ये ग्लेशियर्स के बड़े बड़े पहाड़, अगर आप टेलीविजन पर या कहीं वीडियो में देखें तो आपको दिखाई देंगे कि आपको बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो टूट टूट करके समुद्र में आ रहे हैं। और समुद्र का तापमान बढ़ गया है
0: जी,
1: तो उससे क्या हो रहा है, दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो समुद्र के तापमान के बढ़ जाने से ये बर्फ़ जल्दी से पिघल रही है, मतलब अगर बर्फ़ को हम गर्म पानी में डालेंगे तो जल्दी से पिघलेगा। तो समुद्र का तापमान बढ़ गया, उसमें ग्लेशियर्स गए तो बहुत जल्दी पिघलने लगे, उससे क्या हो गया कि और ग्लेशियर्स टूटने लगे। और समुद्र का एक्सपेंशन, जिसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, समुद्र भी पानी जब गर्म करते हैं, आप अपने घर में पानी गर्म करेंगे तो एक बर्तन में पानी गर्म करने से वो फैल जाता है, उसमें एक्सपेंशन होता है। तो समुद्र एक्सपैंड हो रहे हैं और समुद्र अपनी सीमा लांघ करके आसपास के इलाकों में घुस रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप, जिसको हम आइलैंड्स कहते हैं, जो समुद्री आइलैंड्स हैं, वो डूब गए हैं, या उनके ज़मीन में समुद्र बहुत तेज़ी से इनग्रेस कर रहा है, घुस रहा है, उससे उनके जीवन को, उनके अस्तित्व को संकट खड़ा हो गया है।
0: जैसे सर आपने बताया, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और जो तटीय इलाके हैं वो डूब रहे हैं
1: जी।
0: इसके अलावा पर्यावरण और हमारे जीवन पर सर इसका क्या प्रभाव है?
1: देखिए, हम यहाँ मध्य प्रदेश में तो ग्लेशियर्स के पिघलने से बहुत सीधे रूप से प्रभावित नहीं हैं, लेकिन जो लोग, जैसे मैंने कहा, समुद्र के पास में रहते हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो लोग ग्लेशियर फेड रिवर्स पर, जिनका जीवन, जिनकी आजीविका निर्भर है, उन लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और अगर समुद्र से ग्लेशियर्स, पहाड़ों से ग्लेशियर्स अगर पिघलने लगे तो नदियों में जल की मात्रा, उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो उसको पानी को वहन करने की जो क्षमता है उनकी, उस क्षमता से अगर ज़्यादा पानी आएगा तो बाढ़ आएगी और बहुत सारे लोग उसमें परेशान होंगे, एक आपदा आएगी। और कहने को तो लगेगा कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ये मानव निर्मित आपदा है
0: जी। सर, अंत में यह जानना चाहेंगे कि हम इस संकट से कैसे निपट सकते हैं?
1: ग्लेशियर्स को बचाना हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने कहा कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके लिए हमको जलवायु परिवर्तन और अपनी पृथ्वी के तापमान को, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा। और उसका एकमात्र वही कारण है कि हम अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाएं, हम ऐसे काम करें जिससे कि हमारा पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़े। आप जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान अभी करीब 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि पिछले, जब से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है तब से लगभग 1.5 डिग्री बढ़ चुका है। सारी दुनिया ने पेरिस समझौते के समय एक संकल्प लिया था कि हम अपनी पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री से ज़्यादा अब नहीं बढ़ने देंगे। और कोशिश करेंगे कि ये तापमान 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े, मतलब 14 से 15.5 या अधिकतम 16 डिग्री हो। लेकिन जिस तरह का उत्सर्जन, मुझे कहने में ये संकोच भी है और दुख भी है कि जिस तरह का ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सारी दुनिया में हो रहा है, उससे लगता नहीं है कि हमने संकल्प जो लिया था पेरिस समझौते में हम उसको पूरा कर पाएंगे। आज ऑलरेडी दुनिया जो है 2 डिग्री से अधिक तापमान की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। हमको तत्काल कुछ ऐसे, सारी दुनिया को तत्काल ऐसे प्रयास करने होंगे कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसको हम रोकें, और वो जब रुकेगा तभी ग्लेशियर्स के पिघलने की जो चुनौती है, जो समस्या है, जो एक बड़ी विशाल हमारे सामने प्रश्न चिन्ह लगा है, वो रुक पाएगा, तभी हम अपने अस्तित्व को, अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे।
0: सर, सरकार तो इस दिशा में कार्य कर ही रही है, आमजन क्या करे कि वो भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके?
1: देखिए, हर बूंद बूंद से खड़ा पड़ता है, तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि पर्यावरण पर उसका होने वाला प्रभाव कम से कम हो, जिसको हम फुटप्रिंट कहते हैं, कि मेरा अपना फुटप्रिंट कितना है, क्या मैं जितना मेरी आवश्यकता है क्या मैं उससे अधिक चीज़ों का उपभोग कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी, चाहे वो बिजली का उपयोग हो, पानी का उपयोग हो, ऊर्जा के साधनों का उपयोग हो, कोई भी चीज़ है, आवश्यकता से अधिक अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा के उसका दुष्प्रभाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को अपने जीवन शैली में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, तभी हम इस पूरी चुनौती में अपना सार्थक योगदान दे सकेंगे।
0: सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी के साथ हमारा यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनमोल धरा। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में जबरदस्त फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत।

अभी आपने सुना जबरदस्त फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, शब्द रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत आरडी बर्मन का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। अब सुनिए सागर फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, इसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

सागर, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और कार्यक्रम है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। आवाज लता मंगेशकर की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म राम तेरी गंगा मैली के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का पहला भाग।

0: बुढ़ापे में मंसूबों पर मंसूबे आने पर भी जिस तरह उन्हें जीवन पर उतारने की इच्छा नहीं होती, जवानी में उसी तरह पहला मंसूबा आया कि जीवन में उतारने के उतावलेपन में दूसरे इरादों के आने तक ठहरने की इच्छा नहीं होती।
1: बुढ़ापा शास्त्र और रूढ़ी के प्रति सजग भले रहे, वो अस्तित्व के प्रति नास्तिक होता जाता है। जवानी इसी नास्तिकता का विद्रोह बनकर आती है। वो अस्तित्व के उपयोग के प्रति इतनी आस्तिक कि उपयोग और अस्तित्व में वो दूसरे को पहले की बाजी पर चढ़ा दे।
0: इसे बूढ़े पागलपन कहते हैं, किंतु हर बूढ़ा अपनी उम्र के इस पागलपन को अपने सुनहरे इतिहास की तरह गर्व से दोहराता है। किंतु नया इरादा आया कि ना तो बूढ़ी सांस की मिजराब में वो मरोड़ रह जाती है और ना ही उतरते तारों की हड्डियों की वीणा में वो झंकार ही निकलती है। तरुण जिंदगी की वीणा तो बिना इच्छा की अंगुली से हुए सांसों की खूंटी पर, उमंग की हवा के झोंकों पर अपने आप ही बज उठती है।
1: तारीख 11 दिसंबर सन 1907 को कुछ ऐसी घटना हो गई।
0: बब्बू भैया शाम की गाड़ी से हरदा उतरे।
2: ये आ गया अन्नापुर, यही है अपनी मंजिल। चलो अब कमल बाबू के घर चला जाए। तांगे से चलते हैं।
3: ए तांगे वाले भैया, कमल बाबू के घर चलना है।
2: काफी बदल गया है अन्नापुर, सब कुछ नया नया बदला हुआ।
3: अरे रोको भाई रोको, यही है कमल बाबू का घर।
4: ये कौन है? कहीं पुलिस का कोई सिपाही तो नहीं है? सर पर देखो कैसे पंजाबी दुपट्टा बांधे हुए है। मुझे तो डर लग रहा है, घर में छुपकर दरवाजा बंद कर लेती हूँ।
3: कमल बाबू, ओ कमल बाबू, अरे कमल बाबू हैं क्या घर पर?
4: कौन है?
3: हम हैं बब्बू भैया, कमल के दोस्त हैं। कहाँ हैं कमल बाबू?
4: ठहरो, हम भौजी से पूछकर आते हैं।
3: अरे दरवाजा तो खोल। तू कमल की बहन है?
4: जी, हमारा नाम रम्मो है। हम अभी भौजी से पूछकर आते हैं।
3: ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ।
4: भौजी, भैया के दोस्त आए हैं, भैया के बारे में पूछ रहे हैं।
5: जा कह दे अभी कचहरी से नहीं आए हैं।
4: भौजी कह रही हैं भैया अभी कचहरी से नहीं आए हैं, रोज ही देर से आते हैं, आप अंदर आ जाइए।
3: ठीक है रमो, मैं प्रतीक्षा करता हूँ।
4: लाइए ये पेटी मुझे दे दीजिए।
3: लो
4: ये बैठक खाना है, आप आराम से बैठिए।
3: अच्छा,
4: मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।
3: नहीं, मुझे जब जरूरत होगी तो मांग लूंगा।
4: जी।
1: बब्बू ने अपनी जेब से एक टिबिया निकाली।
4: ये क्या है भैया?
3: ये पेपरमेंट है।
4: ये क्या होता है?
3: पेपरमेंट क्या होता है, ये शब्दों में बयान करना मुश्किल है। खा कर पता चलता है कि पेपरमेंट क्या होता है। ले तू खा।
4: हाँ। अरे इससे तो मुंह ठंडा हो गया।

0: ठीक है मित्र।
1: हैं? अरे आने से पहले कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं डाली तुमने? आओ गले तो मिलो। और हाँ इनसे मिलो, ये हैं रामाधार मिश्र, सदर थाने में कांस्टेबल हैं।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
0: एकदम ही कार्यक्रम बना, खबर ही नहीं कर सका। पुलिस से दोस्ती रखते हो?
1: अरे कोर्ट कचहरी में हूँ इसलिए पुलिस से दोस्ती रखनी पड़ती है।
2: बब्बू भैया आजकल हालात खराब हैं, अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के मतवाले अंग्रेजों को चुन चुन कर मार रहे हैं, पूरी अंग्रेजी हुकूमत आंदोलनकारियों के विरुद्ध है।
0: रामाधार जी अंग्रेज क्यों नहीं हमारा देश छोड़कर चले जाते, अरे वो भी सुखी रहेंगे और हम भी।
2: कहीं आप भी तो आज़ादी के मतवाले नहीं हैं?
0: यदि हूँ
2: तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा।
1: अरे रामाधार जी ये और क्रांतिकारी। अरे रामाधार जी ये बब्बू भैया हैं, एमए पास हैं और कामता प्रसाद जी इंजीनियर जैसे बड़े साहब के साहबजादे हैं।
2: अच्छा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था।
0: आप अंग्रेजी सरकार के मुलाजिम हैं, आप गंभीर बात में भी मजाक ढूंढ ही लेते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम आजादी के लिए शहीद भी हो सकते हैं।
2: देखो बब्बू साहब, मुट्ठी भर क्रांतिकारी बर्तानिया हुकूमत से टकरा नहीं सकते।
0: दिलों में जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, चींटी पहाड़ पर चढ़ सकती है, चूहा ऊंची इमारत को भी खोखला कर सकता है।
2: अरे गोली के आगे अच्छे अच्छे भाग जाते हैं।
0: रामाधार जी जो भाग जाते हैं वो बुजदिल होते हैं, उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में कूदना ही नहीं चाहिए। जिनके दिलों में भारत को आजाद रखने का जज्बा है वो बंदूक तो क्या तोप से भी नहीं डरते।
2: बब्बू साहब आपकी बातें बता रही हैं कि आप क्रांतिकारी हैं।
0: रामाधार जी देश का हर बच्चा हर जवान हर बूढ़ा देश को आजाद देखना चाहता है, क्या ये जज्बा देशद्रोह है? नहीं रामाधार जी, आप भी देखेंगे एक दिन आजाद भूमि पर तिरंगे को लहराता हुआ।
2: बब्बू जी आप कब तक यहाँ ठहरे हैं?
1: रामाधार जी इसके दोस्त का घर है, जब तक चाहे रह सकता है।
2: देखिए मुझे थानेदार साहब को आपके बारे में सूचना देनी होगी।
0: आप अपना फर्ज निभाएं। अच्छा नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: अच्छा रामाधार जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: रामाधार के जाते ही बब्बू ने भैया से फिर बातें करना प्रारंभ किया। दोनों खूब गले मिलते, दोनों आंखों में आंसू भर लाते। कमल नारायण यहाँ की तहसील कचहरी में मुहर्रिर थे और बब्बू उनके पुराने साथियों में थे।
1: अरे मित्र क्या हाल है?
0: ठीक है मित्र।
1: हैं? अरे आने से पहले कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं डाली तुमने? आओ गले तो मिलो। क्यों अंग्रेजी पढ़कर एमए पास होकर भी मुझे ना भूला, ढूंढता हुआ मेरे पास आ ही गया तू।
4: आप बड़े वो हैं भैया, मुझसे कहते हैं अंग्रेजी क्यों पढ़ती है और खुद अंग्रेजी में एमए हैं।
0: रमो मैंने अंग्रेजी इसलिए पढ़ी कि अंग्रेज क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं वो जान सकूं और अपने सिर में उनकी बातें भर सकूं।
1: बड़ा सिर वाला आया है।
0: सिर वालों की बातें तू बेसिर पैर का क्या समझे, तू तो कचहरी में बिका हुआ है, तू ना सिर उठाना जाने ना सिर चढ़ाना समझे, तब सिर चढ़ा देने की कहानी तो दूर ही है।
3: इस कविता को कमल नारायण नहीं समझे, उन्होंने बात बदल कर कहा,
1: अच्छा बता किस काम से आया है और छोड़ अपनी अंग्रेजी इरादों का अनुवाद करके बोली हुई हिंदी।
5: बब्बू ने अपने बाईं ओर की दीवार पर लगे हुए दर्पण में अपने आप को जरा झांक कर देखा, मानो वो अपने चेहरे की पैमाइश कर रहा था कि ऐसे मनोभाव उसके मुंह पर हैं कि नहीं जिनका असर कमल पर पड़ा है। और कमल बिना घबराए उसके बाने उसके साथ सामान के साथ आने के खतरनाक संगीत को बर्दाश्त कर जाए।

0: जब बब्बू को संदेह हुआ तो उसने कहानी सी गढ़ी, बोला,
1: कमल।
2: हाँ बब्बू, बोल।
1: तेरे पास एक खजाना है, बहुत अटूट है वो, तेरे दिल का।
2: हाँ?
1: करीबी और किताबों के दिमागी बोझ से रहकर भी तू कितना दिल का धनी और कितना ऊंचा है। किंतु ये प्रश्न है, किस ऊंचाई को बांटने का साहस भी तुझ में है?
2: हाँ?
1: मेरे पिता राय बहादुर जुगल किशोर ने एक बार चंद्रग्रहण पर शर्माते शर्माते नर्मदा स्नान की यात्रा की। मोटर ही में वे बैतूल से होशंगाबाद आए। चुपचाप हम लोगों को लेकर नर्मदा घाट गए। पेशी कुल के पास एकांत में मौलशी के झाड़ के पास बैठे और चुपचाप स्नान किया। चुपचाप ही हम लोग मोटर में बैठकर रवाना हो गए। मेरे पिता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और साहब कहलाते थे। वे नहीं चाहते थे कि हम इस तरह खुले में नर्मदा नहाएं, और उनके अफसर साथी उन्हें 16वीं सदी का गंवार कहें। खैर, तो पिताजी नहा कर लौटे तो दूसरे दिन ब्राह्मण भोज हुआ। केवल 11 ब्राह्मणों को नोता गया या उन्हें नियोतने की सजा दी गई। बाकायदा बजट बना। हलवाई के यहाँ से नाप तुलकर मिठाई आई और हमारे मोटर गैरेज के पास वाला कमरा, जिसमें पहले घोड़े की टूटी हुई जीन, मोटर के फटे टूटे टायर आदि, नौकर चाकरों के कपड़े, फिनाइल के टीन, फर्राशों और सफाई वालों को दी जाने वाली नई झाड़ूएँ, कुदाली, गेती, फावड़े और सड़क पीट रखे हुए थे, उन्हें एक कोने से हटाकर एक कोना 11 ब्राह्मणों के बैठने के लिए साफ कर दिया गया।
0: बब्बू भैया बता रहे थे ये चेतावनी थी कि मिठाई कोई न खाए, क्योंकि उन दिनों जोर का हैजा फैला था। अतः चंद्र ग्रहण के शुभ पुण्य पर ब्राह्मणों के सिवा बाजार की मिठाई का प्रदान सबके लिए वर्ज्य था। आखिर समय आया और ब्राह्मण देवता घर पधारे। एक पंडित जी थे जो पुरोहिती भी करते थे और रुपयों का लेन देन भी। उनके बारे में शहर में अफवाह थी कि वे गुस्से में अपने पास के आदमी को काट खाते हैं। उनकी बीवी और उनके छोटे छोटे बच्चे उनसे परेशान थे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वे जिस घोड़ी पर खर्जी और लोटा, पानदान, धोती, रामनामी दुपट्टा, श्रीमद् भागवत से लगाकर नीचे ऊपर की पोथियों और दूसरी ओर दान में या ब्याज में मिले हुए रुपए, अठन्निया, पैसे, उड़द, अधेले, पाइयाँ और गेहूं, चावल, दाल, उर्द आदि पंचमेल चीजें रख कर और ऊपर से खुद बैठकर आते थे।
3: सो ऐसे पंडित भूधर शास्त्री भी बब्बू भैया के घर भोजन को आए।
4: बब्बू भैया यानी इसका अर्थ ये है कि भोजन के लिए पंडित गण श्रृंगार में आए थे।
1: हाँ।
4: फिर
1: इतने में पंडितों के खाते खाते बीच में हमारे यहाँ मिठाई चुक गई।
4: हाँ? फिर
1: अब तो 11 आदमियों के लिए फी आदमी 3 पाव के हिसाब से 8.25 सिर और कमी बेशी के लिए आई थी। अचार दही का बोझ होता नहीं और नमकीन कम भक्त तो पेट में मीठा भावे लोन पे, जो मीठे पे लोन की तरह स्वाद बढ़ाता। और कमल भैया, इतने में ही हमारे रसोइये द्वारा संभल संभल कर एक एक पीड़ा परोसे जाने पर पंडित वैशाख शर्मा बीच में ही तुनक कर बोल उठे, अरे एक एक परोस कर क्यों खराब करते हो भैया, घर में जाकर खिचड़ी तो खाना ही है।
0: कमल इस समय भूल गया था कि बात कहां से चली थी, वो कहानी में मशगूल था। किंतु जिस तरह मिष्ठान भोजन करते हुए दुखते कान में ठनक पैदा हो पड़ने पर आदमी कराह उठता है, उसी तरह बब्बू ने कमल नारायण से कहा,
1: तू भी आज प्रेम की वर्षा करते समय मेरे पिताजी जैसा ब्राह्मण भोज ना कराने लगना, ऐसा ना हो तेरी दया बीच में ही चुक जाए।

0: मानव अपनी जरूरतों, मनोभावनाओं और परिस्थितियों ही से क्या प्रसंगों के अर्थ लगाया करता है?
1: शायद पप्पू ये समझता है, आज तो मैं इतना प्रेम प्रदर्शन कर रहा हूं, कुछ परसों बाद आंखें न बदल लूं। बब्बू देख भाई, मैं हूं मुहर्रर और तू है एमए। भूलने का डर तो तेरा है भैया, मेरा नहीं। मैं तुझे कैसे भूलूंगा भैया।
2: किंतु आज
1: आज कैसे?
2: आज जो मैं कहूंगा सो
1: क्या कहेगा, कहे ना। अरे मेरे साथ संकोच कैसा?
3: इतना कहकर कमल ने बब्बू के गाल पर एक मीठी सी चपत मार दी। बब्बू मजा हुआ खिलाड़ी था, वो भावुकता को बारूद की तरह जरूरत पर ही और पूर्ण संयम के साथ उपयोग करने का आदि था।
2: चपत मारने की कीमत चुकानी होती है, समझे?
1: महंगी पड़े या सस्ती, ये तो तू जानता ही है कि 40 रुपए मासिक वाला मुहर्रर हूं, और फिर मेरे घर में माँ है, बीवी है, बहन है, छोटा भाई है, मैं तो हूं ही। तो भी जो कुछ है हमारे यहां, चल भोजन करते हैं।
0: थालियां परसी गईं और बाहरी के फर्श पर बैठे बैठे दोनों स्कूली साथी खाना खाने बैठे। बब्बू अपने तीर को साधे हुए था।
3: इतने ही में बब्बू ने पूरी के एक कौर से भिंडी की तरकारी समेट कर कौर कमल की ओर बढ़ाया और कमल ने इस स्नेह से मुंह खोल दिया मानो चिड़िया का बच्चा चुग्गा ले रहा हो।
2: ले कमल।
1: ला। अरे तू भी ले ना। ये पप्पू यदि मुझसे 100 रुपया मांग बैठा तो कहां से दूंगा इतना रुपया?
2: ये भिंडी की भाजी मुझे नहीं भाती, किंतु आज न जाने क्यों।
3: कमल का मुंह खाने के लिए खुलकर बंद हो गया और आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। बब्बू अपने चौकन्नेपन के हाजिरी रजिस्टर में कमल के भावों का हर परिवर्तन दर्ज करता चला आ रहा था। अब बब्बू को कमल ने हलवे का कौर उठा कर दिया।
1: बब्बू क्या कर रहा है तू? क्या ऐसे बावला रहेगा क्या?
0: बब्बू और कमल दोनों एक दूसरे को भाव विभोर देख रहे थे।
3: रम्मो बेचारी पूरियां लिए खड़ी रही, दोनों खाना भूल गए।
4: भैया लो ना पूरी।
2: नहीं बस।
1: अरे ले दे दे रम्मो डाल पूरी।
4: हाँ लीजिए।
3: रम्मो पूरी डालकर चली गई, आंसू दोनों की आंखों में थे।
1: बब्बू आज हाँ तेरी आंखें बहुत मीठी हैं, तेरा ये उन्माद मेरे बचपन को लौटा लाया है। अच्छा तू जहां से आया है वहां वापस चला जाएगा? क्या करता है बब्बू, मुझे छोड़ के चला जाएगा?
2: कमल यही 3 सवाल हैं जिसका उत्तर छुपाए रखना मेरे जीवन का चिरह पख्तर है।
1: क्या मुझसे भी?
2: हाँ तुमसे भी
1: है?
2: हाँ।
1: सो कैसे?
2: इसलिए कि क्या तुम्हारे आंसुओं से ही जान लूं कि तुम मेरे हो?
1: बब्बू मित्र मैं इसे मुंह से कहता शर्माता था, लो अब कहता हूं कि मैं।
3: इतने में ही बब्बू ने थाली धीरे से अलग सरका दी और कमल बब्बू की गोद में सिसक सिसक कर एक हाथ बब्बू की कमर के आसपास बंधन की तरह डालकर दूसरे हाथ से आंसू पोंछने लगा। बब्बू चौकन्ना था, किंतु आदर्श चौकन्ना होना ही उसका व्रत था। उसने दोनों हाथों से कमल का सिर अपनी गोद में संभाल कर रख दिया और अपने बेकाबू आंसू कमल के गालों पर टपकाते हुए कहा,
2: यार
1: हाँ बब्बू
2: तुम रहे मुहर्रर ही।
0: जब भी करुणा से निर्बल झांक उठता है 100 गुना बलशाली दीख पड़ता है।
1: बब्बू अपनी आंखें मैं पहुंचू और तुम्हारे आंसू लूं अपने गालों पर, ये दुगनी मजदूरी मुझसे न होगी भैया।
2: क्यों?
3: कमल की माँ सुखी थी कि कामता प्रसाद इंजीनियर जैसे बड़े आदमी का लड़का उसके बेटे को इतना प्रेम करता है। उस समय कमल

0: नारायण ब्रह्मानंद से भी कदाचित अधिक मीठी प्रेम समाधि से बाहर कुछ नहीं सोच रहा था। जानने की इच्छा मानव की ऐसी कमजोरी है जिसे मानव से दूर करके उसे मानव नहीं रखा जा सकता। कमल का बब्बू की कमर से लिपटा हुआ हाथ बब्बू की कोट की जेब में कुछ टटोलने लगा। एक अंग्रेजी चुट्टे की शक्ल की चीज छूते हुए उसने पूछा,
1: बब्बू तेरी कोट की जेब में ये क्या है?
2: उत्तर देना मना जो है।
1: ये मनाई का हुक्म कब तक जारी रहेगा?
3: उत्तर के लिए ना ठहरते हुए दूसरी जेब में हाथ डालकर बब्बू का मनी बैग चट से निकाल लिया।
2: अरे अरे क्या कर रहा हो? ठीक है भाई।
1: हाँ ये क्या?
0: उस समय बटुए में 100-100 के दो, 10-10 के चार और 5 का एक नोट देखकर कमल की आंखों से जोर से आंसू उमड़ पड़े। वो उठकर बैठा और बोला,
1: बब्बू मुझे क्षमा करो।
2: अरे किस बात की क्षमा?
1: मुझे क्षमा करो।
2: अरे होश तो दुरुस्त है। अरे ये क्या कह रहा है?
1: बस कहा ना मुझे क्षमा करो, अपराधी हूँ मैं, अपराधी हूँ, क्षमा करो मुझे।
3: कमल थोड़ा पीछे हटकर किंतु आंखों में आंखें गड़ाकर और स्नेह से घुली और कोमल आंखों को आत्मवेदना से तीखी और पैनी करके बोला,
1: बब्बू।
2: हाँ कमल।
1: बब्बू तुम नहीं जानते मैं कितना नीच हूँ, कितना नीच हूँ मैं, तुम नहीं जानते।
2: नहीं और तुम हो भी नहीं सकते। तुम्हें इतना धीरज कहाँ जो तुम्हारे हृदय के सारे इरादे सारे सद्गुण तुम्हारे चेहरे पर दुकान लगा कर ना बैठ जाएं। नीच ऐसा नहीं हुआ करता। नीच तो वो होते हैं जिनके चेहरे पर दुर्गुणों की दुकानें लगी होती हैं।
1: मैं नीच हूँ बप्पू, मैं बहुत नीच हूँ।
2: नहीं
1: नीची सोच।
2: शांत हो जाओ दोस्त, शांत हो जाओ।
1: बप्पू तुम नहीं जानते मित्र, मैंने तुम्हें आवारा समझा मित्र, आवारा समझा।
2: ठीक तो समझा, मैं सचमुच आवारा हूँ।
1: नहीं नहीं
2: आवारगी का वरदान।
1: ठहरो, नहीं मेरे बीच में बोलकर मेरी भावना का स्वर भंग और मेरे आनंद की शांति भंग मत करो मित्र। हाँ तो जब तुमने मुझसे कहा कि चपत मारने की कीमत चुकानी होती है तब मैंने समझा मित्र कि तुम मुझसे रुपए मांगोगे और तुम्हारा मनी बैग मानो मेरी उस शुद्धता पर चपत मारने के लिए तुम्हारी जेब में रखा हुआ था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। मुझे क्षमा कर दो।
2: क्या खूब मनी बैग की चपत तो तुमने अपने आप को मार ली। मैं ऐसा सौदा नहीं करूंगा। तुम्हारी चपत पर मेरी वसूली अभी उधार है।
3: कमल के पास अब इस स्नेह और अभिमान में डूबे हुए विनोद का जवाब देने को शब्द न थे। उसने कहा,
1: मित्र उस चपत मारने के अपराध में अपना आत्मसमर्पण दंड स्वरूप हासिल करता हूं। मित्र
2: ना, क्या तुम ही सब कुछ देते चले जाओगे? लोगे कुछ नहीं? चपत तुमने दी, उसके बदले में मैं दूंगा और लोगे तुम।
1: क्या दोगे तुम? बोलो बोलो क्या दोगे, क्या दोगे बोलो।
2: जो मेरे मालिक की मर्जी होगी।
1: तुम्हारा मालिक कौन है? तुम्हारा मालिक बोलो, कौन है तुम्हारा मालिक?
2: फिर भूल गए? मेरे संप्रदाय में प्रश्नों का उत्तर देना मना जो है।
1: बाबू कमल मेरे अपराध के लिए तुम क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ बाबू, बाबू चुप हो जाओ।
3: इतना कहते हुए बब्बू की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसने कमल का बायां हाथ अपने दाहिने हाथ से अपनी ओर खींचकर कमल से पूछा,
2: कमल।
1: हाँ मित्र।
2: क्या तुम आगरा गए थे?
1: आगरा?
2: हाँ। क्यों?
1: क्यों क्यों का कारण मत पूछो बब्बू, इसका जवाब मेरे पास नहीं है।
2: किंतु मेरे पास है।
1: क्या?

0: रात के 2 बज चुके थे। 2 युवक एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे को इस तरह देख रहे थे मानो उन्होंने इससे प्यारी चीज कभी ना देखी हो। घर में सन्नाटा था, माँ बीवी बहन सब सो चुके थे।
1: मैं आकर गया था, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे पास है, क्या है बताओ, क्या है? बोलो बब्बू, बोलो क्या है?
2: बब्बू ने अंग्रेजी चुट्टे की शक्ल की वो चीज जिसे कमल ने उसके कोट में टटोला था निकाल कर बता दी।
1: ये क्या बब्बू? पिस्तौल?
3: हाँ पिस्तौल।
1: बब्बू तुमने ये पिस्तौल मेरे सामने क्यों निकाली? दूर हटाओ इसे, पिस्तौल दूर हटा, पिस्तौल दूर हटा। मिर्च
4: Oh,

0: दूसरे दिन दैनिक विश्वमित्र में छपा,
1: आज की ताजा खबर, एक षड्यंत्रकारी ने चांदा षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह कमल नारायण दुबे के घर में घुसकर 2 बजे रात उन्हें पिस्तौल से मार डाला। हत्यारे ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है।

अभी आपने सुना संग्रहालय से के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का पहला भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजे ही मीडियम वेव पर अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन में परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मालीन स्वामी सत्य मित्रानंद गिरिजी महाराज के प्राकट्य महोत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन कालगणना की नगरी है, विज्ञान और आध्यात्म की धरती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 7,500 मेधावी छात्रों को ई स्कूटी प्रदान की। सतना जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 22 सितंबर तक प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पावन पर्व राधा अष्टमी की प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2 सड़क हादसों में 12 लोगों की मृत्यु हो गई और एशियाई खेलों में मौजूदा चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम कल जापान के निशिन में सेमीफाइनल में बांग्लादेश के साथ खेलेगी। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान है।

दोस्तों, आज के ये वाणी कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ ऐसे विषयों की जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़े हुए हैं। जानेंगे एक छोटी सी आदत कैसे प्रदूषण को कम करने, ईंधन बचाने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद कर सकती है। एक नई तकनीक भारत के भविष्य को किस तरह बदल सकती है और हमारे युवाओं के लिए इसमें क्या अवसर है, ये जानना भी काफी रोचक होगा। साथ ही बात होगी हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और विरासत की। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। बढ़ती जनसंख्या और वाहनों की संख्या के कारण वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। कारों और अन्य वाहनों से निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। इस समस्या को कम करने के लिए कारपूलिंग एक अच्छा और सरल उपाय है। कारपूलिंग का मतलब है एक ही दिशा में जाने वाले लोग अलग अलग कारों से जाने के बजाय एक ही कार में यात्रा करें। जैसे अगर चार लोग एक ही स्कूल, ऑफिस या किसी और जगह पर जा रहे हैं तो वो चार लोग चार अलग अलग कारों का उपयोग करने के बजाय एक कार से जा सकते हैं। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी। साथ ही कार पूलिंग से वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि कम वाहन चलने से धुआं और हानिकारक गैसें भी कम निकलती हैं। इसके साथ ही यातायात की समस्या और सड़क पर लगने वाला जाम भी कम हो सकता है। जब ट्रैफिक कम होगा तो लोगों का समय और ईंधन दोनों बचेंगे। कार पूलिंग आर्थिक रूप से भी लाभदायक है। साथ यात्रा करने वाले लोग पेट्रोल या डीजल का खर्च आपस में बांट सकते हैं। इससे यात्रा का खर्च कम हो जाता है। साथ ही ईंधन की बचत होने से प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण होता है। हम सभी को अपने दैनिक जीवन में कार पूलिंग को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। विशेष रूप से स्कूल, कॉलेज और कार्यालय जाने वाले लोग इस व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। अगर ज्यादा लोग कार पूलिंग अपनाएं तो सड़कों पर भीड़ कम होगी और हमारा वातावरण ज्यादा स्वच्छ बनेगा, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, कार पूलिंग एक छोटा सा कदम है, लेकिन अगर हम सभी इसे अपनाएं तो इसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए हमें जहां तक संभव हो कार पूलिंग का उपयोग करना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। और दोस्तों, अब आपको सुनवाती है तोची रैना की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

दोस्तों, आज का युग तकनीक का युग है। कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अब क्वांटम कंप्यूटिंग को भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीक माना जा रहा है। भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी दिशा में आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत की पहली क्वांटम वैली विकसित की जा रही है। क्वांटम कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर से अलग तरीके से काम करते हैं। ये बहुत जटिल समस्याओं को हल करने में भविष्य में काफी मदद कर सकते हैं। इनका उपयोग स्वास्थ्य, दवाइयों की खोज, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष रक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। दोस्तों, अमरावती क्वांटम वैली का उद्देश्य एक ऐसा केंद्र बनाना है जहां वैज्ञानिक, विद्यार्थी, कंपनियां, शोध संस्थान मिलकर क्वांटम तकनीक पर काम कर सके। इससे नई तकनीकों और नए स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस परियोजना में सरकार के साथ बड़ी तकनीकी कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं।

आईबीएम और टीसीएस जैसी कंपनियां क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए सहयोग कर रही हैं। आईबीएम द्वारा अमरावती के क्वांटम वैली टेक पार्क में 156 क्यूबिट क्वांटम सिस्टम लगाने की योजना भी विकसित की गई है। क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाले समय में हमारे जीवन को कई तरह से बदल सकती है। इससे मौसम और जलवायु से जुड़ी जटिल समस्याओं को समझने, नई दवाइयां विकसित करने और सुरक्षित संचार व्यवस्था बनाने में मदद मिल सकती है। इस क्षेत्र में युवाओं के लिए सीखने, शोध करने और नई तकनीक विकसित करने के भी कई अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, भारत सरकार का नेशनल क्वांटम मिशन भी इस क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और नई तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है। इसका लक्ष्य भारत को क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल करना है। अमरावती की क्वांटम वैली भारत के तकनीकी भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत में नई खोजों, रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा और हमारा देश क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ेगा। और अब आपको सुनवाते हैं सुजैन डी मेलो की आवाज में फिल्म किडनैप से ये गीत।

0: दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के बारे में। हमारे साथ अर्पित समाधियां हैं जो बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। उनके साथ कुछ दूसरे ट्रेनर्स भी जुड़े हुए हैं जो अलग अलग मार्शल आर्ट सिखाते हैं। हेलो अर्पित।
1: हेलो मनाली।
0: सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या होता है।
1: सेल्फ डिफेंस का मतलब सिर्फ किसी से लड़ना नहीं है, इसका मतलब है कि अगर कभी हमारे सामने कोई खतरा या परेशानी आ जाए तो हम घबराएं नहीं, समझदारी से काम लें और खुद को सुरक्षित रख सकें।
0: तो अर्पित, बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना क्यों जरूरी है?
1: बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। वे मुश्किल समय में घबराने के बजाय शांत रहना और सही फैसले लेना सीखते हैं। इसके साथ ही उनमें अनुशासन और अपने आसपास की चीजों को लेकर जागरूकता भी बढ़ती है।
0: ये तो बहुत अच्छी चीज है। अर्पित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सेल्फ डिफेंस में कौन कौन सी मार्शल आर्ट सिखाई जाती हैं?
1: इसमें कई तरह की मार्शल आर्ट्स आती हैं, जैसे कराटे, ताइक्वांडो, जूडो, जुजुत्सु, कुंफू, बॉक्सिंग और कलारीपट्टू। इनमें बच्चों का शरीर मजबूत होता है, उनकी फुर्ती बढ़ती है और वे अपने बचाव के तरीके सीखते हैं।
0: तो क्या अलग अलग मार्शल आर्ट्स में अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं?
1: जी हाँ, जैसे कराटे और ताइक्वांडो में शरीर की फुर्ती और किक पंच जैसी टेक्निक सिखाई जाती है। जूडो और जुजुत्सु में पकड़ से बचने और शरीर का संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता है। वहीं कुंफू और कलारीपट्टू जैसी कला के बारे में भी बताया जाता है। बच्चों को डिफरेंट फिजिकल टेक्निक से इंट्रोड्यूस कराती है।
0: तो अर्पित, अगर बच्चा किसी परेशानी या फिर खतरे में फंस जाए तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले उसे घबराना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वह वहां से सुरक्षित जगह पर चला जाए और किसी भरोसेमंद व्यक्ति, माता पिता, शिक्षक से मदद ले। जरूरत पड़ने पर जोर से मदद के लिए आवाज भी लगानी चाहिए। सेल्फ डिफेंस का सबसे जरूरी नियम है कि यहाँ तक हो सके लड़ाई से बचें और खुद को सुरक्षित रखें।
0: ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही अर्पित। तो आप बच्चों और उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि सेल्फ डिफेंस जरूर सीखें, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए नहीं और ना कि लड़ाई करने के लिए यूज करें। माता पिता भी बच्चों को खेल, व्यायाम, सेल्फ डिफेंस जैसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें। इससे बच्चे स्वस्थ, आत्मविश्वासी और जागरूक बनेंगे।
0: थैंक यू अर्पित, आपने हमारे लिसनर्स को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है।
1: थैंक यू सो मच मनाली, आपके जरिए हमारी बात बहुत से लोगों तक पहुंचेगी।
0: दोस्तों, अभी आप अर्पित समाधिया को सुन पा रहे थे जिन्होंने आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया। आपने जाना कि आत्मरक्षा केवल शारीरिक ताकत नहीं बल्कि आत्मविश्वास और जागरूकता भी है। इसलिए खुद भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं राशिद अली और वसुंधरा दास की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

दोस्तों, भारत में बहुत सारी ऐतिहासिक जगहें हैं जो हमारे पुराने इतिहास और संस्कृति के बारे में बताते हैं। ऐसी ही एक खास जगह है कालिंजर किला। ये किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। कालिंजर किला बहुत पुराना है। इसका इतिहास चंदेल राजाओं से जुड़ा हुआ है। ये किला पहाड़ी के ऊपर बना होने के कारण बहुत मजबूत और सुरक्षित था। पुराने समय में राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसे ऊंचे स्थानों पर ही किले बनवाते थे। इस किले की सबसे खास बात यह है कि यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर भी है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव की पूजा नीलकंठ के रूप में की जाती है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विष पी लिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। कालिंजर किले में हमें पुराने मंदिर, बड़ी बड़ी दीवारें, तालाब, मूर्तियां और पत्थरों पर बनी कई कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। ये सभी चीजें हमें उस समय के जीवन और कला के बारे में बताती हैं। किले में कई ऐसे स्थान भी हैं जिनसे हमें पुराने समय की वास्तुकला और लोगों की कला के बारे में जानकारी मिलती है। किले की पहाड़ी से आसपास का प्राकृतिक दृश्य भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है और ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से दूर दूर तक के क्षेत्र दिखाई देते हैं। इसलिए ये जगह इतिहास के साथ साथ घूमने और प्रकृति को देखने के लिए भी बहुत अच्छी है। यहाँ आने वाले लोगों को हमारे देश के पुराने इतिहास और संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलता है। कालिंजर किला हमारे देश की पुरानी विरासत को समझने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी अच्छी कला और मजबूत इमारतें बनाई थी। लेकिन दोस्तों, जब भी आप ऐसी जगहों पर जाएं, तो याद रखें, हमें ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, दीवारों और मूर्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, हमें अपने इतिहास को जानना और अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान और यही हमारी विरासत है। वक्त हो चला है हमारे आज के अगले खूबसूरत स्तंभ इंद्रधनुष का, तो आपको सुनवाते हैं ये गीत शान और उस्ताद सुल्तान खान की खूबसूरत आवाज में।

दोस्तों, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा ईमेल एड्रेस। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए आपके रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत के संविधान की प्रस्तावना।
1: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत के संविधान की प्रस्तावना।

पड़ोसन। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। इसे लिखा था राजेंद्र किशन ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के गाए कुछ चुनिंदा गीत। बुढ़ा मिल गया इस फिल्म का गीत आप सुनिए किशोर कुमार की ही आवाज में। गीत लिखा है मजरू ने और संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: बुढ़ा मिल गया। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के ही गाए हुए कुछ चुनिंदा गीत। तीन देवियां, इस फिल्म का गीत आप सुनिए किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। इसे लिखा है मजरू ने और संगीत ST बर्मन का।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

0: आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आप सुनिए साहिर का लिखा गीत। आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की है और फिल्म है दीवार।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के गाए कुछ चुनिंदा गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए दाग फिल्म का गीत किशोर कुमार की ही आवाज़ में। गीत लिखा है साहिर ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

किशोर कुमार के गाए फिल्म दाग के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, समय है अंतराल का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। सतना जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में उज्जैन में आयोजित युवा धर्म संसद का आज समापन हो गया। प्रदेश में अब तक 74,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से कल जारी जिलावार आंकड़ों के अनुसार भारत में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। देश के 57.8% जिलों में महिला श्रम बल भागीदारी दर 40% या उससे ज्यादा दर्ज की गई है। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में कल देर रात एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर सहित राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना आनंद बख्शी का लिखा गीत। आवाजें थी सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन की। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म थ्री इडियट्स से। आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की है। गीत लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत शांतनु मोइत्रा का।

0: इकोनॉमिक अभाव था। पर यदि हम 1970 की बात करें, 1970 में जब नक्सलिज्म अपने पैर पसार रहा था,
1: जी
0: तब अगर हम कोई भी दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लें जो आसपास के थे,
1: जी
0: जहां
1: जी
0: पर जंगल थे और जहां जंगल नहीं थे, तो आप देखेंगे कि कई बिहार के ऐसे क्षेत्र थे। मैं बिहार का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहां से बड़ा स्टार्क रियलिटी समझ में आती है कि
1: जी जी जी
0: नक्सलिज्म जो वेस्ट बंगाल और बिहार की बॉर्डर से जन्मा था,
1: जी
0: तो क्या
1: जी
0: कारण रहे होंगे। तो
1: बिल्कुल
0: उसमें देखने में आया कि सिर्फ शिक्षा और इकोनॉमिक अगर डेवलपमेंट नहीं है तो ये कभी कारण रहे ही नहीं,
1: जी
0: बल्कि नक्सलिज्म वहां पर पनपा जहां पर नक्सलियों को ज्योग्राफिकल एडवांटेज था। चाहे आप नक्सलबाड़ी वेस्ट बंगाल की बात कर लें, या उसके बाद आंध्र प्रदेश और आज के वर्तमान के आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात कर लें, या वहां से नॉर्थ आते वक्त बस्तर, अबूझमाड़ और छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र रहे हैं,
1: जी
0: या आप उन क्षेत्रों की बात कर लें, उन सभी जगह पे नक्सलिज्म बिकॉज ज्योग्राफिकल एडवांटेज था नक्सलियों को कि वहां पर फोर्सेस का मूवमेंट कम हुआ करता था, वहां लोगों का आवागमन कम था, वहां सड़कें नहीं थी, शायद दूर दराज का क्षेत्र था तो कम्युनिकेशन के उतने अच्छे साधन नहीं थे। तो नक्सलियों ने चुन चुन के उन्हीं जगहों को जो उनको सूटेबल रही उनको उन्होंने चुना। तो
1: जी
0: बालाघाट में भी या मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, 1990 से जब ये आया था तो हमारी करीबन छत्तीसगढ़ के साथ 800 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो लगती है।
1: जी
0: 2000 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग राज्य बने, उसके
1: जी
0: बाद भी आज वर्तमान में करीबन 800 किलोमीटर से ज्यादा की ऐसा पोरस जंगल वाला क्षेत्र है जो दोनों स्टेट्स के बीच में रहता है। वहीं तो इनमें से करीबन 250 किलोमीटर से ज्यादा का ऐसा जंगल वाला क्षेत्र था बॉर्डर का, जहां पर नक्सली फ्री मूवमेंट करते थे। तो मुझे
1: जी
0: लगता है सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि आप इतने बड़े जंगल क्षेत्र में अगर 1,000 स्क्वायर किलोमीटर में आपको बोला जाए कि आप कुछ चुनिंदा नक्सलियों को जो कभी अपना रूप धारण करके बदल के चलेंगे, कभी गांव वाले बन के चलेंगे, कभी आपके लिए आईडी लगा के रखेंगे, पुलिस फोर्सेस का मूवमेंट हो रहा है तो उसमें ब्लास्ट कर देंगे, या रात में गांव वालों को मुखबिर बना के लेके जाएंगे और उनको फिर जंगल में मार के फेंक देंगे, तो
1: जी
0: जो
1: जी
0: ओवरऑल उन्होंने एक एटमोसफियर बनाया था, इस एटमोसफियर से जीतना और लोगों के मन में विश्वास पैदा करना कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार जो है वो
1: जी
0: उनके लिए है। नक्सलियों
1: बिल्कुल
0: ने एक बहुत
1: बिल्कुल
0: बड़ा नरेटिव ये बना रखा था कि जो पूरा सरकारी तंत्र है
1: जी
0: वो सरकारी तंत्र आदिवासियों का, पिछड़ों का शोषण करने के लिए बना है। ये नरेटिव जो नक्सली बात करते थे कि जल जंगल जमीन की लड़ाई है,
1: जी जी जी
0: कि जो पूरा प्रशासनिक तंत्र है या जो पूरा राजनीतिक तंत्र है ये आपकी जमीन छीनना चाहते हैं या
1: जी
0: ये आपके जंगलों को काटना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आम जनता के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको
1: जी
0: ब्रिजेस से भरा जाए। और पिछले 2 साल से लगातार हम लोग इस चीज पे काम कर रहे थे कि भाई आम जनता को ये समझ में आए कि क्या उनके लिए सही है।
1: जी जी
0: यदि आप व्यक्ति को ये बता देंगे कि भाई उस सही और गलत क्या है तो फैसला वो खुद लेते हैं। और
1: बिल्कुल
0: मैं
1: सही
0: आपको बालाघाट का एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे काफी समय हो गया है यहाँ
1: जी
0: पर, एक समय अब हमने ऐसा देखा था जब लोगों को हम पे विश्वास होने लगा, लोगों को पता चला कि भाई क्या चीजें हैं जो उन्हीं के लिए हो रही हैं,
1: बिल्कुल
0: तो लोगों ने खुद नक्सलियों को बोला कि भाई हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, आप हमारे गांव आना छोड़ दो, आपको यदि राशन पानी को चाहिए तो हम लोग नहीं देंगे। पहले कई बार डर के मारे ऐसी स्थिति थी कि नक्सलियों को खुद गांव वाले डर के मारे राशन पानी, खाना, अनाज, पैसा सब कुछ देते थे। पर एक समय ऐसा आया, अभी हम लोगों ने पिछले 6-7-8 महीने से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि जब भी हमें इंट आती थी तो गांव वाले स्पष्ट कहते थे कि भाई हमें आपके इस आंदोलन से, आपके सशस्त्र आंदोलन से, असंवैधानिक आंदोलन से हमारा क्या फायदा हुआ।
1: सही बात है सर
0: तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि जब आपने ट्रस्ट डेफिसिट को हम भर पाए, इनके नरेटिव को काउंटर कर पाए, इनकी फाइनेंशियल बैकबोन जो थी कि ये
1: जी
0: जो तेंदुपत्ता ठेकेदारों से, रोड कंस्ट्रक्शन
1: जी
0: ठेकेदारों से, टीचर्स से, इन सबसे जो ये अवैध वसूली करते थे,
1: जी जी
0: इसको
1: जी
0: हम लोग रोक पाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए था उसको इतनी स्पीड से हम बना पाए। मैं बालाघाट की आपको बात बताऊं तो बालाघाट में अकेले सिर्फ पिछले 2 सालों में 350 किलोमीटर से ज्यादा अधिक की हमने इंटीरियर रोड्स बनाई जो कि पहले कभी संभव नहीं था।
1: जी
0: और मुझे लगता है कि जब हमने इस होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द एजेंसी अप्रोच से काम किया, जो पहले जो चुनौतियां थी नक्सलिज्म को डील करने के लिए वो काफी कम हो पाई, क्योंकि हमें
1: जी
0: समझना पड़ेगा कि नक्सलिज्म कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं थी,
1: जी जी जी
0: नक्सलिज्म एक ऐसी चुनौती थी जिसका नैरेटिव ही डेवलपमेंटल डेफिसिट या सो कॉल्ड डेवलपमेंटल डेफिसिट से आया था। डेवलपमेंट पहुंच तो रहा था पर
1: जी
0: ऐसा एक परिदृश्य बनाया जा रहा था कि लोगों को लगे कि भाई आपका विकास नहीं हो रहा है
1: बिल्कुल
0: और आप विकास से अछूते हैं और आपको विकास की धारा से जोड़ने के लिए ही नक्सली खड़े हुए हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: व्यक्तियों के मन में या गांव वालों के मन में, आदिवासियों के मन में, पिछड़े लोगों के मन में ये एक भाव जताना कि भाई हम आपके उत्थान के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं,
1: जी जी
0: तो काफी

0: लंबे समय से नक्सली जो हैं वो इस विचारधारा पे या इस विचारधारा को प्रोपोगेट करने में सफल रहे थे। तो मुझे लगता है कि जैसे धीरे धीरे ये चीजें टूटी, लोगों को समझ में आया कि सरकारी स्कीम्स उन तक पहुंची, चाहे आप रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्कूल्स की बात करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, टेलीकॉम कनेक्टिविटी की बात करें। हम लोग के यहाँ कोई स्कीम चलते हैं बेसिकली, जैसे हम लोग एकल सुविधा केंद्र चलाते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: बेसिकली हमने सारी प्रकार की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको सिंगल विंडो पुलिस थाने के माध्यम से दी गई। तो लोगों को विश्वास हुआ कि भाई जिनको वो पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को, जिनको वो अपना ये समझते थे कि ये हमारा दोहन या शोषण करते हैं, जिनको नक्सली बोलते थे कि भाई ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपका शोषण करने के लिए है,
1: जी जी
0: यदि वही व्यक्ति हमें सरकारी स्कीम्स का लाभ दिला रहे हैं,
1: वाकई
0: आगे बढ़ के हमारी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं,
1: जी
0: हमारे मेडिकल इलाज की व्यवस्था करा रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, तो फिर लोगों के मन में भी ये भाव जागा कि भाई नक्सली जो है, जो इनकी विचारधारा है, ये विकास विरोधी विचारधारा है। तो मुझे
1: बिल्कुल
0: लगता है कि इसके कारण जो आप बोल रहे थे कि शिक्षा, रोजगार और बाकी जो अन्य डेवलपमेंटल वर्क है, ये बहुत फाउंडेशनल चीजें थी, और जब इन पे इम्पिटस आया, इन पे फोकस आया, तो मुझे लगता है इसलिए नक्सली ऑटोमेटिकली नक्सलिज्म की विचारधारा पीछे चली गई।
1: बिल्कुल सही कहा सर आपने। वाकई ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। सर जैसा कि आपने बताया, ये 35 सालों का संघर्ष, ये जो पूरी प्रक्रिया रही है, इसमें आपको स्थानीय जनता का किस तरह से सहयोग मिला?
0: देखिए, मैं एक सबसे बड़ी नक्सलिज्म को लेके या कोई ऐसी विचारधारा वाली लड़ाई होती है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो जवानों के अलावा सोल्जर्स रहते हैं, वो हमारे सिविलियंस रहते हैं। ना केवल वो हमारे आंख नाक कान रहते हैं, पर यदि गांव में भी कोई चीजों की समस्या है, तो हमें सिविलियंस ही, हमारे कोटवार ही, हमारे गांव के जनप्रतिनिधि, हमारे गांव के सरपंच, हमारे गांव के पंच, हमारे गांव के सचिव, यही लोग हमें सबसे पहले इत्तला करते हैं
1: जी
0: कि गांव में किस प्रकार की समस्याएं हैं, कि कैसे उन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमने यहाँ के क्षेत्रों में देखी कि अधिकतर गांव की समस्याओं का निराकरण सबसे बेहतर जो जानते हैं वो गांव वाले जानते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: उनमें एक ऐतिहासिक नॉलेज रहती है, हिस्टोरिकल नॉलेज रहती है। यदि किसी गांव में पानी की समस्या है, आप गांव वालों के जाके आप उनसे संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे एक बार पूछेंगे, तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर विकल्प मुझे लगता है कि जो इस संवाद से निकलेगा, यही चीज हमारी एंटी नक्सल ऑपरेशंस की एक रीढ़ थी।
1: जी जी
0: हमने करीबन 800 से ज्यादा इन गांवों में जाके प्रशासनिक कैंप लगाए, जिसमें हर प्रशासन का आदमी मौजूद रहते थे। उसमें पुलिस अधीक्षक भी थे, जिला कलेक्टर भी रहते थे,
1: जी
0: DFO रहते थे, वहां के आपके सरपंच रहते थे, आपके सचिव रहते थे, फॉरेस्ट के रेंज ऑफिसर रहते थे, थाने के थाना प्रभारी रहते थे, तहसीलदार साहब रहते थे, पटवारी रहते थे। तो हर प्रकार की समस्या जो किसी व्यक्ति को हो सकती है, मेडिकल के डॉक्टर्स रहते थे, CMHO, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स रहते थे। हम लोग की यही कोशिश थी कि यदि कोई व्यक्ति दूरी के कारण, संसाधनों के अभाव के कारण, हो सकता है कम जानकारी के कारण, यदि एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं आ पा रहा, तो
1: जी
0: यदि हम प्रशासन को उनके द्वार तक ले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो मूल भाव है गुड गवर्नेंस का,
1: जी
0: वो पूरा हो जाएगा। तो इन सभी चीजों में गांव वालों ने ना केवल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन्होंने हमें खुल के अपनी समस्याएं बताई और उसके सोल्यूशंस भी बताए।
1: जी
0: उन्होंने खुद फैसिलिटेट किया कि हम उनके गांव की किसी समस्या को कैसे बेहतर तरीके से रिजोल्व करें। तो मुझे लगता है कि जो आपने बोला कि गांव वाले और हमारे समाज के जो लोग हैं,
1: जी
0: ये
1: जी
0: लोग सबसे महत्वपूर्ण अंग थे। मैं आज भी मानता हूं कि ये एक सामाजिक लड़ाई थी,
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: एक जनसंघर्ष था। लोगों ने खुद इस विचारधारा को हराया है। अभी तक इस लड़ाई को ये माना जा रहा था कि ये पुलिस वर्सेस नक्सलियों की लड़ाई है,
1: जी
0: पर हम ओवरऑल, जो मेरा अनुभव रहा है कि अगर आप होल ऑफ द एजेंसी, होल ऑफ द सोसाइटी की बात करें, तो ये
1: जी
0: सोसाइटी की लड़ाई थी कुछ ऐसे लोगों से जो आर्म्ड तरीके से, कौन असंवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के माध्यम से अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे थे। तो
1: जी
0: ये जो पूरी लड़ाई जीती है, मुझे लगता है हमारे ग्रामीणों ने जीती है, हमारे ट्राइबल्स ने जीती है,
1: वाकई
0: हमारे उन गांव के लोगों ने जीती है, जिन्होंने रात दिन, आप विचार करके देखिए कि किसी गांव में जब लोगों को ये डर रहे कि नक्सली हमें रात में आ सकते हैं, दिन में आ सकते हैं, अवैध हथियारों के बेसिस पे हमें मार सकते हैं, उसके बाद भी यदि हमारे गांव वाले ये बोल रहे हैं कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, आप गलत कर रहे हो, तो इतने इतने दिलदारी की बात, इतने वीरता की बात जो गांव वालों ने दिखाई है, मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू था पूरी लड़ाई का।
1: बिल्कुल सर, आप गांव वालों की बात कर रहे हैं और आपने बहुत सारी चीजें वहां पर देखी होंगी। मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को कोई एक ऐसा किस्सा शेयर करें जो हम सबको प्रेरणा दे।
0: वैसे तो बहुत सारे किस्से हुए हैं, पर एक
1: जी
0: बड़ा अच्छा किस्सा मुझे याद आता है, और
1: जी
0: जिससे
1: जी
0: मुझे पता चलता है कि किस प्रकार से ये विचारधारा की ज्यादा बड़ी लड़ाई थी।
1: वाकई
0: हमारे यहाँ पर गांव में ही क्या बोलते हैं कि कुछ नक्सली जो बालाघाट के मूल निवासी थे,
1: जी
0: वो रहते थे, और

0: उनके गांव थे, तो उसमें एक दीपक करके हैं जो काफी बड़े सीनियर काडर में थे, 1995 के बाद से वो नक्सलिज्म में जुड़े हुए थे। हम उनके जब परिवार में गए, उनके परिवार से मिले, पूछा, तो उन्होंने बताया कि सब सरकार ने तो हमें प्रधानमंत्री आवास भी दिया है, हमें सरकार ने आयुष्मान कार्ड भी बना के दिया है,
1: जी
0: और बोले कि हम तो खुद चाहते हैं कि दीपक आत्मसमर्पण करे और अच्छे से आके गांव में एक सम्मानजनक जिंदगी जिए।
1: जी
0: बोले कि पिछले 30 साल से वो जंगलों में घूम रहे हैं, ना वो अपने गांव के लिए कुछ कर पाए, ना अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए, ना अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए। तो बोले जब भी वो हमें मिलेंगे या हमसे संपर्क करेंगे, तो हम भी उनको ये बोलेंगे कि सरकार जब आपको घर दे रही है, सरकार आपके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल दे रही है, आपको सारी तरह की शिक्षा की व्यवस्था करके दे रही है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रही है, तो फिर किस सरकार को आप हटाने की बात करते हैं।
1: जी जी जी
0: और मुझे लगता है कि गांव में एक बड़ी अच्छी चीज जो मुझे समझ में आई, जब हम लोग गांव में ये प्रशासनिक कैंप ले रहे थे,
1: जी जी
0: तो हमारे यहाँ पर एक नक्सली थी संगीता, उनका गांव है यहाँ पर राशि मेटा करके है, जो कि करीबन पिछले 3 दशक से अति नक्सल प्रभावित गांव था, जिसमें
1: जी
0: नक्सलियों का बार बार आना, लोगों को वहां पर हत्याएं करना, मुखबिर बताना, काफी सारी चीजों की घटनाएं वहां पर हुई थी। उस कैंप में जब हम लोगों ने बैठकें ली, तो वहां पर जब हम आम जन से चर्चा कर रहे थे, जन चर्चा में, तो
1: जी
0: उसमें लोगों ने, उसमें से कई लोगों ने, कई वहां के जो बुद्धिजीवी थे, बुजुर्ग लोग थे गाँव के, उन
1: जी
0: लोगों ने एक बड़ी अच्छी चीज कही। बोले कि हम तो साहब अब नक्सलियों से ये कहेंगे कि अगर आपको हमारे गांव का विकास करना है, तो आप चुनाव लड़ो और सरपंच बनो। अगर आप हमारे गांव का विकास करना चाहते हो, बोले हम तो देख रहे हैं कि हमारा विकास तो हमारे सरपंच कर रहे हैं, हमारे विकास के लिए तो पुलिस आ रही है, हमारे विकास के लिए तो रेवेन्यू प्रशासन आ रहा है। तो अगर नक्सली भी चाहते हैं, जो हमें बोलते हैं वो गाँव में मीटिंग लेके, कि भाई हम आपका विकास करना चाहते हैं, तो बोले हम अगली बार आएंगे तो हम उनको यही बोलेंगे कि आप अगर हमारा विकास करना चाहते हैं, तो आप चुनाव ही सरपंच बनिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक मतलब था कि गांव वाले की भाषा में ये बड़ा हमें छोटी चीज लग सकती है, पर ये बताता है कि कैसे हमारी जो डेमोक्रेसी है
1: जी
0: या
1: जी
0: हमारी जो संवैधानिक कार्य प्रणाली है, वो गांव
1: बिल्कुल
0: के हर आदमी तक फैली हुई है। हो
1: बिल्कुल
0: सकता है कि वो आदमी आपकी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से कॉलेज नहीं पढ़ा हो, वो तीसरी चौथी पांचवी पढ़ा हो,
1: जी
0: वो
1: जी
0: गांव में आज स्याना हो, पर उसके अंदर जो ये मूल भावना है
1: जी
0: कि संवैधानिक तरीके से चुन के जन प्रतिनिधित्व करके यदि आप
1: जी
0: बदलाव करना चाहते हैं और वो करें, तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण लेसन्स थे जो हमें लोगों के साथ रहकर, उनके साथ समझ के मिले।
1: वाकई बहुत प्रेरणादायक है सर।
0: यदि हम 2047 में एक विकसित भारत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आज हम लोग अगर हमारे बच्चों को शिक्षा से जोड़ पाए, हमारे नवयुवकों को रोजगार से जोड़ पाए, तो मुझे लगता है कि इस तरह की समस्या, नक्सलिज्म जैसी समस्या या विचारधारा कभी भी पूरे देश में वापस नहीं पनप पाएगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही है आपने। ये हम कह सकते हैं जनता और प्रशासन के सामूहिक प्रयास की जीत है कि आज बालाघाट नक्सल मुक्त हो गया है। सर, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
4: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
5: हेलो, नमस्कार दोस्तों, उड़ान कार्यक्रम में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा है आप अपने परिवार के साथ खुश और सुरक्षित होंगे।
6: श्रोताओं, बाल मजदूरी की समस्या से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष या उससे कम हो, वह जीविका के लिए काम करे तो बाल मजदूर कहलाता है। सरकार ने 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया। रोजगार पाने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई। इसी के साथ सरकार नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के रूप में बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। जनवरी 2005 में नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम को 21 विभिन्न भारतीय प्रदेशों के 250 जिलों तक बढ़ाया गया, और माता पिता पर बच्चों की पढ़ाई का बोझ ना पड़े और वे तंगी के कारण उन्हें काम पर ना लगाएं, इसीलिए सरकार ने 8वीं कक्षा तक शिक्षा को अनिवार्य और निशुल्क कर दिया। लेकिन लोगों की गरीबी और बेबसी के आगे ये योजना भी निष्फल साबित हुई। श्रोताओं, हालात इतने खराब हैं कि इन्हें देखकर दिल दहल उठता है। वो नन्हे हाथ जिनमें किताबें और खिलौने होने चाहिए थे, आज कारखानों में पत्थर कूट रहे हैं, भट्टे पर ईंटें बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही नन्हे बच्चों की एक कहानी। वे बच्चे जो अपने बचपन को खोकर दो रोटी पाने की चाहत में दिन रात काम कर रहे हैं।
7: ये कहानी है राजू और रमेश की, जी हाँ, जिन्हें उनके माता पिता ने छोटी सी उम्र में ही भट्टे पर काम में लगा दिया। दोनों बच्चे माता पिता से दूर उन जिम्मेदारियों के बोझ को उठाने के लिए चल पड़े, जिन्हें वो अभी तक समझने के लिए ना तो शारीरिक रूप से तैयार थे और ना ही मानसिक रूप से।
8: जल्दी कर रमेश, देख शाम होने को आई है, मालिक ने देखा तो बहुत मारेगा।
9: हाँ हाँ यार, कर तो रहा हूँ, अभी भी मुझे 100 ईंटें बनानी है। आ, राजू मेरा हाथ।
8: अरे क्या हुआ, दिखा।
9: मेरा हाथ कट गया राजू।
8: अरे बहुत खून बह रहा है, लो दिखा ये पट्टी बांध ले।
7: राजू ने वहीं जमीन पर पड़ा एक कपड़े का मैला कुचैला टुकड़ा लेकर रमेश के हाथ पर बांध दिया।
9: राजू, माँ की बहुत याद आ रही है, अगर माँ होती तो दवा लगाती।
7: राजू और रमेश एक दूसरे के आंसू पोंछते, रूखी सूखी जो मिलती खाकर सो जाते। इन नन्हे हाथों में काम करते करते कभी चोट लग जाती, कभी काम करते करते उनका नाजुक सा शरीर बेहद थक जाता। पर ना तो दुलार करने के लिए माँ थी और ना ही ध्यान रखने के लिए पिता।
10: अबे तुम दोनों निकम्मे, अभी तक काम में लगे हो, ईंटें बने कि नहीं? उन बच्चों को देखो, अभी कुछ ही दिन हुए उन्हें काम पर आए, पर इतनी जल्दी काम करते हैं, और तुम निकम्मे कहीं के।
8: मालिक, रमनुस का हाथ कट गया, गारे में आज फिर कीले पड़ी थी।
10: तो क्या हुआ, अब क्या तुम्हें मिट्टी भी छान कर दूं? काम करना है तो करो, और नहीं तो खिसको यहां से।
9: जी मालिक, बस बस हो गया।
10: ठीक है ठीक है, अब जाओ यहां से और कल समय से आ जाना।
7: दोनों नाजुक से नन्हे बच्चे थक कर सड़क पर ही लगी एक मचान के नीचे सो जाया करते। ना तो पौष्टिक खाना ही नसीब होता और ना ही घर। बारिश, ठंड, धूप, सब कुछ ही तो इन नन्हे फूलों को सहना पड़ता।
8: यार रमेश, अभी भी भूख लग रही है यार।
9: ले राजू, तू मेरी रोटी खा ले।
8: नहीं नहीं, तूने सुबह भी एक ही रोटी खाई थी, तू खा ले।
7: रमेश और राजू दोनों थक कर सो गए। सुबह बच्चों की चहल पहल ने उन्हें जगा दिया।
9: राजू राजू, उठ, सुबह हो गई यार।
8: हाँ अभी उठ रहा हूँ।
9: राजू यार, मेरा एक सपना है कि मैं भी स्कूल जाऊं और पढ़ाई करूं, इन बच्चों की तरह मैं भी गाड़ी से स्कूल जाया करूं।
8: हाँ यार, हमारे गांव में भी बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं, कितना मजा आता होगा ना। रमेश, खाने का डब्बा, नए जूते, सुंदर कपड़े और किताबों से भरा बस्ता।
9: चल चल, जल्दी चल मुंह हाथ धो, काम पर भी तो जाना है।
8: अरे वो बोतल कहाँ गई?
9: अरे भाई, ये तो नाली में ही पड़ी है।
8: हटा, मैं निकालता हूँ।
9: रहने दे भाई, देख कितनी गंदी हो गई है।
8: अरे कैसी बात करता है यार, इतनी मुश्किल से पानी की एक बोतल मिली थी, तू छोड़, धुलकर साफ हो जाएगी।

0: कामों को काम पर रखकर मैंने सबसे बड़ी गलती की है। मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर तुम लोगों को देर से ही आना है तो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं।
1: माफ़ कर दीजिए मालिक, आगे से ऐसा नहीं होगा।
0: आज तुम दोनों 200 ईंटें फालतू बनाओगे।
2: धूर्त मालिक उन मासूमों की मासूमियत का फायदा उठाता। बचपन तो छीन ही चुका था, अब आजादी भी छीनी जा रही थी। यहाँ पर ये दोनों बच्चे सारी बातों से बेखबर थे। आखिर छल कपट जो नहीं था इन मासूमों में।
3: देखा, आज तो काम समय से हो गया।
4: चल जल्दी घर चलते हैं।
3: ये देख रमेश, किसकी किताब।
4: हाँ यार, कितनी सुंदर है, दिखा तो जरा। अरे वाह, कितने प्यारे चित्र बने हैं इस पर।
3: ये देख शेर, भालू और ये देख अंगूर।
4: मुझे तो भूख लगने लगी है यार।
3: यार मालिक के यहाँ से खाना इतना कम क्यों मिलता है।
4: वो मालिक कहता है कि ये तो बच्चे हैं, कहता है बस दो रोटी ही दो इन्हें।
3: चल यार अब चलते हैं, अंधेरा हो रहा है।
4: राजू, और राजू जल्दी उठ, आज बहुत देर हो गई है यार।
3: अरे धूप चढ़ाई, जल्दी कर यार, आज फिर गाली खानी पड़ेगी।
4: अरे तो क्या हुआ यार, अब तो गाली खाने की आदत सी हो गई है, मालिक साथ में दो लात भी मार देगा।
3: ठीक कहता तू।
0: वहीं रुक जाओ, मैंने कल ही कह दिया था देर से आने की जरूरत नहीं है, पर मुझे लगता है तुम्हें समझ आती नहीं।
4: मालिक वो कल बहुत ज्यादा थकान हो गई थी।
3: जी मालिक, वो कल फालतू ईंट भी बनाई थी ना, इसलिए बस लेट तो ही नींद आ गई।
0: अब मन भर के सोना बच्चों, भागो यहाँ से।
4: नहीं मालिक, माफ कर दीजिए मालिक।
3: हाँ मालिक,
4: काम से मत निकालिए, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हाँ, मालिक
3: अब से ऐसा नहीं होगा मालिक।
0: ठीक है, आज तो मैं तुम्हें काम करने दे रहा हूँ, पर अगर आगे से ये सिलसिला जारी नहीं होना चाहिए, समझे।
3: हाँ हाँ जी मालिक।
0: लेकिन आज फिर ईंटें फालतू बनानी पड़ेंगी।
3: हाँ हाँ जी मालिक।
4: जी जरूर मालिक। चल राजू ईंटें बनाते हैं।
3: हाँ, मालिक का तो फुद्दू बना दिया।
4: सही कह रहा।
2: दोनों बच्चे हंसते हुए ईंटें बनाने लगे। खुशी ऐसी थी मानो जग जीत लिया हो। वे मासूम कहाँ जानते थे कि मालिक कितना चालाक है। श्रोताओं, आज भी हजारों राजू और रमेश ऐसे चालाक लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं, और न जाने कितनी मुस्कुराहटें दब कर दफन हो चुकी हैं कारखानों की भट्टियों में।

0: तो श्रोताओं आइए जानते हैं कुछ ऐसे सवाल और उनके जवाबों के बारे में जिन्हें लेकर लोगों में आज भी भ्रम बना हुआ है।
1: क्या बच्चों के भी अधिकार होते हैं?
0: जी हाँ बिल्कुल, बच्चों को शिक्षा का मूलभूत अधिकार प्राप्त है। इसके तहत देश का हर बच्चा मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य है।
1: क्या बाल मजदूरी करवाने वाले की शिकायत दर्ज की जा सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी घर, होटल, दुकान, ढाबा, कंस्ट्रक्शन साइट आदि में 14 वर्ष की आयु तक का कोई बच्चा काम करता नजर आए तो आप नियोक्ता की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
1: अच्छा बताइए, किन किन रूपों में बाल श्रम होता है?
0: बाल श्रम बहुत से रूपों में होता है। बाल मजदूर वे बच्चे जो कारखाने, कार्यशालाओं, प्रतिष्ठानों, खानों और घरेलू श्रम जैसे सेवा क्षेत्र में मजदूरी या बिना मजदूरी के काम कर रहे हैं, बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। गली मोहल्ले के बच्चे, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, अखबार और फेरी लगाने वाले बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे, बंधुआ बच्चे, वे बच्चे जिन्हें या तो उनके माता पिता ने पैसों की खातिर गिरवी रखा है या जो कर्ज को चुकाने के लिए काम कर रहे हैं। वर्किंग चिल्ड्रन, वे बच्चे जो कृषि और घर में गृहस्थी के काम

0: में पारिवारिक श्रम का हिस्सा है। यौन शोषण के लिए इस्तेमाल किए गए बच्चे, हजारों बालिक बच्चे और नाबालिक लड़कियां यौन शोषण की पकड़ में हैं। घरेलू गतिविधियों में लगे बच्चे, घरेलू सहायता के रूप में काम कर रहे बच्चे, इनमें लड़कियों का शोषण सबसे ज्यादा होता है। बच्चे छोटे भाई बहनों की देखभाल, खाना पकाने, साफ सफाई करने, ऐसे अन्य घरेलू गतिविधियों में लगे हुए हैं।
1: क्या बाल मजदूरी से रोग भी होते हैं? अगर होते हैं तो वो कौन से रोग हैं?
0: जी हाँ, बिल्कुल, बाल मजदूरी से बहुत से रोग होते हैं। अगर कोई बच्चा बीड़ी उद्योग में काम कर रहा है तो उसे टीबी, श्वास नली संबंधी रोग हो सकता है। अगर कोई हस्तकरघा उद्योग में काम कर रहा है तो उसे दमा, टीबी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, श्वास नली संबंधी रोग हो सकता है। अगर कोई जरी व कढ़ाई का काम कर रहा है तो आंखों में कमजोरी आ सकती है या आंखें खराब भी हो सकती हैं। अगर कोई बालक रून व हीरा कटिंग की फैक्ट्री में काम कर रहा है तो आंखों में त्रुटि और खराबी आ सकती है। अगर कोई बच्चा कागज के टुकड़ों को बटोरने का काम कर रहा है तो सिलोकोसिस, सर्दी व खांसी, ये बीमारी उसे हो सकती है। पत्थर व स्लेट खनन, सिलोकोसिस की बीमारी यहाँ भी उन बच्चों को हो सकती है। चूड़ी उद्योग, अगर कोई बच्चा चूड़ी उद्योग में काम कर रहा है तो चर्म रोग यानी कि त्वचा संबंधी रोग, श्वास संबंधी रोग और कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। कृषि उद्योग रोग, अगर कोई बच्चा कृषि उद्योग में काम कर रहा है तो उसे चर्म रोग, कीटनाशक दवाइयों व मशीनों का दुष्प्रभाव उस पर हो सकता है, सांस संबंधी बीमारी उसे हो सकती है। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं हमारा संविधान बाल श्रम के बारे में क्या कहता है, वे किस प्रकार इस दंडनीय अपराध पर रोक लगाता है।
1: बाल श्रम के लिए संवैधानिक प्रावधान। संविधान ने बाल मजदूरी पर लगाम लगाने के लिए कई कानून बनाए हैं। अनुच्छेद 15(3) बच्चों के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21(6-14) वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 बच्चों की खरीद और बिक्री पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24(14) वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में प्रतिबंध है। अनुच्छेद 39 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाला ये अनुच्छेद बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश देता है। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले इस अनुच्छेद में भी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों की है। अनुच्छेद 51(a) माता पिता पर बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने का एक मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है।
2: तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब भी आपके विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमको लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है
3: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
2: अब आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं बॉर्डर फिल्म के गीत से, जिसे स्वर दिया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत अनु मलिक का है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए कभी अलविदा ना कहना। इस फिल्म का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में, शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए फिल्म कभी अलविदा ना कहना के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का। लीजिए सुनिए एक सूचना। भोपाल शहर में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा मकान मालिकों, किराएदारों एवं विभिन्न संस्थानों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। मकान मालिकों द्वारा मकान या उसके किसी भाग को किराए पर दिए जाने पर किराएदार का विवरण निर्धारित प्रपत्र में एक सप्ताह के भीतर संबंधित थाने अथवा मध्य प्रदेश पुलिस सिटीजन पोर्टल पर देना अनिवार्य है। पूर्व से रह रहे किराएदारों एवं घरेलू नौकरों का विवरण भी 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। घरेलू नौकर होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट में ठहरने वाले व्यक्ति, छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं तथा निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, कारीगरों का विवरण भी निर्धारित प्रपत्र में संबंधित थाने को उपलब्ध कराया जाना है। सभी संबंधित नागरिकों एवं संस्थानों से पुलिस प्रशासन द्वारा निर्देशों का पालन करने की अपील की जाती है। सूचना समाप्त हुई।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।

0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशन पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई और पश्चिम रेलवे के उधना इकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक न्यायाधिकारियों की न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यस डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद जीत लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नगोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया। इससे पहले टेकबॉल स्पर्धा में भारत की क्विंसी डिसूजा कल कांस्य पदक के लिए खेलेंगी। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की सुमाया ने क्विंसी डिसूजा को 2-1 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब सुनिए आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रम। समाचारों के बाद रात 7:25 पर सुनिए बुंदेली समाचार और 7:30 पर आप सुनेंगे किसान वाणी आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत रात 8 विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। फिल्म संगीत 8:15 पर। 9:30 पर सुनिए चित्र भारती और रात 10 एशिया गेम्स 2026 पर आधारित कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स। रात 10:20 पर फिल्म संगीत।

ये थे हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब हम आपको बता रहे हैं कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत हमारे नियमित कार्यक्रमों में आप सुनेंगे 6:05 पर वंदना, 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान, 6:40 पर चिंतन और कृषि चर्चा 6:45 पर। दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल का प्रसारण होगा 7:20 पर। 8:30 पर संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम

में एस हरिकुमार का कर्नाटक वायलिन। सिंधिया जी सुराहन का प्रसारण समय है 9:30। कल इसमें आप सुनेंगे श्री बल्लूमल चौथानी से भेंटवार्ता, सिंधी संस्कृति पर सोशल मीडिया का प्रभाव। जिले की चिट्ठी का प्रसारण समय है 10:00। सामुदायिक शिक्षण पाठ के अंतर्गत कल सुनिए नेपाली गीत रचना रुद्रा पोड्याल की 10:05 पर। फिल्म संगीत 10:30 पर। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा का प्रसारण होगा। इसके अंतर्गत कल सुनिए 7:30 से 8:00 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय है उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कार्य और विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विजय अग्रवाल। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत कल सुबह 11:00 सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें कि सुने। श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है दोपहर 12:00। 12:30 पर संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का दूसरा भाग। दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान होगा। लोक संगीत 1:30 पर और 1:45 पर कार्यक्रम सुगम संगीत प्रसारित किया जाएगा। ये दोनों कार्यक्रम भी आकाशवाणी शिवपुरी की ही प्रस्तुति होंगी। फिल्मी गीतों का आनंद श्रोता ले सकते हैं दोपहर 2:00 फिल्म संगीत में। 2:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत युववाणी सुनिए शाम 5:02 पर, ये आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगी। सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत शाम 5:33 पर, 6:00 और रात 8:30 पर। रात 8:00 आप सुनेंगे सुर्खियों में डगर विकास की, सुनिए रात 8:15 पर। विषय है स्टार्टअप इंडिया योजना, प्रस्तुति आकाशवाणी गुना की। 9:30 पर सुनिए नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात 10:00 एशिया गेम्स 2026 पर आधारित कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स।

हम आपको एक बार फिर बता दें कि 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा और रात 10 एशिया गेम्स 2026 पर आधारित कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स। रात 10:20 पर सुनिए विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार युवाओं को आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, शासकीय स्कूलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ई स्कूटी का किया वितरण। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 12 लोगों की मृत्यु और अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल इंदौर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत आज स्वच्छ परिवहन और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 3 गुना वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7,400 से अधिक विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण किया। भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्कूटी योजना उन विद्यार्थियों के परिश्रम और प्रतिभा का सम्मान है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अध्ययन करके बीच अपने परिवार और समाज को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि बेटियों को शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर मिलने से केवल उनका जीवन नहीं बदलता बल्कि पूरे परिवार और समाज का वातावरण सकारात्मक बनता है। अंतर्राष्ट्रीय उच्चस्त प्रबंधन संस्थान IIWM एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कटनी के संयुक्त तत्वाधान में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं उसके संशोधनों पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों एवं संबंधित हितधारकों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन नियमों की जानकारी क्षमता वर्धन तथा आधुनिक तकनीकी समाधानों से परिचित कराना था। कार्यशाला में अस्पतालों क्लिनिक प्रयोगशालाओं एवं औषधीय क्षेत्र से जुड़े 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. M.L. पटेल निदेशक IIWM ने संस्थान की भूमिका तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं उसके संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत सतना जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद कर कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और अन्नदाताओं के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं नवाचारों एवं विकास कार्यों की जानकारी दी। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन में परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मालीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज के प्राकट्य महोत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन कालगणना की नगरी है, विज्ञान और आध्यात्म की धरती है। यह आध्यात्मिक यात्रा के महत्व को रेखांकित करने के साथ वैदिक कालगणना की परम्परा को पुनः प्रतिष्ठित करते हुए वैद्यशाला का भी विकास किया गया है।
2: ये कालगणना की नगरी भी है, ये विज्ञान की धरती भी है, ये आध्यात्म की धरती है, ये दर्शन की धरती है। इसीलिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकसित होते समय के साथ एक तरफ हमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का महत्व भी रेखांकित किया, दूसरी कालगणना की दृष्टि से वैदिक घड़ी का एक नया मॉडल के नाते से उसको पुनर्प्रतिष्ठित करते हुए एक ऑब्जर्वेटरी आधुनिक दृष्टि से भी बनाई है, जिसके आधार पर यहाँ पर पूरे देश और दुनिया के अलग अलग प्रकार के विद्वानों के माध्यम से हम अपने सूर्योदय के साथ समय की गणना के अलावा भी जो गणना के मूल सिद्धांत है, जब उत्तरायण दक्षिणायन या सूर्य मध्य में जब होता है तो उस समय के समय की गणना, ऐसी कई विशेषताओं को लेकर चल रहा है।

केन्द्र सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 10 राज्यों को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 5,279 करोड़ रुपए से अधिक की प्रतिपूर्ति की है। इसके अलावा एसएनए स्पर्श के माध्यम से 13 राज्यों के 865 करोड़ 87 लाख रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाई गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को भरोसेमंद, पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2 सड़क हादसों में 12 लोगों की मृत्यु हो गई। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में कल देर रात मां बगलामुखी मंदिर के पास ओडिशा के श्रद्धालुओं से भरी एक कार बरसाती नाले के तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख प्रकट किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं एक अन्य घटना में सागर जिले में बहेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ाकोटा रोड पर स्थित चनाटोरिया के पास आज एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रदेश में मानसून अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 22 सितंबर तक प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर सहित राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक पश्चिमी हिस्से में इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंटरैक्टिव मीट का आयोजन किया गया। राजगढ़ कलेक्टर ने कल मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत राजस्व कार्यों एवं अभिलेखों के संधारण की स्थिति का जायजा लिया। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मुरैना में विश्व ओजोन दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। छिंदवाड़ा में भी मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्र छात्राओं को ई स्कूटी की सौगात दी जा रही है। अशोकनगर जिले में 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान संचालित किया जा रहा है। देवास में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आज लखपति दीदियों के साथ उद्योग संवाद का आयोजन किया गया। खंडवा में गणेश उत्सव के दौरान पुलिस एवं प्रशासन ने जिले के विभिन्न विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया। नीमच में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और रीवा में आज भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित सामाजिक चिंतन विषय पर प्रथम व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: किसानवाणी।
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
0: किसानवाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन

0: इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी सुनवे वारे हमारे सभी भैया और बहनों को अंशु तलेठे की नेह और स्नेह भरी राम राम। भैया बिन्नाहरो, किसान वाणी कार्यक्रम को उद्देश्य है अपने सभी श्रोता भैया बिन्नाहरन तक, किसान भैयान तक, शिक्षित बेरोजगारन तक सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें पहुँचावो। सो ओई क्रम में विभिन्न विषयों पे जो कि खेती किसानी या कृषि से संबंधित हैं, हम लेके आप और उनके बीच आ गए हैं। भैया हरो, सूरज की रोशनी हमारे जीवन को आधार है। इकी किरणन से हमो जीवन संचालित होत है। इखो यदि हम सौर ऊर्जा के रूप में जाने और समझें तो जा हमारे लाने बहुत उपयोगी सिद्ध होत है। कैसे? सबसे बड़ी जो समस्या आजकल है पर्यावरण। हम सौर ऊर्जा को जितना ज्यादा उपयोग कर हैं तो हम पर्यावरण को सुरक्षित कर पे हैं। यही बात को ध्यान में रख के किसानन को सौर ऊर्जा से जुड़वे के लाने और उनकी आय बढ़ावे के लाने केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है, जिये हम पीएम कुसुम योजना के नाम से जानत हैं। अच्छा भैया बिन्नाहरो, ई योजना के अंतर्गत बंजर या खाली जमीन पे 2 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं, जिसे उत्पादित बिजली को डिस्कॉम बेच के किसान मुनाफा कमा सकते हैं। डीजल पंपों की जगह स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करो जाते हैं, जी पे सरकार अनुदान प्रदान करत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जय भैया बिन्नाहरो की मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों सौरीकरण भी ए योजना के अंतर्गत आत है। जा तो हमने बात करी ई योजना के घटकन की, अब बात करते हैं ई योजना से होवे बारे लाभन की। भैया हरो, सोलर पंप और संयंत्रों की कुल लागत पे केंद्र और राज्य सरकार 30% से लेकर 90% तक की आर्थिक सहायता राशि देते हैं। बाकी 40% हितग्राही स्वयं अथवा बैंक लोन के माध्यम से ले सकते हैं। किसान भैया हरे अतिरिक्त बिजली को उत्पादन करके आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ई योजना के माध्यम से फसलन की सिंचाई के लाने एक सबसे बड़ा लाभ जो हमें प्राप्त होता है वो है कि ई के माध्यम से हमारी डीजल पे निर्भरता कम हो जाते हैं। तो भैया हरो, हम तो जई कहें कि पीएम कुसुम योजना को लाभ लो, सौर ऊर्जा से जुड़ो और अपनी खेती में बिजली से संबंधित खर्चा को कम करो, संगे संगे प्रकृति और ई पर्यावरण की रक्षा करो। भैया हरो, कार्यक्रम में आगे बढ़त हैं और अब आपको हम सुनवाते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नवी बाग भोपाल में मृदा संरक्षण एवं संवर्धन तथा फसल उत्पादन में मिट्टी को महत्व विषय पर विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों से साक्षात्कार पर आधारित जब बातचीत एक स्थल रिकॉर्डिंग है। ई स्थल रिकॉर्डिंग में हमें सहयोग मिलो है महेश सोनी भैया को।
3: किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान श्रोताओं को नमस्कार। स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित आज का एक कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। आज हम हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नवी बाग भोपाल में। यहाँ पर हम विशेषज्ञों से मृदा संरक्षण एवं संवर्धन तथा फसल उत्पादन के लिए मिट्टी के महत्व पर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम मिलते हैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनोरंजन मोहंती से। उनसे संस्थान की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते हैं।
4: किसान भाई नमस्कार। जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है, जो हम आईएसएस के नाम पे जाने जाते हैं इंडिया में और मध्य प्रदेश में, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा। ये जो संस्था है ये 1988 से ही हाल में स्थापित है और ये संस्था जो है मृदा के बारे में, मृदा के स्वास्थ्य के बारे में अनवरत और अनगिनत काम कर रहे हैं बहुत। और 1988 से हम किसान भाइयों के लिए जो शोध करते हैं वो शोध के बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहला तो है कि मृदा स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो हम सॉइल हेल्थ बोलते हैं। ये जो अगर आपका मिट्टी या मृदा अगर स्वस्थ नहीं रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है। स्वस्थ मिट्टी एक स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ फल फूल और सब्जियां से लेके जो आपका गेहूं सोयाबीन जो भी आप कल्टीवेट करते हैं, इसका जो पैदावार होता है और उसमें जो सारे गुण रहना चाहिए प्रोडक्ट में, जो भी प्रोड्यूस होता है, जो भी हमारा खेत से निकलता है उसमें भी जो गुण होना चाहिए, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वो सब चीज़ अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं होता तो

हाँ उसमें नहीं आता है। इसीलिए ये जो हमारा संस्थान है इसके लिए शोध करते हैं, हमारा वैज्ञानिक है इधर, जो चाहे आप बोले कृषि भौतिकी हो, जो हम सॉइल फिजिक्स बोलते हैं, सॉइल केमिस्ट्री और सॉइल बायोलॉजी और एनवायरमेंट, सॉइल एनवायरमेंट में हम

0: का जो ऊपर भाग है जो आप बहुत बारिश हुआ बह जाता है उसको आप बचा के नहीं रखेंगे, उसमें सारे न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं, जैविक कार्बन भी चला जाता है, जो हम बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी का एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो बोलते हैं जैविक कार्बन, उसका अगर कमी मात्रा में पाया जाएगा आपका सॉइल सिक बीमार हो जाता है, जो हम बोलते हैं ना कि आप बीमार हो जाते हैं अगर कोई चीज़ का कमी आपका खून में दिखाई देते, आप टेस्ट करते जांच करते तो कैसे पता चलेगा, जब आप टेस्ट करेंगे सॉइल का तब आपको पता चलता है कि हमारा मिट्टी में ये सारे चीज़ के कम है। तो इसको पर हम शोध करते, शोध करने के बाद हमने टेस्ट करा दिया, पता चल गया इसमें नाइट्रोजन कमी है या नहीं है, फास्फोरस है, जिंक है कि नहीं है, फिर किसान भाइयों को बताते हैं कि इसमें ये चीज़ आप अप्लाई करिए, इसमें ये चीज़ को कमी है, आप ये दवाई जैसे हमको डॉक्टर लिखता है हम उनको बोलते हैं कि ये चीज़ का आपको एप्लीकेशन करना है। तो ये चीज़ हो गया कि मिट्टी का आपका जो संरक्षण की बात की है उसके बारे में। सिमिलरली हमारा जो केमिकल जो न्यूट्रिएंट है उसका भी बचा के रखना भी जरूरी है, उसके लिए भी हमको उसी हिसाब से हमको फर्टिलाइजर जो खाद है अप्लाई करना पड़ता है। हम खाली केमिकल फर्टिलाइजर क्यों अप्लाई करें, खाद अप्लाई करें, उसमें भी रासायनिक खाद के साथ अगर हम ऑर्गेनिक जो बोलते हैं ना जैविक खाद, उसमें चाहे आपका कंपोस्ट हो, बायो फर्टिलाइजर हो या फार्म एड मैन्योर जिसको प्रोडक्शन करते हैं, वर्मी कंपोस्ट की बात आजकल चल रहे हैं, उसी वो सब चीज़ों को मिला के करेंगे तो हम सॉइल हेल्थ जो बोलते हैं ना मिट्टी का स्वास्थ्य जो है हम उसको बढ़ा सकते हैं।
1: किसान भाइयों, मृदा संरक्षण बेहतर उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है, इसके लिए प्रशिक्षण भी लिया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आर एस चौधरी से, जो यहां पर किसानों के प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं।
2: मैं डॉक्टर आर एस चौधरी हूं, मैं यहां प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में, और हम किसानों के लिए खासकर मृदा के संरक्षण के लिए कई तरह की ट्रेनिंग देते हैं, और यहां तक कि हमारे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी किसानों को हम बताते हैं डेमोंस्ट्रेशन करके कि मृदा का संरक्षण कैसे करना है। पहली बात तो हम बस सिर्फ ये बताते हैं कि सबसे पहले आपने जो आपका बरसाती जल है उसको दौड़ने के बजाय धीरे धीरे चलने पर मजबूर करना है, रोकना है। कैसे करोगे, कंटूर मेढ़े बनाएं, जैसे मेढ़े बनाते हैं आप ढलान के आर पार। दूसरा कंटूर कल्टीवेशन करनी है, ढलान की दिशा में नहीं, ढलान के आर पार आपको हल चलाना है। इसके बाद आप अपनी रिचार्ज स्ट्रक्चर अपने खेतों में, जहां पर खेती का इस्तेमाल नहीं होता है आपका लैंड, वहां पर रिचार्ज पानी के रिचार्ज के लिए स्ट्रक्चर में पानी को रोकें आपके इस्तेमाल के लिए, और रिचार्ज के लिए पानी बचेगा फार्म पौंड में, आपके तालाबों में पानी हो। इसके अलावा एक जो हमारे यहाँ योजना चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का है, संरक्षण खेती का। ये संरक्षण खेती जो इसीलिए है कि हम जो है अपनी मृदा को, अपने न्यूट्रिएंट को, अपनी कार्बन को संरक्षित कर सकें जमीन के अंदर। इसमें तीन चीजें प्रमुख हैं कि आप जो नरवई है उसको जला देते हैं, आमतौर पर जला देते थे, अब किसान भाइयों आपने नरवई को जलाना नहीं है। ये नरवई जो है आपके खेत से जो मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी और पोषक तत्व तो बह जाते हैं, उनको बचाती है, और आपके जो खेत में रहने वाले मित्र जीव हैं उनके लिए खाना होता है ये, और ये कार्बन जो है इसके अंदर वो मृदा की कार्बन को बढ़ाती है, और ये मृदा में जब कार्बन ज़्यादा अच्छी होगी तो आपके जल का और आपके पोषक तत्वों का जो है संग्रहण मिट्टी के अंदर ज़्यादा रहेगा, जो धीरे धीरे आपकी फसल को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पैदावार ज़्यादा करता है। तो इस तरह कई तकनीकें हैं जिसको हम किसान भाइयों को ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद अपना मृदा का संरक्षण करने में हमारे किसान भाई सक्षम रहते हैं।
1: सर, जैसे आपने बताया कि इस तरह से जो है हम मृदा का संरक्षण करें, लेकिन यदि कई किसान भाई ऐसे हैं जो दूर दराज रहते हैं, उनको जो है यदि यहाँ प्रशिक्षण लेना हो, इसके बारे में समझना हो, तो वो क्या यहाँ प्रशिक्षण वगैरह देते हैं आप कुछ?
2: जी, हमारे यहाँ छोटे छोटे अंतरालों पे इस तरह के प्रशिक्षण जो है सारा साल भर चलते हैं, और किसी न किसी तरीके में जितनी हमारे यहाँ परियोजनाएं चल रही हैं, हर परियोजनाओं में मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में, मिट्टी के संरक्षण के बारे में, इसके अंदर रहने वाले मित्र जीवों के संरक्षण के बारे में, और इसके पोषक तत्वों के संरक्षण के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, कैसे इन सारी चीज़ों से अपनी मिट्टी को बचाना है, इसके बारे में हम कुछ अंतरालों पर किसान भाइयों को प्रशिक्षण देते रहते हैं, यहाँ बुलाकर भी और उनके गांव में जाके भी कार्यशालाएं करते हैं और प्रशिक्षण देते हैं।
1: कभी कभी हमारे किसान भाई जो खेत में जो कचरा होता है या जो भी जो बचे हुए अवशेष रहते हैं उनको जलाते हैं, तो ये कितना नुकसानदेह है, इसके बारे में हम किस तरह से किसानों को अवेयर करते हैं?
2: हम किसान भाइयों को कई वर्षों से बार बार हर प्रशिक्षण में यही बताते हैं कि जब आप खेत की निर्वही को जलाते हैं, अवशेषों को जलाते हैं, तो ये

0: सारे जो है अवशेष इसके कारण जो हमारे मित्र जीव हैं वो 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर की सतह तक सारे मर जाते हैं। कैंच हुए हुए आपके मकड़े हुए चींटियां हुई जो हमारे खेती के लिए बहुत जरूरी है लाभदायी मृदा के स्वास्थ्य के लिए वो सब मर जाते हैं। प्रदूषण होता है वातावरण में जाके, जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, मोनोऑक्साइड जाती है, दूसरी गैसें वातावरण में जाती हैं जो हमारे जलवायु परिवर्तन में सहायक होती हैं। गर्मी बढ़ती है और फसलों का उत्पादन कम होता है, तो इससे मिट्टी के न्यूट्रिएंट पोषक तत्व कार्बन और अन्य चीजें जो है वो सारी की सारी वो भी मिट्टी से धुल के चली जाती हैं। तो इसलिए हम किसान भाइयों को कहते हैं कि आप हमें हमारी बात मानिए और अपने नरवई को मत जलाइए, इसको खेत में ही संरक्षण खेती के द्वारा जो हमारे जरी हैं, जो हमारी मशीनें हैं, नोटिल सीड ड्रिल है, हैप्पी सीड है, इन मशीनों के द्वारा आराम से आप खेत में ही अपने नरवई को मैनेज कर सकते हैं, उसकी स्तर पे मैनेज करते हैं और फायदा लीजिए, वातावरण को बचाइए, अपनी मिट्टी को बचाइए।
1: अब हम बात करते हैं डॉक्टर प्रमोद झा से। पोषक तत्व प्रबंधन से लागत में कमी आती है और उत्पादन के साथ ही आय भी बढ़ती है, तो आइए जानकारी लेते हैं।
2: मैं डॉक्टर प्रमोद झा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक मनुष्य को विभिन्न तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरह पौधे को भी तकरीबन 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन 17 पोषक तत्वों में कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो मेजर न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाने जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। साथ में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी की हमें मेजर पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, मॉलिब्डेनम। लेकिन किसान भाइयों, इनमें से किसी भी एक न्यूट्रिएंट की अगर जो कमी हो जाए तो हो सकता है कि हमारी जो फसल की पैदावार हो वो सही पैदावार हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप कम से कम 3 वर्ष में एक बार अपनी मिट्टी का परीक्षण जरूर से करवाएं। जब आप अपनी मिट्टी की परीक्षण कराते हैं तो आपको 2 बातों का पता चलता है। एक यह कि हमारे खेत में, हमारी मिट्टी में कौन सी पोषक तत्व की कमी है। दूसरी इस बात का पता चलता है कि कौन सी पोषक तत्व की मात्रा अधिक है। जिस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होगी उसे हमें डालने की आवश्यकता नहीं होगी, और जिस पोषक तत्व की मात्रा की कमी होगी उसे हम अपने खेत में डाल सकते हैं। तो इससे किसान भाई क्या होगा कि हमारी जो लागत है कृषि में वो कम होगी। खास करके हम विगत कई वर्षों से अपने खेत में जैसे DAP का प्रयोग करते आ रहे हैं, और किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जिसके लिए आप DAP डालते हैं, इसका मृदा से कोई ह्रास लॉस नहीं होता है या मिट्टी में ही बना रहता है, लेकिन अनुपलब्ध मात्रा में, अनुपलब्ध के फॉर्म में ये मिट्टी में मौजूद रहता है। तो इससे क्या होता है, जब हम विगत कई वर्षों से DAP को अपने खेत में डालते आते रहते हैं तो धीरे धीरे जो हमारे फास्फोरस की जो उपलब्धता है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो यह हमें तभी पता चलेगा जब हम अपनी मिट्टी की परीक्षण करवाएंगे। और हमें पता है कि DAP आज के डेट में एक बहुत ही कॉस्टली फर्टिलाइजर है, और अगर जो हम अपनी मिट्टी की परीक्षण करके खेत में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डालेंगे या उसकी मात्रा में हम कमी कर पाएंगे तो हमारी लागत बढ़ जाएगी। तो जब तक आप मिट्टी का परीक्षण नहीं कराएंगे तब तक आप सही प्रकार से कृषि से अपनी आय नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरी एक बहुत ही जो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आप क्या करें पोषक तत्व का प्रबंधन में, जो सबसे जरूरी बात है कि हमारे खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अब ये कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्यों अच्छी होनी चाहिए किसान भाइयों, ऐसा है कि हमारे अगर जो हम अपने खेत से 1 चम्मच मिट्टी लेते हैं तो उसमें लाखों की संख्या में, इवन करोड़ों की संख्या में जीवाणु होते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं ये हमारे मित्र होते हैं, बट इनके भी जीवन यापन के लिए उन्हें कार्बन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी मिट्टी की उर्वरता बनी रहे तो इन जीवाणुओं का रहना हमारे खेत में अत्यंत आवश्यक होता है, और ये जीवाणु तभी हमारे खेत में रहेंगे जब हमारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी होगी। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी होने से न केवल जीवाणु की संख्या में बढ़ोतरी होती है, बल्कि जो

0: हमारा फर्टिलाइजर है, जो यूरिया आप डालते हैं नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए, सल्फर के लिए भी, ये पोषक तत्व के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये हमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसे भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा यह कहना है कि हम अच्छी कृषि पद्धति को अपना के हम अपने खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएं। इसके लिए हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं कि रासायनिक खाद के साथ साथ हम क्या करें, जो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरित खाद है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। जब इस प्रक्रिया को हम बार बार अपनाएंगे तो धीरे धीरे हमारे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी हो जाएगी, और जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारी जो भूमि की उर्वरता है वह स्वतः अपने आप धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो किसान भाइयों, बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो मूल मंत्र है कि हम अपने मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ा सकें उतनी ही अच्छी होगी। इसके लिए हम संरक्षित खेती भी कर सकते हैं, पोषक तत्व प्रबंधन जो मैंने कहा, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स जैसे आपके गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट, इनको हम डाल सकते हैं।
1: किसान भाइयों, खेत की मिट्टी एक जीवित इकाई मानी जाती है। इसमें अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसल उत्पादन में सहायक होते हैं। इसके साथ ही मिट्टी की सेहत भी बनाए रखते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, डॉक्टर जे के ठाकुर हमें बता रहे हैं।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जे के ठाकुर है और मैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हूँ और मैं मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान का वैज्ञानिक हूँ। मिट्टी एक जो है वो जीवित निकाय है। अगर हम मिट्टी को देखते हैं तो उसमें एक ग्राम मिट्टी में करोड़ों जीवाणु हो सकते हैं और ये जीवाणु जो है वो मिट्टी में बहुत सारी जो क्रियाएं होती है उसका संचालन करते हैं। जैसे कि मिट्टी में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनका रूपांतरण करने का कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को वातावरण से लेकर पौधे को पहुंचाने का भी काम करते हैं। जैसे आप लोगों को जानकारी होगी कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो वातावरण में उपलब्ध नाइट्रोजन को लेते हैं और वो पौधों को उपलब्ध कराने के या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, जिसको हम लोग जैसे राइजोबियम और लेग्यूम के साथ, जो दलहनी पौधे के साथ उनका जो संबंध के बारे में हम लोग बात करते हैं कि वो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर पौधे को पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारे पोषक तत्व मिट्टी में अघुलनशील अवस्था में होते हैं, वो मिट्टी में उपलब्ध तो होते हैं परंतु ऐसी अवस्था में वो होते नहीं हैं कि पौधे को उपलब्ध हो पाए। तो बहुत सारे जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो इन पोषक तत्वों को घुलाकर पौधे को प्राप्त करवाते हैं। तो ये दूसरा काम भी मिट्टी में उपस्थित जीवाणु करते हैं। बहुत सारे जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो पौधे को कीटों और रोगों से बचाने का, जिनको हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं, तो वो जीवाणु जो है वो पौधे को बचाने का भी काम करते हैं, रोगों और कीटों से भी बचाने का कार्य करते हैं।
1: तो किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा ने। अब महेश सोनी को दे आज्ञा, नमस्कार।
3: तो भैया हरो, चाहती स्थल रिकॉर्डिंग जी में हमने जानो मृदा स्वास्थ्य और मृदा महत्व के बारे में। इमें हमें स्थल रिकॉर्डिंग में सहयोग मिलो तो महेश सोनी भैया को। भैया हरो, जानकारियां हो गई, खूब काम की बातें हो गई और हमने आपको सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताओ। अब तनक मनोरंजन कर लेते हैं, सो हम लेके आ गए हैं बहुत ही नौनी सी गणेश वंदना। जी एक गाँव है बलराम रेकवार में, तो सुनत है जा गणेश वंदना।

भैया हरो, अब आपने जो गणेश वंदना सुनी और गणेश जी की हमने स्तुति करी, कैसे घर घर में गणेश जी विराजे हैं, सो मन आनंद से और भक्ति भाव में डूबो भाव है हमाओ। कार्यक्रम में आगे बढ़े भैया हरो, और एक और जरूरी बात आज हम आपोरन से करन चाहू थे, कृषि से संबंधित एक और जानकारी हम आपोरन के लाने लेके आए हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति जा एक ऐसी समिति है जो ग्राम स्तर पे काम करवे बारी सबसे छोटी और बुनियादी सहकारी ऋण संस्था के रूप में जानी जात है या काम करत है। जा समिति सीधे तौर पे किसानन से जुड़ी भई होत है। जा भारत की तीन स्तरीय सहकारी ऋण संरचना की सबसे निचली और अंतिम कड़ी है। अगर इकी संरचना की हम बात करें तो तीन स्तर प्रणाली में जा कृषि साख समिति काम करत है। पहलो सबसे ऊंचो स्तर राज्य सहकारी बैंक, दूसरो मध्य स्तर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, तीसरो निचलो स्तर प्राथमिक कृषि साख समिति। प्राथमिक कृषि साख समिति जा सीधे ग्राम पंचायतन से जुड़ी रहते है। इके प्रमुख कार्य हम आपोरन को बताए देते है, ऋण वितरण करवो इको एक प्रमुख कार्य है, जिमे किसानन को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के लाने कृषि ऋण उपलब्ध कराओ जाते है। दूसरो जो है कृषि सामग्री, किसानन को उचित दामन पे बीज खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराए जाते है कृषि सामग्री के रूप में। तीसरो भैया हरो उपकरण और भंडारण में भी जा मदद करत है, किराए पे कृषि मशीने लेने होए, उपकरण लेने होए और फसलन के भंडारण में सहायता के लाने भी जा समिति काम करत है। और संगे संगे भैया हरो समर्थन मूल्य पे खरीदी और कई जांगन पे इन समितियन के जरिए समर्थन मूल्य पे धान या गेहूं जैसी फसलन की खरीदी को कार्य भी करो जात है। तो जा हती हमारी प्राथमिक कृषि साख समिति के बारे में एक जानकारी। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सलाह के आधार पे पशुपालन में सलाह दी जात है कि वर्षा ऋतु में पशुअन में संक्रामक रोग होवे की संभावना रहत है, सो पशुअन को संक्रामक रोगन से बचावे के लाने आवश्यक सावधानी बरते, पशुअन को दूषित चारो ना खिलाए, दूषित पानी सोई ना पिलावे और इस समय अधिक मात्रा में हरो चारो खिलावे से बचे, कैसे इसे अफरा रोग को खतरा बढ़ जाते है। तो जा हती हमारी आज की मौसम पे आधारित जानकारी। अब हम आपको बताए देते हैं इंदौर कृषि उपज मंडी के भाव दिनांक 17 सितंबर के अनुसार। गेहूं को न्यूनतम 2550 और अधिकतम गौ 3126, सोयाबीन को 5495 न्यूनतम मूल्य रहो और अधिकतम रहो 6250, चना को न्यूनतम मूल्य रहो 5510 और अधिकतम मूल्य रहो 6600, और मूंग को न्यूनतम मूल्य रहो 6500 और अधिकतम मूल्य रहो 7330,

0: संगे संगे सरसों को 4,315 और मटर को भी 1,705 पे मूल्य स्थिर रहो। जे हते इंदौर कृषि उपज मंडी के अनुसार 17 सितंबर के मूल्य। तो भैया हरो अब कार्यक्रम में चलवे की ब्रिया हो गई है, अब आज्ञा दो अंशु तिलैठे को और स्वीकारो हमारी नेह स्नेह भरी राम राम।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछ ना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा।
2: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
3: एक व्यक्ति जब संकल्पित होता है अपने देश के लिए, अपने देश की माटी के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसके मन में भावना होती है कि ये पूरी दुनिया हमारी है, भारतीयता का जो सोच रहा है आदिकाल से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यदि वह उसके व्यक्तित्व में आ जाए तो फिर जीवन का आयाम बदल जाता है। और समकाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिनके कई आयाम हैं। आरंभिक जीवन हो या बाद का जीवन या अब का जीवन, जीवन के हर अंतराल में एक स्पष्ट सोच, दूर दृष्टि और अपनी मिट्टी से प्यार, अपनी संस्थाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करना, अपने लोगों को हर स्तर पर सक्षम बनाना, आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना, और इस क्रम में जन सेवा से देश सेवा का लक्ष्य उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में और उनके कर्म में हम पग पग पर सुदीर्घ अवधि से देखते हैं। लगभग ढाई दशक कहें, तीन दशक कहें, तीन दशक की यात्रा में नरेंद्र मोदी न केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता से एक सक्षम मुख्यमंत्री और उसके बाद भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जैसे क्षमतावान सशक्त छवि निज स्वयं की और उसके साथ साथ भारतवर्ष की बदलने में सफल हुए हैं, वह मायने रखता है। इस श्रृंखला में हम विविध विषयों पर श्रोताओं चर्चा करेंगे, जिसमें उनके साथ होने से, उनके नेतृत्व से, उनके लगातार प्रयास से किस तरह से बदलाव भारतवर्ष में आए हैं। पहले गुजरात में एक मुख्यमंत्री के रूप में हमने वाइब्रेंट गुजरात को देखा, एक ऐसा प्रदेश जहां पर उद्योग उतना सक्षम नहीं था जितना कि होना चाहिए था, वह बदलते हमने देखा और भारतवर्ष को बदलते हुए देखा है। आज इस अंक में हमने अपने अपने क्षेत्र के जाने माने नाम, राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक मामलों के जाने माने विश्लेषक शुभ

0: शंकराचार्य जी को आमंत्रित किया है। हम विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद मनोज जी।
0: शुभ मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
0: देश के उत्थान में समाज के सबसे गरीब वर्ग का योगदान जब तक सुनिश्चित नहीं होता, उन्हें ऊपर उठाने के लिए, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्नत बनाने के लिए सही उपाय नहीं किए जाते, तब तक उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। प्रगति के पथ पर वो आगे नहीं बढ़ पाते उसी गति से जैसे बाकी लोग। अंत्योदय वर्ग के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई उनका संक्षिप्त लेखा जोखा हम आपको बताते हैं।
3: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में इस बात पर जोर दिखाई देता है कि विकास का लाभ केवल उन लोगों तक सीमित ना रहे जो पहले से ही मुख्यधारा से जुड़े हैं, बल्कि उन परिवारों और क्षेत्रों तक भी पहुंचे जो लंबे समय से विकास की सुविधाओं से दूर रहे हैं। वन बंधु कल्याण योजना ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पेयजल और सड़क जैसी जरूरतों से जोड़कर समग्र रूप देने पर जोर दिया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी इसका एक उदाहरण है। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत 112 पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में प्रगति को लगातार मापा गया। यानी किसी क्षेत्र को केवल पिछड़ा मानकर छोड़ने के बजाय उसके विकास की कमियों की पहचान कर उन पर लगातार काम करने की व्यवस्था बनाई गई। इसी क्रम में दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी ध्यान बढ़ा। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के जरिए सीमा से लगे गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मकसद यही कि देश का कोई गांव केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विकास की मुख्य धारा से दूर न रह जाए। आदिवासी समुदायों के लिए ये प्रयास और लक्षित हुआ। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुँचाई जा रही है। जून 2026 तक इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच के लिए 831 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स संचालित की जा चुकी थी। अंत्योदय का मतलब केवल भौगोलिक या सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों तक पहुंचना नहीं है। किसी गरीब परिवार के लिए ये भी जरूरी है कि उसे सरकारी सहायता पाने के लिए व्यवस्था के चक्कर न लगाना पड़े। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। इसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT ने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते तक पहुँचाने की व्यवस्था को मजबूत किया। जब बात जीवन की बुनियादी सुरक्षा की आती है तो स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। जून 2026 तक योजना के तहत 12 करोड़ 69 लाख से अधिक अस्पताल में भर्ती मामलों को मंजूरी दी जा चुकी थी। इन सभी अलग अलग योजनाओं के पीछे एक साझा सोच है, विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और यही अंत्योदय की भावना है जिसमें कोई परिवार, समुदाय या क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से पीछे ना छूटे। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
0: सबसे पहले तो केवी हम आपसे समझना चाहेंगे कि देश में गरीबों की संख्या, भारतवर्ष के लिए कहा जाता है किसानों का देश है, गांव में भारत की आत्मा बसती है, लेकिन बड़े पैमाने पर गरीबी हमने गांव में भी देखी, शहरों में भी देखा, और विशेष रूप से जो हमारे जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको भी देखा। तो यदि हम दो को समझना चाहें तो गरीब कल्याण मेला और वन बंधु कल्याण योजना, इसको लेकर जो प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री के रूप में हो या बाद के दशक में कह लें प्रधानमंत्री के रूप में हो, तो किस रूप में एक परिवर्तन जमीनी स्तर पर हमने देखा है?
1: भारत का जो मूलभूत जो हमारी परिकल्पना रही है वो है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है
0: जी।
1: और अगर हम शुरुआत से देखें, महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि जब तक अंतिम छोर में खड़ा हुआ इंसान, जब तक हम उसकी आंसू ना पहुंच पाए, तब तक भारत का जो विकास जो होगा, जो भी यात्रा है, वो पूर्ण नहीं होगा। तो पिछले 10-12 साल से जिस कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इस तरफ काफी अग्रसर हुए हैं और काफी तेजी से काम हो रहे हैं, और अलग अलग योजनाओं के तहत, और जिस विशेष बात रखी जनमन या इस तरह जो जन कल्याण, उसमें हमारे जो जनजाति लोग हैं वो करीब 9% के आसपास, 10% के आसपास हमारे पूरे उसमें है, और लेकिन ये काफी पिछड़ रहे थे क्योंकि काफी सारी सुविधाएं वहाँ पे नहीं है। इसके पीछे

0: दो बड़े आयाम हमने तय किए हैं। सबसे पहले देखिए, हम एक जो है अंतर्राष्ट्रीय एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक लक्ष्य हमने साधा है अन्य राष्ट्रों के साथ, उसकी और हमारे 17 योजनाएं हैं, तो उसमें कई सारी योजनाएं सम्मिलित होती हैं और वो जब अब 2030 में वक्त ही कितना बचा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: दूसरा एक और ये है कि हम 2047 को अपने आप को विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं
1: जी।
0: अब 20 साल उसके रह गए। विकसित भारत को उस समस्या का समाधान करना है तो आपको हर बिंदु पे फोकस करना पड़ेगा
1: जी।
0: तो उसमें ये एक अहम बिंदु है जिसमें आपके सेहत है, चाहे वहाँ की पढ़ाई लिखाई हो, मूलभूत सुविधाएं हो, ग्रामीण जीवन बेहतर स्तर में हो, स्वास्थ्य का तो हम बात कर ही हैं, और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी पड़ता है कि उनके किस तरह से वो अपने आप को कमाई का साधन है
1: जी
0: उसको कर रहे हैं। क्योंकि सीधी बात है, जब आर्थिक विकास होगा तो अन्य चीजें भी उसके साथ जुड़ती चली जाती है। तो ये एक समग्र सोच है मेरा ऐसा मानना।
1: शुभमय, आपसे हम समझना चाहेंगे कि सरकार की ओर से जो विशेष रूप से योजनाएं चलाई गई हैं खासतौर से गरीबों के लिए और उसके अलावा जो वनवासी लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उसमें किस तरह का गुणात्मक परिवर्तन आप देखते हैं? आर्थिक रूप से कितने सक्षम हुए हैं हमारे गांव के लोग, उसके अलावा शहरी लोग भी जो पिछड़े वर्ग यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, उसके अलावा विशेष रूप से और यदि हम थोड़ा सा पिन पॉइंट करें तो देश का जो बड़ा एक क्षेत्र है जो जंगलों में बसता है उनके कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई, तो आर्थिक रूप से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया?
2: सबसे बड़ा इन सारी योजनाओं में जो बदलाव आया है
1: जी,
2: वो ये है कि पहले हम बहुत सारी योजनाओं की बात किए हैं, उनको लागू भी किए हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाएं एक पायलट यानी कि सीमित जगह पे ही लागू होकर रह गया है। ये अंततः मैं करीब 50 के करीब ऐसी योजना बता सकता हूँ जो शुरू हुआ, पायलट स्कीम हुआ, उसके बाद वो उसका नामो निशान नहीं रहा, वो अंतराल में चला गया। यहाँ पर जो योजनाएं लागू किए गए हैं उसमें दो बदलाव लाया गया, बेसिक बदलाव। एक हर योजना में आप सोचेंगे एक नाम दिया जाता है पीएम योजना, पीएम उदय, पीएम उज्ज्वला। इससे एक फायदा जो एक बेसिक चेंज जो आ गया वो ये कि डिपार्टमेंट्स के लिए इन योजनाओं को नजरअंदाज करके कि भाई योजना चल रहा है, योजना है, योजना में थोड़े बहुत पैसे आवंटित किए गए हैं, अगले साल अगला चीज सोचेंगे, ये इसका स्पेस नहीं रहा। योजनाओं के ऊपर पूरी तरह से उनको प्रेशर, उनको जिसे कहते हैं कार्यान्वित करने का एक प्रेशर आ गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, यानी कि ओनरशिप, योजना किसका है, किसने चलाई है, किसके लिए, आप कहेंगे कि वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले कि पीएम किसान योजना, पीएम जलधारा, ये सारी स्कीम में ये जो मॉनिटर आया है ये बहुत बड़ा एक बदलाव है कि डिपार्टमेंट्स के लिए इनको कई सारी योजनाओं में शामिल कर देना कि बस वही है योजना, वो उसका स्केल स्कोप नहीं रहा। और इसी के चलते 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाए, वो है कि एक्सपेंडिचर में जो बहुत सारी योजनाएं जो थे पुरानी योजनाएं उनको खत्म कर दिया गया, एक सनसेट पीरियड लाया गया और नई योजना का क्रियान्वयन उस स्टेप से किया गया कि अभी हम इन सभी योजनाओं में छोटे छोटे छोटे जो पैसे लगाए जाते थे जिसमें जैसे मैंने कहा कि खास कुछ उसका कुछ देखभाल नहीं होता था, उनको एक बड़ा शक्ति के हिसाब से उन योजनाओं को सामने लाया गया। तो इससे योजना का अपने आप में, योजना का गुणवत्ता, योजना का को लेवल, सब कुछ में बदलाव आ गया, बहुत बड़ी चीज है ये
1: जी।
2: दूसरी बात इसमें जो बदलाव लाया गया वो ये है कि योजनाओं में जब बदलाव आया गया खर्चा में, नेचुरली इसका खर्चा का जो लेवल है और एप्लीकेशन जो है वो पूरे देश का हो गया, ये सिर्फ राजस्थान का या तमिलनाडु का या आसाम का या कश्मीर का या उड़ीसा का नहीं रहा। ये बहुत बड़ा चेंज है, तो लोगों को समझने में और इसको क्रियान्वयन करने में बहुत ईजी हो गया। सिंपल योजनाएं लेकिन उसके डायरेक्शन क्लियर है, उनके टारगेट क्या है वो पता है और उस पर कितने खर्च किए जाएंगे वो क्लियर है। तो कुल मिलाकर योजनाएं अपने आप में एक सशक्त डिलीवरी मॉडल्स बन के हमारे सामने आ गए
1: जी। बहुत अच्छी बात की शुभमय कि योजना एक मॉडल के रूप में, एक ऐसे मॉडल में जो जमीन पर उतरता हुआ साफ साफ दिखता है। यहाँ पर केवी आपसे हम समझना चाहेंगे कि जमीन पर जो ये योजनाएं उतरने लगे, यदि हम थोड़ा सा पीछे से चर्चा करें तो प्रधानमंत्री का एक सपना था जिसमें कि हर व्यक्ति फाइनेंशियली सक्षम हो, हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो, हर व्यक् ति के पास एक खाता हो, यानी जाम ट्रिनिटी जिसे हम कहते हैं जनधन योजना के अंतर्गत, उनके पास एक बैंक का खाता हो, उनके पास एक मोबाइल हो। इस योजना ने, यानी शुभमय ने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि यह योजना किसके लिए है, यह स्पष्ट हुआ, इसकी मॉनिटरिंग बढ़ी और मॉनिटरिंग के साथ साथ वो डिलीवरी प्रोडक्ट के रूप में किस रूप में समाज को फायदा पहुंचा रहा, यानी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। उस जिम्मेदारी में एक लीकेज रोकने में जो जाम ट्रिनिटी है उसने किस रूप में परिवर्तन लाया और अपने आरंभ काल से अब तक यह कैसा रूप लेती दिखाई दे रही है आपको?
0: मनोज जी, इसमें दो चीज स्पष्ट है।

0: कि सबसे पहली बात है कि सरकार ने ये एहसास तो था ही कि भाई पैसा जो भारत सरकार पहुंचा रही है आवंटियों को पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, उसके बीच में कुछ ना कुछ जैसे आपने कहा, तो उसको कैसे रोका जाए? क्योंकि पहले तो होता है कि पैसा आप कैश में देंगे, रोकड़ में देंगे,
1: जी जी जी
0: तो कहीं किसी के हाथ जाएगा, जो सरकारी तंत्र है उसके तहत ही नीचे जाएगा,
1: जी
0: तो उसमें कई सारे व्यवधान आते थे इस तरह के। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी यानी तकनीक आ गई, इस तरह की विकसित तकनीक है जिसमें जैसे सबसे बड़ा जिसकी आपने बात की, जनधन हुआ चाहे जैम जिसे कहते हैं, जनधन आधार मोबाइल, तीनों को जोड़ के आपने, तो एक मजबूत ढांचा आपने तैयार कर रखा है आपके पास। और उसमें सबसे बहुत मुझे याद है कि आंकड़े अपने आप में स्पष्ट करेंगे, अगर आप कभी भी देखें जो सरकारी जितने बैंक थे उनको ये कहा गया कि आप नए खाते खोले जीरो बैलेंस के,
1: जी
0: जो आम नागरिक हैं, और सबको उनको एनकरेज किया गया आप जाके अपना एक बैंक का खाता खोलिए और उसी खाते में पैसा जाता है।
1: जी जी।
0: और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा जब कोविड की महामारी परेशान कर रही थी, हमारे यहाँ भी आर्थिक समस्या बढ़ गई थी, तो सरकार जो पैसा हस्तांतरण कर रही थी वो इसके जरिए कर रही थी कि सीधा सीधा लाभार्थी के खाते में चला जाए पैसा। तो इस तरह से जिसे कहते हैं, इसका एक और फायदा है, अब उसके बाद अब तो हाल फिलहाल की बात है, हमें UPI QR कोड का जो इस्तेमाल होने लगा भीम ऐप के जरिए तमाम सारे डिजिटल पेमेंट्स के लिए।
1: जी,
0: शुरुआत में इसके ऊपर काफ़ी आलोचना भी आपको याद होगा। अच्छा, आलोचना ये हुई थी कि भाई इस जहाँ पे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी है तो फिर उनको नहीं आता।
1: जी,
0: लेकिन आज तो आम बात है कि चाहे आप छोटे से छोटे व्यापारी हो, छोटा से छोटा ठेले पे जो सामान बेचता है उसके पास एक QR कोड है।
1: जी,
0: इसका एक बहुत बड़ा दूसरा फायदा है जो मेरे ख्याल से शुभ जो कि आर्थिक विशेष ज़्यादा काम करें, भारत एक डिजिटाइज्ड इकोनॉमी होता जा रहा है और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, तो आपको बकायदा पता लगेगा, जैसे अभी हाल फिलहाल में UPI को लेकर कुछ चर्चाएं चली हैं, लेकिन आपके पास स्पष्ट आंकड़ा है अब।
1: जी,
0: पहले कुछ नहीं था कि रोकड़ में कैश में व्यवधान हो रहा है कि क्या वितरण हो रहा है, किसी को हिसाब नहीं होता था।
1: जी,
0: तो ये भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ रही है वो सब भारत सरकार और हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: क्या शुभ, मैं अब अगला सवाल आपसे इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, DBT किस रूप में गेम चेंजर साबित हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था को? यानी काला धन सफेद धन, धन धन है, लेकिन धन जो डिजिटल माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में जा रहा और जो लीकेज एक बड़ी समस्या थी, लाभार्थियों तक उचित तरीके से वह धन नहीं पहुंच पाता था, उसमें DBT कैसे कहले पूरी व्यवस्था को बदलने में सक्षम हुआ? और एक बड़ी अच्छी बात के भी जी ने कही कि जिस रूप में अब हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वह बताते हैं कि हम तकनीकी रूप से डिजिटल भारत की ओर तेज गति से बढ़ रहे हैं, किस तरह आकलन कर रहे हैं आप?
2: बिल्कुल, ये जो आकलन की बात है ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके ऊपर अगर आप कई साल का लेखा जोखा देखें CAG का, तो पहले क्या हो रहा था कि जो स्कीम्स थे इन सारी स्कीम्स में आकलन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि स्कीम्स किस तरीके से कितने अमाउंट पे गया है। हर साल का CAG का जो लेखा जोखा था उसमें यही चीज बार बार आता था कि खर्च तो हुए हैं लेकिन खर्च सही जगह पे नहीं हुए हैं और सही मात्रा में नहीं हुए हैं और सही लोगों को नहीं मिले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था, इसको भी आप एक ट्रिनिटी कह सकते हैं, बड़ा नेगेटिव ट्रिनिटी, और वो ट्रिनिटी जो हमें काफी परेशान कर रहा था वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा सके हैं। अभी आप जैसे कोई भी लाभार्थी किसी भी स्कीम में जाते हैं तो उनको पता रहता है कि उनको कितना मिलना है, उनको बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में उनको दिख जाता है कि वो अमाउंट आया है या नहीं, और तीसरा जो बीच में मिडलमैन बिचौलिया जो खा जाते थे उसका मात्रा काफी कम हो गया है। और इसके वजह से जो आप देख रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि गांव में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में जो कंजम्पशन में जो एक जंप आया है और जिस पर अर्थशास्त्री लोगों ने बहुत बड़ा इस पर डिस्कशन भी किए हैं, वो फर्क इसीलिए आया है कि अभी लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, हमारा पर कैपिटा इनकम हमारा 2200 से 2500 डॉलर्स के करीब हम मानते हैं जिसके हम चलते हैं, इससे बढ़कर इंडिया में भी पर कैपिटा इनकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगा, 7 ट्रिलियन हो जाएगा और जिसमें ज्यादा देर नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम लोगों का डबल हो जाता है। अब हमारे लेवल में आपके लेवल में पर कैपिटा इनकम डबल हो जाना वगैरह वो उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि पर्सन का जिसका मान लीजिए औसतन 80,000 रुपए इनकम है वो अगर बढ़ के 160 हो जाए
1: जी।
2: उनकी पूरी जिंदगी का माहौल बदल जाता है। सो ये जो जिसे कहते हैं एक मूलभूत परिवर्तन, ये तभी पॉसिबल हुआ है जिसका वजह था ये जैम ट्रिनिटी, ये जनधन और मुद्रा वाली योजना। तो दैट एंटायर प्रोसेस ने

0: लोगों में एक कॉन्फिडेंस, एक एक्सपेक्टेशन और एक कंटिन्यूटी का सिस्टम बना दिया है कि ये चलेगा, इस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आएगा हर महीने में, हर 15 दिन में, जैसे भी उसका शेड्यूल है
1: जी
0: उस तरह से वो पे। तो कुल मिलाकर दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर, जो एक बार ही सक्षम होने के बाद लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स के, जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी, इस पर भरोसा आ गया है। और ये बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं चेंज, जो पिछले कई साल में हुआ है, जो बार बार हमारे हर तरह के सर्वे में, हर तरीके का एनालिसिस में ये बनकर सामने आ रहा है। जी
1: यहाँ पर के भी आपको आमंत्रित करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। शुभमय कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत मजबूत हुआ है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है। बेशक आमदनी के आंकड़ों पर, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों पर दुनिया में हम थोड़ा पीछे भी ठहरते हों, लेकिन लगातार पिछले 10-12 वर्षों में गरीबों के उत्थान के लिए जो विभिन्न योजनाएं चली हैं, उसमें डिस्पोजेबल इनकम यानी एक गरीब व्यक्ति की आमदनी दोगुनी हो जाती है, तो वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसका एक पूरा परिवार, पूरे गाँव का अर्थतंत्र और उसके समान कई सारे लोगों के अर्थतंत्र की आवश्यकताएं बदलती चली जाती हैं। तो ग्रामीण भारत में जो ये जाम ट्रिनिटी थी, उसने किस रूप में बदलाव लाया और कितना मजबूत भारत आप देख पा रहे हैं आज की तारीख में?
2: माना जाता है कि भारत के अधिकतर लोग ग्रामीण इलाके में बसते थे, ऐसा शुरुआत में थी, लेकिन वो चीज़ बदली है।
1: जी
2: फिर भी
1: जी जी
2: 40% के आसपास मान के चलिए,
1: जी
2: 45% के आसपास ग्रामीण इलाकों में हमारे बसे हुए हैं, रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी वहीं बिताते हैं, कुछ खेती खलिहान, कुछ कुछ अपने अपने छोटे मोटे कार्य से, जो शुभ भी बात कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया, जब सीधा पैसा आपको हर महीने या 15 दिन बाद आने लग गया
1: जी,
2: तो एक आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। और एक बहुत बड़े इसमें एक जिसे कहें डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि महिला का बीच में इसमें रखे स्कीम्स में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि महिला के खाते में जब पैसा आता है तो वो पूरे परिवार को सोचती है,
1: ये
2: नहीं कि पुरुष नहीं सोचते हैं, लेकिन माना गया एक हमारे सोसाइटी का एक नॉर्म जिस तरह से
1: जी,
2: देखा
1: जी,
2: जाता है, तो वो एक फर्क पड़ा। और खासकर हमारे जो ग्रामीण इलाकों में जो बालिकाएं शिक्षा की ओर बढ़ रही हैं, तो वो एक बदलाव, क्योंकि जो हम विकास, ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बढ़ेगा, एक समाज की बदलाव भी आएगा। जब तक समाज के बीच में बदलाव नहीं आएगा, सोच में बदलाव नहीं आएगा, अगर एक समाज स्वस्थ होगा विकास की ओर बढ़ेगा।
1: बिल्कुल,
2: तो इस तरह के कल्याणकारी योजना। और एक मूलभूत जो परिवर्तन ये भी देखा गया है इस सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जब से आए उनका एक मंत्र रहा है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच,
1: जी,
2: क्योंकि सरकार अलग अलग विभागों में काम करती है, तो एक विभाग को दूसरे से मतलब नहीं होता था, ये तो हमारा काम नहीं है, फलाने मंत्रालय का है, तो सबको लेकर सम्मिलित कर कि लक्ष्य आधा है सबने कि ये करना है आपने, तो चाहे ग्रामीण में हो, तो तमाम सारे जैसे बात हो रही थी, कई सारे अलग अलग विकास की योजनाएं थी, लेकिन उसको जैसे कहते हैं टारगेट करके एक दिशा देना कि ताकि उसको कार्यान्वित भी हो और वो जो लक्ष्य को साधा है वो पूरा भी करें। और ग्रामीण भारत इसलिए बढ़ा कि आप चाहे ऊर्जा बढ़ाएं, मतलब जो आपके इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक स्वच्छ पानी
1: जी
2: और जो बाकी सब मूलभूत सुविधाएं, इस सब के भी काम हो रहा है। ठीक है, विकास का स्तर अलग अलग ग्रामीण इलाकों में अलग होगा, वो क्योंकि कुछ राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्य को पूरा करें, लेकिन कुल मिलाकर दबाव सब पे है।
1: यहाँ पर शुभ मैं आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, गाँव की बात की और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार का जो नज़रिया है वह पूरा का पूरा, सरकार के सभी विभाग अपने लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें, उस दिशा में काम होता हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यह कार्यक्रम गाँव में किस रूप में इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसके नतीजे कैसे निकल के आते दिख रहे हैं आपको?
0: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक मतलब डिफिकल्ट प्रोग्राम है, लेकिन साथ में बहुत ही कारगर प्रोग्राम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है कि एवरी विलेज इन द बॉर्डर इज द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो आई थिंक 2023 में शुरू कर गया कि देश के जो बॉर्डर इलाके में करीब 19 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर करीब 650 के करीब विलेजेस का उन्नति किया जाएगा। इसको उन्नति करने में प्रॉब्लम क्या था कि ये चूंकि एकदम बॉर्डर में है, इसलिए इनकी तरफ कोई भी बेनिफिट ले जाना, जैसे लाइवलीहुड जनरेशन या एंटरप्रेन्योरशिप करना, या यहाँ तक कि इवन स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह का भी जो व्यवस्थाएं करना, वो मुश्किल था क्योंकि ये एकदम काफ़ी सारे डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक जिसे कहते महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। ये एक दूसरा रुख है सोचने का कि किस तरीके से इन तरह का इलाकों में बेनिफिट्स लाया जाए और किस तरीके से, जैसे वो आप जैसे कह रहे थे कि हर तरीके का मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में लाकर इन जगहों में किस तरीके से इंटरवेंशंस किए जाएं।

0: इनफैक्ट इसका सक्सेसफुल लॉन्च के बाद ये पिछले साल इसको और भी बढ़ाया गया है कि जितने सारे ब्लॉक्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, उन सभी ब्लॉक्स में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास में जितने सारे विलेजेस हैं
1: जी
0: वहां पे इस प्रोग्राम को लागू किया जाए।
1: जी
0: तो अपने आप में ये तो खैर मैं आकाशवाणी के जरिए लोगों को आमंत्रित करूंगा कि वो जाके देखे कि किस तरीके का बदलाव वहां पे आया है, जैसे रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सारी चीजों में किस तरीके का बदलाव आया है। वो अपने आप में बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं उल्लेखनीय चीज तो है और शिक्षणीय चीज भी है। जी
1: श्रोताओं, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा कर रहे हमारे विशेषज्ञ कि सीमावर्ती भारत के गांवों में जो परिवर्तन हुए हैं, बुनियादी परिवर्तन हुए हैं, और ये परिवर्तन न केवल दिखते हैं बल्कि इनका लाभ हमें और आपको स्पष्ट मिल रहा है। देश के कई क्षेत्र जहां जाना कठिन था, अब वहां सहजता से आप पहुंच सकते हैं, और वहां पर जो एक व्यवस्थागत बदलाव आया है उसके साक्षी बन सकते हैं। यानी देशी पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर जो हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। विकसित भारत अपने स्थान पर, लेकिन विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत की दिशा में सरकार की ओर से जो योजनाएं बनाई गई और विशेष रूप से जो आयुष्मान भारत योजना चली, PMJAY योजना चली, यह किस रूप में अपनी भूमिका निभा रही है और ग्राउंड लेवल पर क्या बदलाव नजर आता है इन योजनाओं का?
2: अगर स्वस्थ होगा राष्ट्र तो वो विकास के और कार्यक्रम में और उसके लोग रहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज, एक तो भारत सरकार की जो पुरानी जो स्कीम्स थी वो तो अपने कार्यान्वयन में हुए हैं और इसी वजह से हमारे जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है।
1: जी जी जी
2: अगर हम इंडिपेंडेंट हुए तो शायद 40-43 आज 70 के ऊपर, 70-75 के आसपास, क्योंकि वो उसमें कई चीज़ें जुड़ती हैं। लेकिन उसके साथ साथ समाज के सामने एक नई समस्या भी खड़ी होगी कि जैसे जैसे लोग वयस्क लोग बढ़ रहे हैं समाज में, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना भी ज़रूरी है। वो भी और अपने जी कार्यकाल में उन्होंने जो देश के लिए सेवा तो की है, लेकिन अब जब उम्र अलग हो गई है और समस्याओं से घिर रहे हैं तो उनमें 2-3 कार्यक्रम लाए गए। उसके साथ साथ चाहे वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य है, अब उसमें अलग जो दूसरा है आभा स्कीम है, आपका आयुष्मान भारत स्कीम है, तो ये सब समग्रित करके कर रहे हैं और 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और उसमें आप कार्ड बनवाइए 5 लाख तक परिवार में, एक आपके कोई समस्या आती है, कई सारे उसमें जो पैमाने हैं वो मापदंड है, आप सरकार को कोई खर्च नहीं हो, मतलब सरकार खर्च करेगी आपके बतौर आप और उनके जो उनके अस्पताल है वहाँ जाइए, स्वास्थ्य केंद्र है। और क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया कि चाहे वो ग्रामीण ही छोड़ दिए, कई सारे टाउन टीयर टू सिटीज में हमारे पास स्वास्थ्य योजना तो थी लेकिन उसको कार्यान्वयन करने में समस्या आ रही थी, उसको भी इस पर कोशिश कर रहे हैं। और जो दूसरे जैसे पोर्टल एक जैसे आभा की बात किया, उसमें भी आप डॉक्टर्स को जोड़ रहे हैं कि आप जुड़िए स्वास्थ्य कार्य में जो भी है, ताकि उनका एक रजिस्टर बने कि कौन कौन स्वास्थ्य कर्मी कहाँ कहाँ हैं। और दूसरी तरफ लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपना जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल माध्यम से रखें, क्योंकि हर एक के पास रिकॉर्ड रखने की समस्या है। आप अस्पताल पहुंच गया, पता चला रिपोर्ट घर पे छूट गया, तो वो भी डिजिटाइज करने, जो आभा नंबर आप ले लीजिएगा तो कहीं पे भी बैठे हो, चाहे आप इस एक प्रांत में और दूसरे प्रांत में कोई आपको चिकित्सक बैठा या आप कहीं चले गए तो आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए। तो इस तरह से जो शुरुआत में भी बात हुई, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है उसका एक सदुपयोग कर रहे हैं।
1: यहाँ पर शुभ, मैं आपसे हम समझना चाहेंगे कि यह जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं शुरू हुई हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है और किस रूप में यह चल रही हैं और आम लोग इसका लाभ किस तरह उठा सकते हैं, कुल मिलाकर इससे लाभ कैसे लिया जा सकता है, इस पर थोड़ा रोशनी डालें और जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया, ये तो हमारे हर चर्चा में ये हम समझना चाहते हैं आपके माध्यम से।
0: देखिए, बहुत बड़ी बदलाव जिससे इनसे आया है वो तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है। जितना जितना जिस तरीके का हम अगर हम हर तरह हर कोई भी बिंदु अगर ले, जो कंजम्पशन इंडिकेटर हैं, जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उसके तरफ, एक जैसे एक फंक्शन से एक चीज आप देख सकते हैं जैसे PM आयुष्मान भारत
1: जी।
0: तो अभी बहुत बड़ी चीज हो गई है कि आयुष्मान भारत में पहले था कि ये स्कीम किसके लिए है, अब यह है कि स्कीम किसके लिए नहीं है, यानी कि ये स्कीम ऑल ओवर द प्लेस सबके लिए जरूरत बन गया है। सिमिलरली जैसे स्कीम्स की हम बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो गैस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है हर जगहों में, उस तरीके का प्रोग्राम में भी हर लोग इसका फायदा लेना अपना जिसे कहते हैं और मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि लोगों को लगता है कि हम ये प्रोग्राम हमारे लिए है, हम इसको यूज करेंगे। तो ये स्कीम्स एक जिसे कहते हैं एक रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत का आइटम बन चुका है कि इसमें तो मिल जाएगा, ये वाला तो स्कीम है, ये वाला तो स्कीम है, इसके लिए ये स्कीम है, इसके लिए वो स्कीम है। तो इसके लिए कोई सरकारी जिसे कहते हैं फंक्शन में ही इसकी आलोचना नहीं होती है।

0: इसके बारे में डिस्कशन हर जगह पे होता है। मैं फिर से हम कहूँगा जैसे पंचायत वगैरह में इनकी जो इनके बारे में जो कमेंट्रीज होती है, इनके बारे में जो डिस्कशन होती है, वही आपको बताता है कि कितना परिवर्तन का स्रोत इन चीज इन इन स्कीम्स ने तैयार किया है। एक बहुत बड़ा चीज जो किया गया है वो है जी राम जी प्रोग्राम में,
1: जी,
0: कि का स्कीम रहेगा, स्कीम को और कितना इम्प्रूव किया जाए, वो एक बहुत बड़ा सोच का केंद्र बिंदु बन गया है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर हम देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ माफ इस कहना के फाइल्स में नहीं रहता है, बल्कि वो उठ के लोगों की आम जिंदगी के लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है, उनमें समा चुका है। यही है स्कीम्स के जिसे कहते हैं हम सिग्नेचर, कार्यकर्ता की कार्यक्षमता, उसकी क्रियान्वयन, उसकी जो कैपेसिटी, ये हमें दिखी है इन स्कीम्स के सबसे बड़ा खूबी, कि गवर्नमेंट का जो फंडिंग करने का जो सिस्टम है उसको भी उसके अनुरूप बदल दिया गया है। जो PFMS स्कीम्स है वगैरह, PFMS एक्चुअली स्कीम नहीं है, PFMS इज पब्लिक फंड मैनेजमेंट स्कीम, वो पूरा इन सारे स्कीम्स को किस तरीके से फंडिंग रखा जाए, लिक्विड रखा जाए, उसके लिए सरकार ने अपना अकाउंटिंग सिस्टम भी बदल दिया है। और ये सब बहुत बड़ी जिसे कहते मैं कहूँगा फेज चेंज है इन द एंटायर डिलीवरी सिस्टम, जो हमें फायदा दे रहा है। जैसे अभी पिछले कई साल में कोविड हुआ या उसके बाद, ये जैसे एक के बाद एक डिस्टर्बेंस होते गए हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूल के क्राइसिस वगैरह, बाकी सारे क्राइसिस में, तो भारत के ग्रोथ रेट में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया है। और वो इफेक्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड को के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और वो इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये स्कीम के जरिए जो पैसा जो लोगों के पास जाना चाहिए ये जा रहा है, उसकी गति में, उस स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और इसीलिए दैट आई थिंक इज अ वेरी मेजर चेंज जो हम जिसके लिए वी कैन बी वेरी वेरी प्राउड।
1: जी, यहाँ पर के भी हम ये समझना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, और अभी 2026 के लगभग कह लें कि अंतिम चरण में, यानी अगले 3 महीने रह रहे, तो वहाँ उस दिशा में जाने के लिए हमारे पास समकाल में कौन सी चुनौतियाँ दिख रही हैं जिस पर कि हमें काम करना चाहिए, मिलकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे कौन से बिंदु हो सकते हैं?
2: देखिए, सबसे समस्या जो भी कहिए चुनौती है, चुनौती इसलिए है कि जब आप विकसित भारत की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि विकासशील से हम विकसित हो जाएं,
1: जी,
2: तो उसके मापदंड और पैमाने अलग अलग हो जाते हैं। भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बनना है और उसके लिए अग्रसर है, एक लक्ष्य साधा है 2047 तक, जो 100 साल भारत का आज़ादी के हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग होते हैं, हर एक का मापदंड अलग होता है, लेकिन एक समाज को, एक राष्ट्र को विकसित होने के लिए कुछ मापदंड हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब मानते हैं। तो उसमें मूलभूत तो है ही, स्वास्थ्य हो गया, पढ़ाई हो गई, सर के ऊपर छत हो गया, इस तरह की छोटी ये तो शुरुआत से जिसे हम रोटी कपड़ा मकान कह लीजिएगा, पुरानी बात है। लेकिन उसके आगे और कई सारी चीज़ें आ गई। आज समस्या क्या है, पर्यावरण भी जुड़ गया इसमें, क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने सेटअप किया है कि विकास तो करिए लेकिन आपने पर्यावरण का भी ध्यान रखिए, क्लाइमेट चेंज की ओर रखिए, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर रहे हैं। सोसाइटी में जो हमारे समाज है उसमें जो सोच है वो कैसे विकसित हो, क्योंकि कई समस्याएं हैं अभी भी समाज के अंदर, वो सामाजिक सोच। और क्या हमारे यहाँ इक्वालिटी जो कहते हैं वो तो है, इक्विटी है, जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, मतलब जो हर किस्म के लोगों के तरफ आपका किस, तो कई सारे चीज़ें हैं। तो वो विकास, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कई सारे है, जब तक आप हर बिंदु पर काम नहीं करेंगे तो वो जैसे है कि लास्ट में, जैसे अगर कहें, अगर हम रेस देखते हैं 8 लेन से अलग अलग लोग चलते हैं, लेकिन अंत में जाके सब उस टेप को
1: जी
2: चाहते हैं, या तो वो लक्ष्य के लिए आपके कई सारे लेन्स में काम कर रहे हैं हम, चाहे आपने शुरुआत में हमने कहा जनजाति लोगों के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग को लेकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं, जो बात हुई थी ग्रामीण इलाकों में जो कि सरहद पे है, उसके लिए जो है जो सोच बदलने की बात आई थी, जिसके बाद शुभ कर रहे थे कि सोच क्या थी कि वो अंतिम छोर पे नहीं है, वो पहले है,
1: जी
2: सिर्फ सोच ही बदलाव,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ये सोच बदलाव एक कठिनाई होती है, लेकिन जब उस तरफ आप ध्यान देते हैं तो जैसे कहते चुनौती है, लेकिन सरकार चुनौती जानती है और उसकी तरफ काम कर रही है। जैसे मैंने कहा अलग अलग बिंदुओं पे काम करिए, तभी तो जाके आप उस छोर पे पहुंचे।
1: बिल्कुल शुभ। प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में सुदीर्घ अवधि से कहते आ रहे हैं कि हमें आपदा में अवसर निकालना चाहिए, और उनका ये कथन कई अवसरों पर हमने देखा है। तेल के दाम बढ़े लेकिन हमारे यहाँ अपेक्षाकृत दुनिया के कई अन्य देशों में जितना प्रभाव पड़ा उतना हम प्रभावित होते नहीं दिख रहे हैं, और थोड़ा पीछे चले जाएं तो कोविड के समय में जो स्थितियां दुनिया के बाकी देशों में हुई हम बेहतर थे, दुनिया को हमने दिया, यानी हम पर टैरिफ लगाया गया और टैरिफ का भी बहुत अधिक प्रभाव होता नजर नहीं आया क्योंकि हम बड़ी विविधता से चतुराई पूर्वक समय से कदम उठाते रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। यहां हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि परिवर्तन हुए हैं, वह परिवर्तन किस

0: रूप में आगे जाते आपको दिख रहे हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी बनी हुई है, जो नीतियां बन रही हैं वो इम्प्लीमेंट हों और वो साल दर साल इम्प्लीमेंट होते रहें। उसके साथ साथ और क्या बदलाव आप देख रहे हैं?
1: मनु जी, आपने जो बात कही बहुत अहम भी है, और इस पर देखिए, जैसे इससे पहले वाकई बात कही, सोच बदलने की बात है। और ये इसलिए कि सरकार में जैसे था कि साइलोज में काम करते, एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय का, हर आदमी अपने मंत्रालय को देखता था, एक तो उसको ख़त्म किया कि सब मिल के करेंगे, सबके जो धन है, आवंटन तो सबके अलग अलग धन होते हैं, लेकिन जब एक योजना बनती है, मैं छोटा सा अगर आपको एक यहाँ पे उदाहरण दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी, अब सिर्फ घर नहीं मिलता, मतलब ये है कि ढांचा दे दिया, उसमें पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, पाइप गैस की सुविधा, तीन चार चीज़ें जो कि जब आप घर के अंदर प्रवेश करें, और वो घर किस नाम पर जाएगा, महिला के नाम पर होगा उसका रजिस्ट्रेशन, घर की महिला, तो एक उनको एम्पावर किया आपने। अब ये अलग अलग स्कीम से निकल के आ रहे हैं, पाइप गैस का अलग स्कीम जो सरकार के आवंटन है, पानी घर घर जल योजना, अलग अलग जो स्कीम्स बनी है उसी में से निकल के आ रहे हैं, लेकिन जब आपने आवंटन कर दिया तो आप रह सकते, तो एक ही सोच बदली कि वे कार्य करें।
0: श्रोताओं, एक होलिस्टिक बदलाव यानी जो परिवर्तन हुआ है वह संपूर्णता में बदला है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे केवी प्रसाद जी ने दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब एक ढांचा घर नहीं, बल्कि उस घर में जब वो तैयार होता है तो आपको नल जल भी मिल रहा है, शौचालय की व्यवस्था भी मिल रही है, साथ साथ रसोई के लिए गैस का भी इंतजाम आपको हो रहा है, और सभी योजनाएं सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत एक जगह समन्वित होकर एकीकृत होकर देश के सबसे पिछड़े गरीब वर्ग के लोगों को अंत्योदय योजना के तहत मिल रहे हैं, ये जमीन पर दिख रहा है। हमारा ये विशेष कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सभी श्रोताओं की ओर से शुभमय आपको और केवी जी आपको हम धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद मनोज जी।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत।

हम आपको सुनवा रहे हैं स्वदेश फिल्म का गीत उदित नारायण और हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज़ में। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत AR रहमान का है।

0: उदित नारायण हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज में अभी आपने सुना स्वदेश फिल्म का गीत। शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और संगीत एआर रहमान का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन।
1: आकाशवाणी

0: प्राणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में दो दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
4: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था एनईपी 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का

0: तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
1: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बैठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
0: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीवी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
2: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
0: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
4: I think close to 8 cargo planes have arrived.
5: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
3: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज

0: जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2-दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes
2: more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division, also gives nod to construction of four-lane road overbridge on Udna Ukai Songar section of Western Railway. 2-day Northeast Education Conclave 2026 concludes in Nagaland, focuses on implementation of National Education Policy 2020. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. Heavy rainfall likely over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana tomorrow. And 20th Asian Games officially open in Japan. Double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pawan Sehrawat lead India's 501-member contingent during athletes' parade. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with skills and opportunities needed to prepare for the future.
3: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Prime Minister said India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such truth.

0: Jharkhand, Konkan, Goa, Odisha, and parts of northeastern India tomorrow. The four-day Northeast Zone Interstate Badminton Championship 2026 has successfully concluded at Shillong's Jawaharlal Nehru Stadium today. A report.
1: More than 270 shuttlers from all the eight northeastern states took part in the tournament, which also served as the qualifying event for the team competitions of the upcoming National Games 2027 to be hosted by Meghalaya. The shuttlers participated in the under-17, under-19, senior individual and team championships over the past 4 days. While Assam bagged 5 gold medals, Mizoram and Manipur secured 2 gold medals each, and Arunachal Pradesh secured 1. Host state Meghalaya secured 4 bronze medals. For Akashvani News, Anumita Das, Shillong.
0: The 20th Asian Games officially got underway today at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, with Emperor Naruhito declaring the games open. India's 501-member contingent was led by double Olympic medalist Manu Bhakar and kabaddi player Pawan Sehrawat during the athletes' parade. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of Kavach version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. And that is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुदकफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 600 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर कवच निजाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त को मंजूरी दे दी है। मगरबी रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। दो रोजा शुमाल मशरिकी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 नागालैंड में इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज पर तवज्जो मरकूज की गई है। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को फिर से मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। अंडमान निकोबार जजायर साहिली आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र और तेलंगाना में कल तेज बारिश होने का इम्कान है और 20वें एशियाई गेम्स बाज़ाबता तौर पर जापान में शुरू हो गए हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगे जीतने वाली मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल भारतीय दस्ते की क्यादत की। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए मुकर्र किए गए नौजवानों को ये तकर्रुरनामे सौंपे गए हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुदकफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया बरसों में मरकजी सरकार ने नौजवानों को हुनरमंदी से आरास्ता करने और मुस्तकबिल के लिए तैयार करने की खातिर उन्हें मौके फराहम करने पर लगातार तवज्जो मरकूज की है।
3: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार प्राइवेट शोबे में रोजगार के मौकों को तेजी के साथ वसत देने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मकसद से तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए के खराजात के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। امید ہے کہ مذکورہ اسکیم سے تقریباً 2 کروڑ نوجوان افراد کو پہلی مرتبہ

0: मुकम्मल हो रहे हैं, एक ऐसा सफर जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इसका सिलसिला जारी है। सेवा से सुशासन के नजरिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ की खातिर मुसलसल काम कर रही है। आज हम अपनी खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान में इस बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि प्रगति प्लेटफॉर्म ने किस तरह लोगों की जिंदगी में यकसर तब्दीली पैदा की है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म का आगाज किया था, जिसका मकसद रियासतों और मरकजी वजारतों के साथ शराकत दारी में उनके बराह रास्त और बर वक्त जायजे के जरिए प्रोजेक्टों, स्कीमों और शिकायत के इजाले में तेजी लाना था। एक दहाई में प्रगति से फैसला साजी में तेजी आई है, बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों में ताखीर की वजूहात का हल निकाला गया है और जवाबदेही का एक मजबूत कल्चर पैदा हुआ है। फरवरी में इस साल राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वजीर आजम की सतह पर प्रोजेक्टों की तफसीली निगरानी से 85 लाख करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों में हायल रुकावटों को दूर किया गया और उनमें तेजी लाई गई।
2: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
1: एम्स बीबी नगर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने उजागर किया कि किस तरह प्रगति तरीक़ेकार ने एम्स के लिए पानी और बिजली की सप्लाई जैसे इंतहाई अहम मामलात को हल करने में मदद की।
3: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
1: ये प्लेटफॉर्म मरकज रियासतों और मरकजी वजारतों को एक वाहिद डिजिटल राबते मिलाकर इमदाद बहमी वफाकियत को फरोग देता है। वजीर आजम ने अब तक प्रगति के तहत 53 मीटिंगों की सदारत की है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: आज नागालैंड में नागा यूनाइटेड विलेज चुमो के दिमा में दो रोजा शुमाल मशरकी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 से खताम पजीर हुआ, जिसमें पूरे शुमाल मशरक से पॉलिसी साज, माहरीन तालीम और मुंतजमीन यकजा हुए और उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के नफाज पर तबादला ख्याल किया। इस कॉन्क्लेव का इनेकाद तालीम की वजारत के साथ इश्तराक में नागालैंड हुकूमत ने किया था और इसका मौजू था कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का नफाज, शुमाल मशरकी रियासतों के लिए नजरिया, चैलेंज और इम्कानात। आज इसकी अख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए त्रिपुरा की आला तालीम, पंचायतों और इंतजामी उमूर के वजीर किशोर बर्मन ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मौसर नफाज पर जोर दिया, ताकि शुमाल मशरक में तालीम को ज्यादा हुनरमंदी पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाया जा सके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के दिल्ली जोनल दफ्तर ने इज्तिमाई सरमायाकारी की स्कीम के ताल्लुक से मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर माली धोखाधही के सिलसिले में एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स अबूरी तौर पर कुर्क कर लिए हैं, जिनकी मौजूदा मार्केट कीमत 42 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईडी ने मरकजी जांच ब्यूरो की जानिब से दर्ज की गई FIR की बुनियाद पर छानबीन शुरू की थी। बाद में CBI ने गैर कानूनी सरमायाकारी स्कीम चलाने में मुलविस होने की बिना पर 33 मुलजिम अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म और एक जिमनी फर्द जुर्म दाखिल की थी। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मौजूदा मजबूत ताल्लुकात के जरिए अपनी शराकत दारी को तकवीत बख्शने के इम्कानात हैं। आज नई दिल्ली में तरक्की पजीर ममालिक के लिए तहकीक और इत्तलाआती निज़ाम की जानिब से मुनक़िदा उभरते आलमी निज़ाम में भारत नेपाल ताल्लुकात का नए सिरे से तसव्वुर के मौजू पर एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर वागले ने कनेक्टिविटी और इक्तिसादी इश्तराक को मुस्तहकम करने और दोनों ममालिक के दरमियान खातिर ख़्वाह इम्कानात को बरूएकार लाने की अहमियत पर जोर दिया। भारतीय मौसमियात के महकमे IMD ने कल अंडमान निकोबार जजायर, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम माहे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कल मराठवाड़ा, जैली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल, मशरकी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, उड़ीसा और मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। आज जापान के मिजुहू पार्क एथलीट स्टेडियम में 20वें एशियन गेम्स की शाह

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार तीन वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 AD को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था, वो शक्ति वापस आ गई।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वातंत्र वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन। जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट टू के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जी वी प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

0: 74वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म अंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई।
1: अदक्के बैतिनि नानु दोड्ड अयोग्य।
0: आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागरकट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
2: सरकार को कुछ होने क्या
1: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
2: नहीं मालूम कहाँ गया माटी मिला
1: मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं

उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंतनाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है, चाहे वो रंगमंच हो, सिनेमा हो या टेलीविजन।

0: अनंतनाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंतनाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म केजीएफ में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
1: गरुड़न नोड़दागा रॉकेट कंफर्म आयतु। हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस। ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಾಕಲಿಲ್ಲ.
0: ಅನಂತನಾಗ್ ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಮೇ ವರಿಷ್ಠ ಪತ್ರಕಾರ ಔರ್ ಲೇಖಕ ಆನಂದ್ ಇಂಗ್ಲಾಗಿ ಕಾ ಕಿರ್ದಾರ್ ನಿಭಾಯಾ ಥಾ. ದರಸಲ್ ಯೇ ಕಿರ್ದಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾ ಸೂತ್ರಧಾರ್ ಭೀ ಹೈ. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಅನಂತನಾಗ್ ಅಂಕುರ್, ಭೂಮಿಕಾ, ಕಾಲಿಚರಣ್ ಔರ್ ಜುರ್ಮ್ ಜೈಸಿ ಫಿಲ್ಮೋ ಮೇ ನಜರ್ ಆಯೆ ಹೈನ್. ಸಿನಿಮಾ ಔರ್ ಕಲಾ ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಯೋಗದಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ನೇ ಸಾಲ್ 2025 ಮೇ ಅನಂತನಾಗ್ ಕೋ देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंतनाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां। ये था संपादकीय, अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
2: हंस क्यों रहे?
3: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहानुल मुल्क के रिश्तेदार के नगर पोते मीर रोशन अली पे
2: जरा होश में आइए हुजूर। जरा हाँ सुनिए मेरी बात। यहाँ से भाग निकलते हैं।
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गईं। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: चला है तेरा कमली कमली, बड़ा प्यारा नाम है। मेरा नाम नंदू है, अच्छा नाम है ना?
2: और बारह पुत्रा दें।
1: चल तू इधर रोज आती है?
3: हाँ।
1: कल ना मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
3: अच्छा मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली
4: बोल सर।
3: क्या
1: तेरी कमाई हो गई?
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बी आर चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

0: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वरनाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब ना रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा?
2: नहीं, बोलो।
1: बात यह है, मेले में चोर पॉकेटमार बहुत आते हैं।
2: तो आते हैं फिर?
1: और देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
2: अगर मैं मार लूँ तो?
0: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: मदद हो गया
1: जाओ।
3: वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
1: खेल रहे
3: शतरंज निजा साहब के साथ? इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली। अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
1: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
1: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
0: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा, साल था 1974।
4: यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में।
0: कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
5: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
0: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए, संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

0: उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए और फिल्म इजाजत के लिए साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
1: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते, लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी की बिल्कुल जबरदस्त फैन कि मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त, आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार। ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया, उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा ये दिना की लड़की है, ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 4 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जैसा वो लाइट लगता था, लाल लाइट के रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था, पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों इशारों, हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी, के जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं, फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊं, मैं जाती थी बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, इस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था,

0: बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे। बड़ा स्टूडियो है, वहाँ सेट लगा हुआ है और उस सेट में खड़े होकर गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है छोटा सा, गंदा सा छोटा सा तालाब को बड़ा दिखाते थे। तो ऐसे ऐसी जगह खड़े होकर गाना गाते थे, पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया, काम करने की आदत थी। शायद मेरे अंदर ही है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए। वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत होती है 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरेली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वहीं रहती
1: जी।
0: मुझे इन चीज़ों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की ज़रूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम हो, पलंग हो, इंसान को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहाँ आप रखें, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती। क्योंकि इंसान जो सपनों पे भी जीता है उसको कोई भी जगह चल। मैं सपने में जीने वाली औरत हूँ, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ। कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ। कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता, फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या सोचूं।

0: স্মৃতি শেষ। स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।
2: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी। कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक।

शोर आलेख स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं में हमेशा पूरी दुनिया को एक साथ लाने की बात कही गई है और स्पोर्ट्स यानी खेल शायद उसका सबसे बेहतरीन जरिया है।
3: एक गेंद हवा में उठती है, एक दौड़ शुरू होती है और शुरू होती है खिलाड़ियों की जद्दोजहद। दर्शकों की नजरें गेंद पर टिकती हैं, सांसें थम जाती हैं और फिर एक पल आता है जाने कितनी धड़कने एक लय पकड़ लेती है और जीत की खुशी में जाने कितने चेहरे एक साथ खिल उठते हैं। शायद खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। दुनिया में कितनी ही दूरियां हैं, कितने मतभेद हैं, कितनी दीवारें हैं, लेकिन खेल एक ऐसा जरिया है जो सबको एक साथ एक मंच पर ला खड़ा करता है और एशियन गेम्स की तो शुरुआत ही इसी सोच के साथ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के उथल पुथल से जूझ रही इस दुनिया के तमाम देश जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स में एक साथ आए तो खेलों की सबको एकजुट करने की ताकत को गुरुदत्त सोढ़ी ने महसूस किया और सपना देखा एशिया के सभी देशों को ठीक इसी तरह एक मंच पर लाने का। इसी विजन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत ने पहल करी और 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ।
2: आज 75 वर्षों बाद भी ये मंच एशिया को यानी दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है
3: और इसका एहसास आज जापान के पालोमा मिजुहू स्टेडियम में हुआ जब एक भव्य उद्घाटन समारोह में 45 अलग अलग देशों के एथलीट्स एक साथ आए। सबकी भाषाएं अलग, पहचान अलग, रंग रूप अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग, लेकिन खेल के इस मंच ने सभी को एक साथ ला खड़ा किया।
2: मेजबान देश जापान ने तो अपना कल्चर शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जिसमें संगीत की एक अमिट छाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एशियन गेम्स के बड़े मंच के जरिए एशिया के सभी देशों को एकजुट लाने का संदेश दिया। ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी हार्मोनिक हार्टबीट। यही नहीं, मंच भी दिल के आकार का था जहाँ एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने देश का ध्वज लेकर मार्च पास किया।
3: उद्घाटन समारोह में भारत की एंट्री भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। पेरिस में दो ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर और स्टार कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के उपकप्तान पवन सहरावत को मौका मिला भारत के ध्वजवाहक बनने का। दोनों हाथ में तिरंगा लिए भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए नजर आए और पीछे भारत के खिलाड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दिए।
2: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई तो पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के तीन कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की ये तस्वीर

0: एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
1: टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू द एंटायर कॉन्टिनेंट इज बिहाइंड यू, गिव एवरीथिंग यू हैव, होल्ड नथिंग बैक। द इंपैक्ट ऑफ व्हाट यू अचीव हियर विल स्ट्रेच फार बियॉन्ड एनी मेडल्स और परफॉर्मेंसेस। थ्रूआउट आवर कॉन्टिनेंट, across all nations, big and small, from urban cities to rural villages, millions of young people are watching. They may not yet know what they're capable of, but they're watching you, they're learning from you, they are dreaming because of you. And what you do on this stage speaks to them about what is possible, what can be achieved, when you push the limits of human potential, and what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of Asia.
0: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होनेहोन, जिसका नाम पारंपरिक जापानी शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
2: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली। रेफरी, अंपायर्स और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली।
3: 私たちは第20回アジア競技大会の審判員技術役員を代表し、スポーツマンシップの精神にのっとり大会の規則を尊重遵守し、公正なジャッジを行うことを約束します。
2: एशियन गेम्स 2026 में कुल 43 खेल हैं और 469 मेडल दांव पर हैं। ज्यादातर खेल नागोया शहर और आईची प्रेफेक्चर में होंगे, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो और फुटबॉल का खेल ओसाका में खेला जाएगा। लगभग 17,000 एथलीट इस बार एशियन गेम्स में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर भले ही एशियाड की शुरुआत आज हुई है, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और टेकबॉल के कुछ मुकाबले बीते हफ्ते खेले जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हुए मुकाबलों की।
0: सबसे पहले बात टेक बॉल की। टेबल टेनिस की तेजी और शरीर के हर मूवमेंट पर शानदार नियंत्रण, इन तीनों का रोमांच अगर एक खेल में देखने को मिले तो वो होता है टेक बॉल। तेजी से लोकप्रिय हो रहा यह अनोखा खेल पहली बार आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। यानी इस बार एशियाई खेलों में टेक बॉल के इतिहास पर पहला अध्याय लिखा जा रहा है। टेक बॉल की शुरुआत हंगरी में हुई। इसे घुमावदार टेबल पर फुटबॉल के साइज 5 की गेंद के साथ खेला जाता है। खिलाड़ी हाथ और बाजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैर, जांघ, छाती, सिर और कंधे जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गेंद को नियंत्रित करते हुए उसे विपक्षी की तरफ भेजना होता है। एक खिलाड़ी या टीम को गेंद को वापस भेजने से पहले अधिकतम 3 टच मिलते हैं और एक ही बॉडी पार्ट से लगातार 2 बार गेंद को छूना फाउल माना जाता है। डबल्स खिलाड़ियों के बीच तालमेल और टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में भारत की भी टेक बॉल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। भारत के लिए एशियन गेम्स एक नई शुरुआत लेकर आया। भारत टेक बॉल दल में क्विम्सी डिसूजा, मोहम्मद अनस इमरान बेग और डेक्लॉन मार्शल गोंसाल्वेस शामिल हैं। भारत ने पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में चुनौती पेश की। पुरुष डबल्स में अनस बेग और डेक्लॉन गोंसाल्वेस की जोड़ी को ग्रुप स्टेज में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। महिला सिंगल्स में क्विम्सी ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने जापान की वार्ड नंबर 7 और स्थानीय खिलाड़ी युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद कंबोडिया की कोएमियन डीवाई को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की

0: मुकदमा सुमाया से हुआ। क्विंसी ने पहला सेट 12-7 से जीत लिया, लेकिन सुमाया ने वापसी करते हुए अगला सेट 12-9 और निर्णायक सेट 12-8 से अपने नाम किया। इस तरह क्विंसी फाइनल से चूक गई, लेकिन अब उनके पास ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लिए पदक जीतने का मौका है।
1: दूसरी तरफ शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारत के खिलाफ जापान की मेजबान टीम थी। यूं तो जापान में क्रिकेट उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश की टीम को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे। भारतीय दर्शक भी मैदान में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की हौसला अफजाई करने पहुंचे। भारतीय टीम अभी अभी वुमेन्स एशिया कप जीत कर आई है और इसलिए जापान पहुंच ट्रेनिंग करने का भी उन्हें समय नहीं मिला था। इसके बावजूद जैसी अपेक्षा थी, मुकाबला एक तरफा रहा। जापान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद दिया और फिर श्री चरनी की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारत ने जापान की टीम को केवल 57 रन पर समेट दिया। शेफाली वर्मा के ताबड़तोड़ 40 की पारी के चलते भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीता, लेकिन कमाल की बात यह रही कि एशिया कप में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला, उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई, तो वहीं भारती फूलमली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दें कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे भारत के सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ टेकबॉल में भी कल 2 पदक आने की पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी, जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7:00 बजे एक और मुकाबला खेलने के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेंगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की, जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिंटैंग नगुयेन और जिया ट्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेकबॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है, बल्कि एलए 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
2: तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज द होस्ट कंट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर एक ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी विद द सेम मेंटेलिटी, अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टेमिना और स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा, जापान और साउथ कोरिया, इवन पाकिस्तान, इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट आल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, नो डाउट अबाउट। मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें।
1: कल भारतीय पुरुष टीम

0: अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीफू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है। देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है, महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट्स है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर वुमेन्स टीम इवेंट का पहला मुकाबला कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है। जहां 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है, तो वहीं उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ, काविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और सुबह 9 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरम साथियान, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही, साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्रीजा अकुला, यशस्वरी घोरपड़े, दिया चितले, सिंड्रेला दास के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुतीर्ता मुखर्जी टीम का हिस्सा है। फिर चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद, सोनम मास्कर और इलावनिल वलारीवन। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।
1: अब बात करते हैं कुछ और खेलों की। जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार, अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है। ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशू से लेकर MMA तक की। एक तरफ वुशू में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी MMA में पदक खेल के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा है और इस ऐतिहासिक शुरुआत में भारत की चुनौती संभाल रहे हैं वरुण सान्याल और सुचिका तारियाल। वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोंग एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी हैं। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशू की। वुशू के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती पेश करेंगे। इन्हीं में वुशू भी शामिल हैं, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशू के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर पुरुषों के चांग क्वान ताउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। चांग क्वान वुशू की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए ये मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशू अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के दो खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के

0: 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सोगंध सिकाई चेतन से होगा।
1: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 बजे आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पण टिकिया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

अभी आप सुन रहे थे एशिया गेम्स 2026 पर आधारित कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत।

लव आजकल, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। शब्द रचना थी इरशाद कामिल की और संगीत प्रीतम का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। विशाल डडलानी का लिखा गीत आप सुनिए विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में। आवाज राहत फतेह अली खान और साथियों की है और फिल्म का नाम है अनजाना अनजानी 2010।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। भूल भुलैया, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत प्रीतम का है।

भूल भुलैया। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा था समीर ने और संगीत प्रीतम का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, कार्यक्रम है फिल्म संगीत। क्रिमिनल, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। शब्द रचना इंदिवर की है और संगीत एम एम करीम का।

लाइफ इन अ मेट्रो। सोहम का गाया गीत सुनिए, सैयद कादरी की शब्द रचना है और संगीत प्रीतम का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। लखी अली और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए निदा फाजली का लिखा गीत। संगीत एम एम करीम का है और फिल्म है सुर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म का गीत राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना इरशाद कामिल की है और संगीत प्रीतम का।

0: इस गीत गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर

0: officially got underway today at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, with Emperor Naruhito declaring the games open. India's 501-member contingent was led by double Olympic medalist Manu Bhakar and kabaddi player Pawan Sehrawat during the athletes' parade. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब एक नजर कल की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत हमारे नियमित कार्यक्रमों में आप सुनेंगे 6:05 पर वंदना, 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान, 6:40 पर चिंतन और कृषि चर्चा 6:45 पर। दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल का प्रसारण होगा 7:20 पर। 8:30 पर संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में एस हरिकुमार का कर्नाटक वायलिन। सिंधिया जी सुराहन का प्रसारण समय है 9:30। कल इसमें आप सुनेंगे श्री बल्लूमल चौथानी से भेंटवार्ता, सिंधी संस्कृति पर सोशल मीडिया का प्रभाव। जिले की चिट्ठी का प्रसारण समय है 10:00। 10:05 पर सामुदायिक शिक्षण पाठ के अंतर्गत कल सुनिए नेपाली गीत रचना रुद्रा पौड्याल की। फिल्म संगीत 10:30 पर। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:11 हुए हैं। अब हमारी सांतकालीन सभा समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर इन्हीं मीटर्स और किलोहर्ट्ज़ पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।